ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री रश्मि दत्त का राग अहेर भैरव में सितार वादन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आपने सुना सुश्री रश्मि दत्त का राग अहिर भैरव में सितार वादन।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 6 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित

0: semi-final in Kolkata yesterday, securing their spot in the final. The match ended goalless after 120 minutes, leading to a penalty shootout. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं लघु वार्ता श्री कृष्ण, नीति, राजनीति और अध्यात्म का समन्वय। आलेख है डॉक्टर पूनम सिंह का।

0: वाचन स्वर जसबीर कौर सेखों का। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के एक ऐसे महान चरित्र हैं जिनका व्यक्तित्व ब्रह्मांड की तरह व्यापक है। वे अलौकिक पुरुष होते हुए भी लौकिक जीवन से गहन जुड़ाव रखते हैं। वे श्रीमद् भागवत के चंचल बालक, सम्मोहक बांसुरी बजाने वाले किशोर गोप हैं, तो दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख बजाने वाले योद्धा रणनीतिज्ञ। भगवद गीता श्री कृष्ण के रणनीतिक, राजनीतिक और अध्यात्म के समन्वयवादी सोच को प्रकट करती है। गीता में निहित श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश जीवन को प्रभावित करने का ऐसा आलोक पुंज है जो जीवन महासमर में विजयी होने का दिशा बोध कराते हैं। श्री कृष्ण ने कूटनीति और राजनीति के लिए ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो किसी भी राष्ट्र को कल्याणकारी राष्ट्र बना सकते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भागीदारी उनके असाधारण रणनीतिक कौशल को प्रदर्शित करती है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को केवल आध्यात्मिक सलाह ही नहीं देते, वे नैतिक और राजनीतिक दुविधाओं से निपटने के लिए अंतर्दृष्टि भी देते हैं, जिसमें उन्होंने कर्तव्य, नैतिकता और रणनीतिक दूरदर्शिता पर विशेष जोर दिया है। भगवद गीता में धर्म एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र है। इसी धर्म रक्षण के लिए श्री कृष्ण मनुज रूप में अवतरित होने का संकल्प दोहराते हैं। श्री कृष्ण की नीति, राजनीति इसी धर्म की व्यवहारिक पाठशाला है। गीता का कर्मयोग हमारी महत्वाकांक्षाओं को सत्कर्मों की ओर निर्देशित करता है। कृष्ण अविकल प्रेम के प्रतीक हैं। उनका साम्य भाव, जय पराजय, लाभ हानि, यश अपयश, सम विषम सभी में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। कृष्ण नीति हमें सफलता में अहंकारी और असफलता में निराश होने से बचाती है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध था। वे आततायी राजसत्ता के लिए एक चेतावनी हैं। कृष्ण नीति का अनुपालन अंधी दलगत राजनीति से देश को उबारने का महामंत्र है। श्री कृष्ण नीति के चार सूत्र आज के वैश्विक राजनीति के लिए अति प्रासंगिक हैं। पहला सूत्र, राजनीति में ऐसी उच्च नैतिकता जिसे अपनाने से मात्र पराजय मिले और वह अधर्म का कारण बने तो उसे त्याग देना बेहतर है। दूसरा सूत्र, जब युद्ध धर्म, शांति, मर्यादा संरक्षण और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए हो तो युद्ध उचित है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह सीख देते हैं कि अति सहिष्णुता अन्याय को प्रोत्साहित करती है। कूटनीति का प्रयोग सही समय अवसर पर करना चाहिए। तीसरा सूत्र है, सभी के प्रति समदृष्टि रखना। राजा को प्रत्येक सैनिक को राजा के समान महत्वपूर्ण मानकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। चौथा सूत्र है, देशकाल की परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। ऐसे में नीति निर्धारण अवसर अनुरूप और लोक कल्याण प्रेरित हो। श्री कृष्ण के अनुसार कुल या कुटुंब से बढ़कर राष्ट्र है, राष्ट्र से बढ़कर धर्म। यह धर्म का अर्थ जड़ नियमों के विरुद्ध संघर्ष है। श्री कृष्ण की सम्यक दृष्टि एक संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है। उनका चरित्र हमें ऐसे युग बोध की याद दिलाता है कि हर युग द्वापर युग जैसा ही है। जीवन की चुनौतियां हर देश काल में होती हैं, उनका सामना करना अनिवार्य है। सत्य अपराजेय रहे, इसलिए श्री कृष्ण नीति, राजनीति प्रकाश स्तंभ की तरह है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। आइए सुनते हैं अयोध्या कांड भाग 69।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ना जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पामुला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पामुला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पामुला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह को समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशनभोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माई भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशामुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह की 7:10 और पूरी 15 सेकंड। आइए

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थित चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

ये तो भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा, जो बात करूँगी आपसे कुछ मनोरंजन की और साथ में सुनवाऊँगी आपको अच्छे अच्छे गाने।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि। दोस्त हो, एक बात बताइए, इस समय आप कहाँ हैं? जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ लोग तो अभी बिस्तर में पड़े होंगे, कुछ लोग चाय की चुस्की ले रहे होंगे, कुछ लोग नाइट शिफ्ट करके अपने घर वापस लौट रहे होंगे, और कुछ लोग अपने ऑफिस जा रहे होंगे। क्योंकि सबके डेली के अपने अपने काम हैं, कुछ लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, और कुछ लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं। तो मेरा एक सवाल था आप लोगों से, क्या इन सब के बीच आपको लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं? मतलब काम अपनी जगह है, पर हमारी ज़िंदगी क्या है? काम के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी को जी पा रहे हैं, या सिर्फ बस काम ही कर रहे हैं? तो आप लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। तो तब तक सुन लेते हैं एक और गीत, और इसके बाद हम इस ही विषय पर थोड़ी बहुत और बातें करेंगे।

गाने से पहले मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि क्या हम सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं? हम सब जी तो रहे हैं, पर क्या सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? हम कैलेंडर के पन्ने हर महीने बदलते हैं, हम ईएमआई भी भरते हैं, हम इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करते हैं रात दिन, पर क्या ये हमारी जिंदगी है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, आरजे की लाइफ में, 14 साल में मैंने एक चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी जीने के लिए कोई किताब नहीं है, पर कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। एक सबसे पहले होता है कि हमें तुलना बंद करना, मतलब कि हमारी जो ज़िंदगी है उसको ऊपर वाले को शुक्रिया करना और किसी दूसरे से अपनी तुलना बंद करना। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो कभी कभी हमारे मन में आता है ये हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए, हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए। तो बस वही होता है ना कि कभी कभी इन सब बातों को जब हम देखते हैं और ज़्यादा सोचने लगते हैं अगर, तो वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाती हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है और रोज़ सुबह उठकर सिर्फ ऊपर वाले को थैंक यू बोलना है और ये बोलना है कि ऊपर वाले ने हमें अच्छी दिन दिया है, हमें चाय गर्म दी है, हमारे पास कोई है जो हमारी बातों को सुन सकता है, हमारी सांसें चल रही हैं। इतना सोचने के बाद आप सभी देखना कि हमें लगेगा कि हाँ सच में आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, कि कल की फिक्र करना। तो कल की फिक्र नहीं करनी है, आज का जिक्र करना है। तो हमें कल के लिए रोना नहीं है, आने वाले कल के लिए डरना नहीं है। जो है ज़िंदगी जैसी चल रही है, ज़िंदगी कभी कल में नहीं होती है, वो हमेशा अभी है, इसी पल में है। इसलिए सबसे पहले हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि जो भी दिन है वो आज है, इसलिए आपको जो दिन मिला है उसको भरपूर जियो, खुशी से जियो और ऊपर वाले का शुक्रिया करो और जो आपके आसपास हैं उनको खुश रखो और उनके साथ खुश रखो।

आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम ऐसे कैसे नियम अपनाएं जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो एक बात ज़रूर है कि सेल्फिश बनना गलत नहीं है, पर सेल्फ सेंटर्ड बनना गलत है। दिन में एक बार किसी एक अनजान को बिना मतलब के हेल्प करके देखो, किसी को लिफ्ट दे के देखो या किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा कर देखो। जो सुकून मिलता है ना, वो किसी कैफ़े की कॉफ़ी में नहीं मिलेगा। इस बात पर एक शायरी याद आई है कि कुछ देर तो जी लेने दो, कुछ देर तो जी लेने दो इस शाम को ये ज़िंदगी, फिर कल तो आना ही है हिसाब लेने के लिए, है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो अपने ज़िंदगी में आप लोग अपनाएं और

एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी हम आपको बताना चाहते हैं कि एक आदमी था, वो रोज़ भगवान से कहता था, भगवान मुझे खुशी दे दो, भगवान मुझे खुशी दे दो। भगवान रोज़ कहता, खुशी के पास नहीं, तेरे पास है, बस तूने अलमारी में कहीं छुपा रखी है, उसको निकाल लो तो दोस्तों आपकी खुशी की चाबी किसी और की जेब में नहीं बल्कि आपकी ही जेब में है। तो अपना ध्यान रखें और हर पल को जीना सीखें।

दोस्तों, ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती। उसमें ट्रैफिक होगा, बिल होंगे, दिल टूटेगा, लोग छोड़ कर जाएंगे, पर इसी टूटी फूटी इन परफेक्ट ज़िंदगी में ही तो असली सुंदरता है। तो आज से एक वादा करो कि खुद से रोज़ हंसना है, खुल के रोज़ थोड़ा रो भी लेना है अगर मन करे तो, और रोज़ किसी एक पल को बिना फ़ोटो खींचे सिर्फ आंखों से जी लेना है। तो मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी कल अपने प्रोग्राम में। इसके साथ ही

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी।

0: और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
5: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3.78 करोड़ रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा

0: रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
1: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
0: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलई जिले के लगभग 17 गाँवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजैक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
2: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
3: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इसराइल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इसराइल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से IED विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
5: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
2: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों

0: और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा, हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। GST में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि GST परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है, इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के महसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi today. Union Minister Sarbanand Sonowal to flag off first international cargo voyage from Dibrugarh in Assam this morning. IMD forecasts heavy rainfall in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. India and Canada to start fifth round of negotiations for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa today. Fly Dubai flight's Omani co-pilot tried to crash aircraft in Saudi desert after hijack attempt foiled. And इंडिया साइंस ऑफ विद

भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश की पेशगोई की है और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तंबों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीते। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्ज़रलैंड

0: तमिल आला सतह का एक वफद भी है। वजीर अजम मोदी और सदर परमलिन मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन में की गई पेशरफ का जायजा लेंगे, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, नकलो हमल, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान राबते भी शामिल हैं। दोनों रहनुमा कसीर मुल्की फोरमों में तआवुन समेत इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादले ख्याल करेंगे। सदर परमलिन आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे नामनिगार ने बताया है कि यह सदर परमलिन का भारत का पहला सरकारी दौरा है। वो इस साल दूसरी बार भारत आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: स्विस सदर इससे पहले फरवरी में नई दिल्ली में एआई के असरात से मुतालिक सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत आए थे। उनका ये दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि वो इस महीने की 7 तारीख को मुनक्किद होने वाली दूसरी इंडिया एफ्टा खुशहाली सरबरा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। ये कॉन्फ्रेंस इंडिया एफ्टा तजारती और इक्तसादी माहदे पर अमल दरामद को 1 साल पूरा होने के मौके पर मुनक्किद की जा रही है। एफ्टा मुल्कों में स्विट्जरलैंड सरमायाकारी और तिजारत में भारत का सबसे बड़ा शराकत दार है। दोनों मुल्कों के तवील अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात में मजीद मजबूती आएगी, लगातार आला सतह के तबादलों में इजाफा होगा और बाहमी मफाद के नए शोबों में तआवुन में वसत पैदा हो सकेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज आसाम के शहर डिब्रूगढ़ से पहले बैन अलाक़वामी माल बरदार जहाज को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा भी बोगीबील टर्मिनल पर मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज इस जहाज को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के साथ ही डिब्रूगढ़ की आज़ादी से पहले की विरासत बहाल हो जाएगी। डिब्रूगढ़ की विरासत अंदरून मुल्क के साबी गुजरगाह के तिजारती मरकज के तौर पर है। पिछले 8 दहाइयों से ज्यादा मुद्दत में ऐसा पहली बार है कि एक बैन अलाक़वामी माल बरदार जहाज बराह रास्त आसाम से किसी गैर मुल्की बंदरगाह पहुंचेगा। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल इस जहाज को आज सुबह 11 बजे झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जहाज के इस पहले दौरे में 1,080 टन मेथनॉल पहुँचाया जाएगा। यह मेथनॉल नाम रूप में आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने तैयार किया है। 2 माल बरदार जहाज जिनकी जदीदकारी की गई है, ये सामान बांग्लादेश के शहर ढाका में पनगांव बंदरगाह लेकर जाएंगे। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: मगरबी बंगाल सरकार फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम बनाने की समत बड़ा कदम उठाने वाली है। रियासत में 4 नए हवाई अड्डों की तामीर के लिए रियासती सरकार आज मरकज के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: इलाकाई राबतों की मरकज की स्कीम के तहत ये मुजवजा हवाई अड्डे परोलिया में चारा, पश्चिम मिदनीपुर में कलाईकुंडा, जनूबी दिनाजपुर में बालूरघाट और अलीपुर द्वार में हसीमारा के मकाम पर तामीर किए जाएंगे। आज कोलकाता में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी के नुमाइंदों की मौजूदगी में मस्कुरा समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। कोलकाता से संदीपन दास रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजूर अफराद, खासतौर पर रियासत के बस्तर डिवीजन में आईईडी धमाकों से मुतासिरा लोगों को मस्नूई आज़ा और मुतालिका आलात फराहम करने के लिए खसूसी इकदाम किए हैं। इस मकसद के लिए आज से फ्री कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन कई दहाइयों तक बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के मसले से मुतासिर रहा है। इस अरसे के दौरान माओ नवाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए खत्ते के अंदरूनी और दूर दराज के इलाकों में बड़ी तादाद में देसी साख्त के धमाका खेज हरबे नस्ब कर रखे थे। इनकी जद में आने से बस्तर में कई बेकसूर गाँव वालों और कबायली अफराद या तो मारे गए या उन्हें माजूरी का सामना करना پڑا۔ اب خطے سے بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خاتمے کے بعد چھتیس گڑھ سرکار ان افراد کو مصنوعی اعضا اور متعلقہ آلات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جو ان دھماکوں میں جسم کے اہم اعضا سے محروم ہو گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے

0: जगदलपुर और दांतेवाड़ा में फ्री कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाइख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज़ में आज हम अपने आइजोल के नामा निगार की एक रिपोर्ट लेकर आए हैं जो मरकज़ की एक ज़िला एक प्रोडक्ट ODOP पहल के बारे में है।
2: मिजोरम के लोंगलाई ज़िले में केले के काश्तकार मरकज़ की एक ज़िला एक प्रोडक्ट ODOP पहल के तहत केले से बनाई गई मसनूआत से तकरीबन 3,78,00,000 रुपये की आमदनी कर रहे हैं। ये जानकारी अफसरान ने दी है। केले को इस ज़िले की ODOP प्रोडक्ट के तौर पर चुना गया है। रियासती सरकार केले की काश्त को फ़रोग दे रही है जिसके लिए इसे चिप्स, रस और दीगर खुर्दनी अशिया जैसी मसनूआत में बदला जाता है। लुंगलई की डिप्टी कमिश्नर नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को बागबानी के महकमे के साथ सलाह मशवरे के बाद चुना गया है क्योंकि ये इस इलाके में तेज़ी से उगता है। केले की काश्त फिलहाल लुंगलई ज़िले के तकरीबन 17 गांवों में की जा रही है जिससे 300 से 400 घर वाबस्ता हैं। आइजोल से इजाक जोरम संगा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में जामे इक्तसादी शराकत दारी के अपने मुजवजा माहदे सीपा के बारे में पांचवें दौर के मुजाकरात शुरू करेंगे क्योंकि दोनों मुल्कों का मकसद इस तजारती माहदे को 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेना है। दोनों मुल्कों के आला मुजाकरात कारों की क्यादत में ये पांच रोज़ा मुजाकरात इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगे। गुज़श्ता दौर की बातचीत में नई दिल्ली में पिछले महीने 18 तारीख को मुकम्मल हुई थी जिसके तहत अफसरान एक कतई माहदे की जानिब तेज़तर पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस साल मार्च में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कनाडा के उनके हम मनसब मार्क कार्नी ने तय किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीपा मुजाकरात साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएँ। इसके अलावा नई दिल्ली में अपनी मीटिंग के दौरान तवानाई और अहम मादनियात के शोबों में दोतरफा तालमेल में गहराई लाने से भी इत्तेफाक किया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि रूस ऐसा मुल्क है जिसने ऐसे कई मौकों पर भारत का साथ दिया है जब भारत की सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत को खतरा लायक था। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा ने जोर देकर कहा कि एक ऐसे वक्त कि जब दुनिया के बेशतर मुल्कों ने भारत के पड़ोस में फौजी सरकार की हिमायत करने को तरजीह दी, रूस ऐसा मुल्क है जिसके साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि भारत का मौकिफ बहुत वाज़े रहा है और वो इस टकराव के खात्मे का ख्वाहिशमंद है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का ये मानना है कि इसके लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है। इटली के एक अखबार कोरियर देला सेरा ने इसराइल की सुराग रसां रोसानी का हवाला देते हुए बताया है कि फ्लाई दुबई की परवाज के ओमानी साथी पायलट ने जहाज अगवा करने की कोशिश को नाकाम बनाए जाने के बाद सऊदी सहरा में इस जहाज को तबाह करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि साथी पायलट हम्माम अल हम्मामी ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमला किया और तैयारे पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। इल्जाम है कि उसने इसराइल के तेल अबीब शहर में तैयारे को एक इमारत से टकराने का मंसूबा बनाया था। अखबार के मुताबिक हम्मामी ने महसूस किया कि उसका असल मंसूबा पूरा नहीं हो सकेगा, लिहाजा उसने इस तैयारे को सहरा में तबाह करने का फैसला किया। उसने ऑटो पायलट निज़ाम को बंद कर दिया और कंट्रोल स्टिक को दबा दिया। 30 सेकंड के अंदर अंदर ये तैयारा 16,000 फुट नीचे आ गया और ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। अल हम्मामी ने तैयारे के कंट्रोल निज़ाम को भी तबाह करने की कोशिश की जिसके बाद मुसाफिरों ने इसे दबोच लिया। एक मुसाफिर यानी हयून ने कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ खींच लिया और तैयारे को तबाह होने से बचाने में मदद की। दो पायलट्स जो ड्यूटी पर नहीं थे उन्होंने बाद में तैयारे को कंट्रोल किया और इसे हिफाजत के साथ ज़मीन पर उतार लिया। कैप्टन स्मिथ मच्छर को अस्पताल ले जाया गया और हम्मामी को सऊदी हुकाम के हवाले कर दिया गया। इसराइल ने इस वाकये को एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया है और वो इस बात की तहकीक कर रहा है कि किस तरह ओमान के इस पायलट को तेल अबीब जाने वाली परवाज़ के लिए

0: मंजूरी दी गई। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश की पेशगोई की है। इधर अगले दो दिन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के बेशतर हिस्सों और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पीछे हटने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड, तेलंगाना, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और लक्षद्वीप में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज इसी तरह का मौसम का इम्कान है। जापान के आईची नगोया शहर में 2026 के एशियाई खेल कल इख्तिताम पज़ीर हो गए। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीत कर चौथे मकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। भारत ने मर्दों और ख्वातीन की क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में शानदार जीत हासिल की। क्रिकेट में भारत ने फिर से दोनों टाइटल जीते। फाइनल में ख्वातीन टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराया, जबकि मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त दी। कबड्डी में ख्वातीन की टीम ने ईरान को 34 के मुकाबले 37 पॉइंट से हराकर अपना टाइटल बरकरार रखा, जबकि मर्दों की टीम ने भी ईरान की 34 के मुकाबले 40 पॉइंट से शिकस्त दी। हॉकी में भारतीय ख्वातीन टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। इस तरह 44 साल बाद भारत ने एशियाई खेलों में ख्वातीन हॉकी में सोने का तमगा जीता। मर्दों की टीम ने मलेशिया को 1-5 से हराकर फिर से टाइटल हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने वजारत खारजा की मुशावरती कमेटी के इनेकाद से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े की बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। अखबार ने वजीर खारजा एस जय शंकर के इस तबसरे को नुमाया किया है कि भारत बैरूनी दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए दो उम्मीदवारों का ऐलान किए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब ने अहमियत के साथ शाये किया है। गुज़श्ता हफ्ते घरेलू थोक अजनास के बाजारों में चीनी और चावल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। इस खबर को रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत कई दिगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। जापान के आईची नागोया शहर में 20वें एशियाई खेलों के एक रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पज़ीर होने से मुतालिक खबरों को आज के अखबारात ने नुमाया तौर पर पेश किया है।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्विट्ज़रलैंड के सदर गाई परमलिन के साथ बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह असम में डिब्रूगढ़ से पहले बैन अलावामी माल बरदार बहरी जहाज को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत और कनाडा आज ओटावा में जामे इकतसादी साझेदारी से मुतालिक मुजवजा समझौते के लिए 5वें दौर की बातचीत शुरू करेंगे। इत्तलात में कहा गया है कि फ्लाई दुबई परवाज के ओमान से ताल्लुक रखने वाले मुआविन पायलट ने हवाई जहाज को अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाए जाने के बाद इसे सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में गिराने की कोशिश की थी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश की पेशगोई की है। और जापान में 2026 के एशियाई खेलों में भारत ने क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में सोने के तमगों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे हासिल किए। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे ममता त्रिपाठी द्वारा ध्रुपद गायन राग रहेगा कोमल ऋषभ आसावरी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति पाहमला का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पाहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पाहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पाहमला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध है।
1: इंडिया एंड रशिया हैव हिस्टोरिकली वेरी गुड रिलेशंस।
2: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो

0: वो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वो इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। भारत का मानना है कि इसके लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता होगी और इस संबंध में बातचीत होनी चाहिए। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इटली के अखबार कोरियेरे दिल्ला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की कोशिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया। अखबार के अनुसार ओमानी सह पायलट हम्माम अल हम्मामी ने विमान पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ पर हमला किया था। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जल स्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmelin will be on a 3-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Parmelin will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The leaders will also exchange views on regional and global developments, including cooperation in multilateral fora. President Parmelin will meet President Draupadi Murmu this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will also call on President Parmelin. Our correspondent reports that this is President Parmelin's first visit to India and second visit this year.
3: Earlier, in February this year, the Swiss president visited India to participate in the AI Impact Summit in New Delhi. The visit assumes added significance in view of his participation in the second India EFTA Prosperity Summit on 7th of this month to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement coming into force. Among EFTA countries, Switzerland is the largest trade and investment partner of India. India and Switzerland share long-standing friendly relations. This visit will further strengthen bilateral relations, building upon the regular high-level exchanges and deepen cooperation in new areas of mutual interest. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tributes to Guru Nanak Dev on his Jyoti Jyot Day today. In a social media post, Mr. Birla said that Guru Nanak Dev imparted lessons of truth, compassion, humanity and goodness to the world through his life. He added that Guru Nanak Dev fearlessly raised his voice against the superstitions, discrimination caste has

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 10:10 और 15 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ, आपकी दोस्त निधि वर्मा, और लेकर आई हूँ बहुत सारे किस्से, और आप सुनवाऊंगी आपको बहुत अच्छे अच्छे गीतों को और करूँगी आपके संदेशों को शामिल। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, और मैं आपको आज सुलाने नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपको बचपन में ले जाने आई हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बचपन के किस्सों पर, वो किस्से जहाँ चोट लगने पर मम्मी का फूंक मारना हर मर्ज की दवा बन जाता था, जहाँ 1 रुपए वाली टॉफी सबसे बड़ी दौलत होती थी, जहाँ हम एग्जाम से ज़्यादा क्रिकेट खो खो खेलने में ध्यान लगाते थे। तो आप सभी लोग, अगर अपने बचपन के किस्से, आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है बचपन में, तो हमारे साथ शामिल ज़रूर करिए और हमें लिख भीजिए हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल एड्रेस है IPRadioDelhi@gmail.com पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि। तो आपके संदेशों को शामिल कर लेते हैं। ये संदेश हमें भेजा है रविंद्र मोहन दास ने। ये कहते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। ये बात सच है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, चाहे हमें लगे कुछ भी हो लेकिन हम अपने आप में खुश रहते हैं। इन्होंने कहा है कोई भी गीत सुनवा दें। किशनगंज बिहार से लिखते हैं रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। ये जो हमें संदेश भेजा है ये भेजा है, ये कहते हैं प्रशासक जी के सेवा में प्रणाम और हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ये लिखा है सदानंद नाथ मधुकर जी ने। और ये संदेश हमें भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू ने। और इन्होंने कहा है कि हमें जीत फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपकी फरमाइश को पूरा किया जाए।

और ये संदेश हमें भेजा है सतीश अनेजा जी ने। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो जितना दूर होता है नज़रों से उतना ही वो दिल के पास होता है। क्या बात है, मुश्किल से भी जिसकी एक झलक देखने को ना मिले वही ज़िंदगी में सबसे खास होता है। क्या बात है, आप तो शायर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे जो ये संदेश लिखा है, ये लिखा है चंदू कुलकर्णी ने। ये लिखते हैं, नमस्ते जी, हमारे संदेश को शामिल कीजिए। और आपका संदेश शामिल हो गया है। ये संदेश हमें भेजा है बबलेश पनवार ने। ये लिखते हैं कि आपकी पसंद प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार। और ये कि इन्होंने लिखा है गांधी चौक बाड़मेर से, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बाबड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान। और ये जो संदेश हमें लिखा है, ये लिखा है सफरुद्दीन अंसारी ने। ये लिखते हैं, आदाब, किसी भी गीत को शामिल करें। बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू। डुमगांव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा और दानिश अंसारी ने। और ये जो संदेश हमें लिखा है, अगला संदेश ले लेते हैं। ये लिखा है रोशन देवगन ने। ये लिखते हैं, निधि वर्मा जी को शानदार प्रस्तुति और उनकी आवाज़ की पहचान के लिए धन्यवाद। और हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ये लिखते हैं, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन जी। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

हरिंदर सिंह भाटिया जी लिखते हैं कि निधि वर्मा जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आपका प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। हमेशा खुश रहें और पूरे परिवार के साथ हम ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और उस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़गल मुल्तानी ढाढ़ा से अनिल मोहन जी लिखते हैं, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, और इनका कहना है कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। संदीप मकर ने लिखा है कि फिल्म मोहरा का ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं। ये लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और हमें ये गीत सुनवा दें, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से आपका ये गीत सुनवा दें। और हमें आपका गीत मिल गया है, तो सबसे पहले आप सुनिए ये वाला गीत।

आज हम बात कर रहे हैं अपने बचपन की, और आपकी ज़िंदगी में भी बचपन में बहुत सारे किस्से आपके साथ हुए होंगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर शामिल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ipradiodelhi@gmail.com पर। आपको याद है ना कि आपने भी शायद ऐसा किया हो कि वो पोशम्पा भाई पोशम्पा खेलना, वो शक्तिमान देखने के लिए लड़ना और उसके जैसे गोल गोल घूमना, वो 10 रुपये में मिलने वाला चूरन, संतरे की गोली और वो पेप्सी जो हमारे दांतों को तोड़ देती थी। सच बताऊं तो बचपन में हमारे पास कुछ नहीं था पर सब कुछ था। आज सब कुछ है पर वो सुकून कहीं खो गया है। इसी बात पर एक शायरी याद आती है, काश फिर से मिल जाए वो बचपन, काश फिर से मिल जाए वो बचपन की गलियां, जहां ना कोई ख्वाहिश थी ना कोई सवाल था। एक साइकिल थी, कुछ दोस्त थे और एक शाम होते ही घर आने का एहसास था। तो इस शायरी के साथ आप लोगों के कुछ संदेश भी शामिल कर लेते हैं। तो ये जो संदेश हमें भेजा है, ये भेजा है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन ने। ये लिखते हैं, निधि जी, हम भी आपका कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आपकी शानदार प्रस्तुति मन मोह रही है। हमने भी आपको अब मेल भेजा है, कृपया हमारा संदेश भी शामिल कर लीजिए। तो देख लीजिए, आपका संदेश भी शामिल हो गया है और इनके

साथ लिखती हैं कौशल्या देवगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। ये संदेश हमें लिखा लिख के भेजा है विट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। अगला संदेश हमें भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी ने। ये लिखते हैं कि निधि वर्मा जी

ऐसा नहीं है कि हम आपका मेल शामिल नहीं करना चाहते हैं, और देख लीजिए कि आपका मेल भी शामिल हो गया है, और ये लिखा है मोहम्मद सईद अब्बासी ने निगहत परवीन अब्बासी, सहानवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी और अब्बासी परिवार ने। अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं, ये हमें लिख भेजा है धर्मेंद्र छिबा ने। इन्होंने लिखा है कार्यक्रम आपकी पसंद, आदरणीय मैडम निधि जी नमस्कार, बेहद बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रही हैं और बेहतरीन नगमे आप सुनवा रही हैं, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये लिखते हैं कपिल छिबा, ईशान छिबा और पूजा परिहार। अगला संदेश जो हमें भेजा है वो भेजा है हमें दिलावर खान ने। ये लिखते हैं आदाब जी, किसी मधुर गीत में हमें भी याद कर लीजिए, और आपकी आवाज़ हमें अच्छी लग रही है और आपका प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी हम आपकी पसंद का कोई ना कोई गीत ज़रूर सुनवा देंगे।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा। तो इतने सारे संदेश आ गए हैं तो कुछ संदेशों को हम शामिल कर लेते हैं। और ये संदेश हमें भेजा है देवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी ने। ये लिखते हैं, निधि जी सादर नमस्कार। आपने बचपन की जिंदगी की क्या जिंदगी थी ना, ना कोई गम था ना कोई चिंता, काश वो लौट कर आ पाता। निधि जी, बचपन में हम पेट दर्द के झूठे मुठे बहाने बनाकर स्कूल नहीं जाते थे और फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते थे। फिर अम्मा जी कई प्रकार खाने का सामान देते जिन्हें खा करके पेट दर्द ठीक हो जाता था। आज आपने हमें वो दिन याद दिला दिए। इस संदेश से मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया और मैं अपना किस्सा शामिल करना चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ। मैं और मेरी बहन स्कूल में जब पढ़ते थे तो साथ में पढ़ते थे। वो बड़ी क्लास में थी और हम छोटी क्लास में थे। तो जब क्लास चेंज हुई तो वो दूसरे स्कूल में चली गई और हम उसी स्कूल में रह गए। तो जब वो स्कूल से गई तो उसके बाद हमारे स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं होता था, बहुत बुरा लगता था स्कूल में। तो जब जब हम स्कूल जाते थे तो टीचर से कोई ना कोई बहाना करके कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा है, ये प्रॉब्लम, ऐसे कर करके जाने के बाद घर वापस आ जाते थे। तो जब आज ये संदेश मैंने पढ़ा तो मुझे अपना दिन याद आ गया कि बचपन में हम कैसे कैसे काम करते थे। जब वो आज किससे याद करते हैं तो खुशी भी होती है, हंसी भी आती है, बट वो मासूम दिन बड़े याद आते हैं। अगला संदेश जो हमें भेजा है वो भेजा है रमेश चौहान ने। ये लिखते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से।

रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्भी, बेबी बॉय और हिमाक्ष। और ये जो हमें संदेश लिखा है, ये लिखा है दिलावर खान ने। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, नाम के साथ आप जगह का नाम भी बोल देते थे तो थोड़ा हमारा चेहरा नूरानी हो जाता। किसी मधुर गीत के साथ हमें भी याद कर लीजिए। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू, तो आपके शहर का नाम भी शामिल हो गया है। और ये जो हमें अगला संदेश भेजा है, हरजिंदर साहिन शिंदा ने, ये लिखते हैं, गांव नथाना से पंजाब, हरजिंदर शिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता। और इन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए। और अगला संदेश जो हमें भेजा है, वो भेजा है मंसूर हसन ने। ये लिखते हैं कि आप हमें हमारे लिए कोई भी गीत शामिल कर दीजिए। और ये अगला जो संदेश लिखा है, वो लिखा है नितो मल्होत्रा ने। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, आप अपने प्रोग्राम में हमारा कोई भी गीत शामिल कर दीजिए। ये लिखते हैं खेल बाजारा पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से।

कुछ संदेशों को और हम शामिल कर लेते हैं। ये संदेश हमें भेजा है मारवा दरवाज़ा एटा से नवी हसन ने। ये लिखते हैं, निधि वर्मा जी, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार। किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल कर लें और आपका नाम शामिल हो गया है। ये लिखते हैं, नवी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सोहेल हसन अब्बासी, अनव यसफ अब्बासी और अवासी परिवार। ये जो संदेश हमें भेजा है वो भेजा है अनिल जैन ने और ये लिखते हैं, मलयान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और जैन परिवार। अगला जो संदेश हमें भेजा है वो भेजा है कमल मरावी ने। ये लिखते हैं, निधि वर्मा जी नमस्कार, 10 बजे से ईमेल भेज रहे हैं, आप हमारा नाम शामिल करें और कोई भी गीत शामिल कर दें। तो आपका नाम शामिल हो चुका है और ये लिख रहे हैं, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमल कांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। अगला जो संदेश हमें लिखा है वो लिखा है अहमद फूल वाले ने। ये लिखते हैं कि होस्ट निधि वर्मा बहन जी को नमस्कार, आप खुश रहें और सभी खुश रहें। और ये लिखते हैं कि कोई भी गीत हमें शामिल कर लीजिए और आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आइए सुनते हैं एक और गीत।

कार्यक्रम से चलते चलते कुछ मेल को और हम शामिल कर लेते हैं। तो ये मेल जो हमें लिख भेजा है, ये लिखा है साहिल दर ने, और ये लिखते हैं कि निधि जी आदाब, श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान। ये लिखते हैं कि बचपन का समय जीवन का सबसे बेफिक्र और खुशनुमा दौर होता है। उस समय छोटी छोटी शरारतों में भी बड़ी खुशी मिलती थी। कभी दोस्तों के साथ लुका छुपी खेलना, कभी किसी के घर की घंटी बजाकर भाग जाना, तो कभी बिना बताए आम या बेर तोड़ने निकल जाना। ये सब शरारतें आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। कभी स्कूल में होमवर्क ना करने के बहाने बनाना, तो दोस्तों की पेंसिल छिपा देना, या शिक्षक से डांट खाने के बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना भी बचपन का हिस्सा था। गर्मियों की छुट्टी में पेड़ पर चढ़ना, बारिश में भीगना और मिट्टी में खेलना तो जैसे रोज की दिनचर्या थी। आज जिम्मेदारियों ने जीवन का गंभीर बना दिया है, लेकिन बचपन की वे नटखट यादें दिल में हमेशा ताजा रहती हैं। सच कहा जाए तो बचपन की शरारतें ही जीवन में सबसे प्यारी और अनमोल यादों में से एक है। जी हाँ साहिल डार जी, आपने ये बहुत सही बात की है, और आपने इस मेल में अपनी अपने के साथ साथ जितने भी लोगों ने ये संदेश सुना होगा, उनको भी अपना बचपन याद आ गया होगा, क्योंकि आपने सब कुछ शामिल कर दिया है। तो कार्यक्रम में अगला संदेश ले लेते हैं। ये लिखते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से। आदरणीय प्रशासक महोदय जी, आपको हमारी ओर से प्यार भरा आदाब। आप हमें किसी भी सदाबहार गीत में शामिल कीजिए। और अगला जो संदेश आया है वो लिखा है स्वर्ण सिंह ने, ग्राम लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह, और उन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत आप हमें अपनी पसंद का सुनवा दीजिए। तो समय के अभाव के कारण हम और मेल शामिल नहीं कर सकते, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का, अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत, और आपकी पसंद कार्यक्रम से अपनी दोस्त और होस्ट को कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा पर राष्ट्रपति पामला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं।

पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। आज नई दिल्ली में जर्मनी के नेताओं के साथ बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत रुक गई है। उन्होंने कहा कि विचाराधीन समझौता एक कठिन और गहन बातचीत के बाद तैयार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को सत्य, करुणा, मानवता और सद्भाव का संदेश दिया। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu, Chief Minister Subhendu Adhikari and representatives of the Airports Authority of India. Under the Centre's Regional Connectivity Scheme, the proposed airports will come up at Chara in Purulia, Kalaikunda in Paschim Medinipur, Balurghat in South Dinajpur and Hasimara in Alipurduar. In Brazil, Flavio Bolsonaro has won against the incumbent president Luiz Inácio Lula da Silva in the first round of Brazil presidential election, but failed to cross the 50% mark needed for an outright victory, setting up a closely watched runoff on 25th of October. With 98.81% of the votes counted, Bolsonaro secured 47.24% votes, while Lula received 44.91%. Under Brazil's presidential election system, a candidate must secure more than 50% of the vote to win in the first round. India and Canada will kick off the fifth round of negotiations for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, in Ottawa today, as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. The five-day negotiations will continue till the 9th of this month. The previous round concluded in New Delhi on the 18th of last month, with officials now pushing for faster progress towards a final agreement. India concluded its campaign at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya with 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze, finishing fourth in the overall standings. India's campaign produced a series of landmark achievements across disciplines. The defining feature of India's campaign was its clean sweep of gold medals in men's and women's cricket, kabaddi and hockey. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थित चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
3: प्रिय मित्रों, आज के इस वर्तमान युग में मनुष्य प्रतिदिन बहुत से कार्य को करता है और उसके जीवन में वो इतना व्यस्त होता है कि हर दिन उसके पास कोई ना कोई काम करने के लिए होता है। वो मेहनत करता है, प्रयास करता है और अपने जीवन में वो थक भी जाता है। हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में आलस्य का अनुभव करते हैं। कई बार हम जानते हैं कि कोई काम हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे हम टालते रहते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में उस काम को नहीं करना चाहते हैं। आलस्य ऐसा ही होता है। न्यूटन का एक गति का नियम है और ये नियम इस बात को बताता है कि जो वस्तु रुकी हुई है वह रुकी रहना चाहती है और जो वस्तु चल रही है वह चलती रहना चाहती है, जब तक कोई बाहरी शक्ति उसे बदलने के लिए मजबूर ना करे। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कुछ लोग अपने काम को शुरू करने और पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ लोग काम को शुरू करने में कठिनाई महसूस करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। आलस्य धीरे धीरे हमारी आदत और जीवन शैली बन सकता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को आलस्य के इस प्रलोभन से सावधान रहना चाहिए और अपने समय, जिम्मेदारियों और जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आलस्य के बारे में बात करेंगे और कैसे हम आलस्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, उसके विषय में भी आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं।
4: जी हाँ श्रोताओं, आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
3: प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, लोगों के आलसी होने और हर काम को हमेशा कल पर टालने का सबसे

का कारण ये है कि वह अपने जीवन में बहुत ही अधिक आरामदायक स्थिति में रहना पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि चीजें जिस तरह चल रही हैं उसमें कोई बदलाव हो। जी हाँ दोस्तों, ये होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति। आरामदायक स्थिति एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी कोई विकास नहीं हो सकता। जो काम आप हमेशा करते आए हैं वही करना आसान होता है, लेकिन इससे आपको वह विकास नहीं मिल पाता जिसकी आप इच्छा रखते हैं। विकास के लिए आवश्यकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कठिन कार्य को करने का प्रयास करें। आलस्य हमारे जीवन में बहुत सी कमियों को लेकर आती है। आलस्य हमारे शारीरिक जीवन पर प्रभाव डालती है। शारीरिक जीवन के साथ साथ ये हमारे आर्थिक जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जो लोग आलस्य छोड़ देते हैं उन्हें अच्छी सेहत के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। यदि मनुष्य आलसी है तो उसे अपने जीवन में बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार एक धनी व्यक्ति था और ये धनी व्यक्ति बहुत ही आलसी था। उसने हर काम करने के लिए नौकर रखे हुए थे। वह दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था और आराम करता था, खाता पीता था और सोता था। शारीरिक मेहनत ना होने की वजह से धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई, सेहत खराब होने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, बिस्तर पर पड़ा रहता है और खाता है, पीता है, सोता है, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। अब उस धनी आदमी को स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, क्योंकि यह धनी व्यक्ति अपने उन नौकरों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आया। घर आया दोस्त जानता था कि व्यक्ति बहुत आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बीमार है और उस सेठ ने मित्र से इन परेशानियों को दूर होने का उपाय पूछा। मित्र बहुत समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम वह कर पाओगे या नहीं? सेठ बोला कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करूंगा, तुम बस मुझे उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज सुबह अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है, तुम्हें रोज सुबह उसके दर्शन करना है। उसके दर्शन करने से तुम्हारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। अगले दिन यह धनी व्यक्ति सुबह उठता है और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस दिन उसे वह सुनहरा पक्षी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सुबह सेठ फिर उठा और उस पक्षी को देखने के लिए आगे बढ़ा और उस पक्षी को खोजने लगा। अब रोज सेठ सुबह सुबह जल्दी उठकर पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ता था। सुबह जल्दी उठने और बाहर जाने से उसकी शारीरिक मेहनत से उसकी सेहत सुधरने लगी। नौकर भी सेठ को देखकर ईमानदारी से काम करने लगे थे। इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होती चली गई, क्योंकि अब उसके नौकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहे थे। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने जो कहा था कि वह सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है, मैं कई दिनों से रोज उसको देखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। मित्र ने कहा कि जब से तुमने सुबह उठकर घूमना शुरू किया है तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं, तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है और तुम्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ रहा, यानी कि अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। यही वह सुनहरा पक्षी है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। प्रिय मित्रों, आपका आरामदायक क्षेत्र ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आरामदायक क्षेत्र एक सुंदर स्थान है, लेकिन वहां कभी कोई विकास नहीं होता। आरामदायक क्षेत्र आपको सुरक्षित तो महसूस करा सकता है, लेकिन वह आपकी प्रगति को रोक देता है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हैं, तो आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक विकास हमेशा सुविधा से नहीं बल्कि संघर्ष और साहस से जन्म लेता है। ये कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सहज और तनाव मुक्त महसूस करता है। यहां कोई बड़ा जोखिम नहीं होता और सब कुछ परिचित होता है, लेकिन यही सुविधा धीरे धीरे व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी केवल उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक हो। एक कर्मचारी नए जिम्मेदारियों को लेने से डरता है। एक व्यापारी नए काम को शुरू करने से डरता है।
इन सभी

स्थितियों में व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रह रहा होता है। लेकिन यह आरामदायक स्थिति हमारा शत्रु कैसे है? यह हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रतिभाएं और योग्यताएं दी हैं। जब हम केवल आसान कार्य करते हैं तो हमारी वास्तविक क्षमता कभी सामने नहीं आती। यह हमें परिवर्तन से डरना सिखाती है। नई परिस्थितियां हमें असहज महसूस कराती है, इसलिए हम पुराने तरीकों को भी अपनाए रखते हैं, जबकि विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यह आलस्य और टालमटोल को बढ़ावा देता है। जब सब कुछ आरामदायक लगता है तो हम कठिन निर्णय लेने और मेहनत करने से बचने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। यह सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। नई बातें सीखने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं। लेकिन आरामदायक स्थिति हमें गलतियों से बचाता है, लेकिन उसी के साथ सीखने के अवसर भी छीन लेता है। लेकिन प्रश्न यह है कि विकास कहाँ होता है? वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। नया कौशल सीखना, लोगों के सामने बोलना, कठिन परिस्थितियों में खड़े रहना, कठिन जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, असफल होने के डर के बावजूद प्रयास करते रहना और ईश्वर पर विश्वास रखना। शुरुआत में ये सब कठिन लगते हैं, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। किसी ने कहा है, आलसी हाथ निर्धनता लाते हैं परंतु परिश्रमी हाथ समृद्धि लाते हैं। इसका अर्थ केवल आर्थिक गरीबी नहीं है। आलसी व्यक्ति अवसरों को खो देता है, अपने कार्य को टालता रहता है और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाता, और इसका परिणाम यही होता है कि वह आर्थिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से भी पीछे रह सकता है। परंतु परिश्रमी हाथ समृद्धि लाते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी, लगन और समय पर पूरा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति करता है, लोगों का विश्वास जीतता है और ईश्वर की दी हुई योग्यताओं का सही उपयोग करता है। यहाँ समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि सम्मान, सफलता, स्थिरता और ईश्वर के द्वारा मिलने वाली वो आशीषें हैं जो ईश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं। इस पूरे अंश में हम इस बात को देखते हैं कि आलसी व्यक्ति के स्वभाव का बहुत ही प्रभावशाली और कभी कभी हास्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक और कहावत है और उसमें कहा गया है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है। वास्तव में वो एक बहाना बना रहा है। हो सकता है कि मार्ग में कोई सिंह ना हो, लेकिन आलसी व्यक्ति काम पर जाने या अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए काल्पनिक खतरों का बहाना बनाने लगता है। आज के समय में ऐसे बहाने हो सकते हैं, जैसे कि अभी सही समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, अगर मैं असफल हो गया तो कल से शुरू करूंगा। प्रिय श्रोताओं, आलस्य अक्सर डर या बहानों के पीछे छिपा होता है। लेकिन आलस्य से बचने के लिए हम अपने जीवन में क्या करें? सबसे पहली चीज, बहाने बनाने की बजाय हम पहला कदम उठाएं। छोटे छोटे कार्यों को भी समय पर पूरा करने की आदत डालें। कठिनाइयों को अवसर समझिए, रुकावट नहीं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अनुशासन, परिश्रम और विश्वास योग्यता का जीवन जीने की सामर्थ्य दे। प्रतिदिन ऐसा कार्य करें जो आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगे। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखें। नए अवसरों के लिए हाँ कहना सीखें। याद रखिए, असुविधा अक्सर विकास की शुरुआत होती है। जहाँ सुविधा प्राप्त होती है, वहीं से विकास आरंभ होता है। विश्वास आपको वहां ले जाता है जहां आराम कभी नहीं ले जा सकता। जब हम अपने जीवन में उस आरामदायक स्थिति से बाहर निकलते हैं, तभी हमारा चरित्र, विश्वास और क्षमता विकसित होती है। प्रिय श्रोताओं, आलस्य को दूर करने का तरीका तभी समझ आ सकता है जब पहले हम इस बात को समझ लेंगे कि हम आलसी क्यों हो रहे हैं। तो किस प्रकार से हम उन आदतों को बदल सकते हैं और आलस्य को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं? पहली चीज, ऐसे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा यह समझने में मदद करते हैं कि हमें क्या हासिल करना है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए शुरुआत में एक या दो छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। उसी प्रकार से धैर्य और दृढ़ता विकसित करें। जीवन में सफल लोग हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करते हैं। कई बार उनका भी मन काम करने का नहीं होता है,
लेकिन वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इसे दृढ़ता कहा जा सकता है।

0: अर्थात किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए कठिनाइयों के बावजूद लगातार प्रयास करते रहे। इसे विकसित करने के लिए अपने काम में रुचि खोजिए, नियमित अभ्यास कीजिए और छोटी छोटी आदतों को लगातार दोहराएं। जब हम किसी अच्छे काम को नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाता है। और अंतिम चीज, अपने समय और ऊर्जा में संतुलन बनाए रखें। हमारे पास समय तो सीमित है लेकिन हमारी ऊर्जा भी सीमित है। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और आराम, नींद, व्यायाम और सही भोजन को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे थकान और तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए प्रोडक्टिव यानी अच्छा और प्रभावी जीवन जीने के लिए केवल समय का प्रबंध करना पर्याप्त नहीं होता है, अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरीके से हम अपने जीवन में आलस्य को दूर कर सकते हैं और एक अलग ही एनर्जी अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप भी अपने विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमें लिख सकते हैं।
1: अब हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है,
2: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ, 8527449955। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संगीता पंत का गाया हुआ ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में आपने सुना संगीता पंत का गाया हुआ गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संघ मित्रा चक्रवर्ती का गायन राग वृंदावनी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संघमित्रा चक्रवर्ती का गायन राग वृंदावनी सारंग, विलंबित एक ताल, मध्य लय तीन ताल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। दिन के 12 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार, उसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पाहमला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पाहमला के बीच बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा होगी और दोनों देशों की साझेदारी बढ़ेगी। राष्ट्रपति पाहमला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तीन दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति पाहमला के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक जैसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
0: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में बंगाव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 175 अंक बढ़कर 72,085 पर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 22,472 पर था। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। अगले दो दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

आंगन। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर भी। आज मैं हूं आपके साथ। इस कार्यक्रम में आपकी रेडियो सखी राधा पाठक, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। घर आंगन, घर जहां रिश्तों की गर्माहट है, आंगन जहां यादों की खुशबू है और परिवार जहां हर पीढ़ी की अपनी ही एक खूबसूरत कहानी है। और आज के घर आंगन में, आज के विषयों में जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल जिनका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं, और जिंदगी ही तो हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। वक्त के साथ साथ ये आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और ये आत्मविश्वास करना हमें सिखाते हैं हमारे शिक्षक, हमारे गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं। आज है विश्व शिक्षक दिवस जो 5 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करता है, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। और आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन शिक्षक है जिसकी दी हुई शिक्षा आपको आज भी याद है, और वो क्या शिक्षा है अगर आप हमें बताना चाहें तो, आपके जीवन में बहुत काम आई वो शिक्षा वो हमें बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें, श्री 420।

0: बोलो ना।
1: वो बीचक दाना, बीचक दाना, दाने ऊपर दाना।
2: कितने प्यार से शिक्षक हमें सिखाते हैं और हम ये सारी जिंदगी हमें याद रहता है अगर हमें कोई अच्छी शिक्षा देता है। तो आज का हमारा घर आंगन कार्यक्रम का ये प्रश्न है कि ऐसा कौन है और कौन से गुरु हैं और आपको ऐसी क्या शिक्षा मिली जो आपको जिंदगी भर याद रही या अभी तक याद है। तो आप हमें बताइए fmgolji@gmail.com पर, हम करें आपकी ईमेल्स का इंतजार। और आज सोशल मीडिया के दौर में आपस में तुलना बहुत बढ़ गई है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी अच्छी नौकरी है, किसी के बच्चे बहुत सफल हैं, कोई विदेश में घूम रहा है, कोई भारत में ही घूम रहा है। तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर हम ऐसे क्यों नहीं हैं। लेकिन हम अक्सर अपनी पूरी ज़िंदगी की तुलना दूसरे किसी व्यक्ति की ज़िंदगी के सिर्फ अच्छे हिस्से से करते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के दूसरे पहलू को नहीं जानते, क्योंकि मेहनत उसने भी की है। सफलता मेहनत से ही मिलती है। तो इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। इसलिए तुलना करने की बजाय अपने कल से अपने आज की तुलना कीजिए। मैं आज अपने बीते कल से कितना आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने क्या नया नया सीखा है, मैंने अपने लिए क्या किया है और मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ मेहनत पर ध्यान दीजिए, यही तो असली प्रगति है।

गीत आप सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, एफएम गोल्ड और कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। हमने एक प्रश्न आपसे पूछा है और हमें ईमेल्स मिलने शुरू हो गई हैं। लिखते नवीन भाटिया मोती नगर नई दिल्ली से कि ताराचंद जी, स्वर्गीय ताराचंद जी जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उनकी शिक्षा याद रही कि जिंदगी अगर मगर में नहीं बीतती, आज का दिन ही बेस्ट है। जी हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आज में जीना चाहिए, बीते पलों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अतीत में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अब ये आया है उमेश कुमार जी खयाला से, लिखते हैं कि नमस्ते मैडम जी, हमारे शिक्षक हैं हमारे माता जी, पिताजी और इसके बाद हमारे टीचर्स। ये तो सबसे अच्छी बात कही आपने, क्योंकि माता पिता ही सबसे प्रथम गुरु होते हैं जो आपको हर चीज़ सिखाते हैं। ईमेल्स मिलने शुरू हो गई हैं। अब ये हैं राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, चौधरी वास, ये लिखते हैं कि हमारे शिक्षक प्राइमरी में सीताराम जी थे, 20 की आवाज़ का 2, 30 की आवाज़ का 3, पन पन की आवाज़ की 5, छठ की आवाज़ के 6 प्रकार, इस प्रकार की गिनती याद करवाते थे। और ये जो अभी गाना चला, मैं चली, ये इनको बहुत पसंद है। ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो गिनती हो या पहाड़े हो, वो इस तरीके से याद करवाते हैं कि लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो जाती हैं वो चीज़ें, तो वो भी याद रहता है। और बहुत अच्छी बात है, हमारे सब श्रोता लिख रहे हैं। आप भी बताइए हमें कि कौन से शिक्षक की कौन सी बात आपको आज तक याद है। हमें ईमेल कीजिए fmgoalj@gmail.com पर। और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन में जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल, जिनका सामना हम कभी ना कभी करते हैं। अब हम हमेशा इस डर के साथ क्यों जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अच्छी नौकरी हो तो लोग पूछेंगे शादी कब होगी, शादी हो जाएगी तो बच्चे कब होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी करियर की चिंता, हर उम्र में समाज की अपेक्षाएं क्यों, और खासकर महिलाओं पर तो ये दबाव कई बार और ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, जो रास्ता किसी दूसरे के लिए सही है जरूरी नहीं वो सबके लिए सही हो। अगर मैं आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हूँ या आप आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, वो सब पर लागू नहीं होता है। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अपने जीवन का निर्णय जो है वो सोच समझ कर कीजिए।

महबूब की मेहंदी, इस फिल्म में भी आपने लता मंगेशकर को सुना। परिवार जो होता है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन परिवार की उम्मीदों और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना जो होता है वो बेहद ज़रूरी होता है, खासकर महिलाओं के लिए। कई बार माता पिता बच्चों के लिए एक सपना देखते हैं, कभी बच्चे अपने माता पिता के सपने पूरे करने में अपनी पसंद भूल जाते हैं। इसी तरह महिलाएं भी परिवार की जिम्मेदारियों में अपनी इच्छाएं पीछे छोड़ देती हैं। परिवार का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है।

लेकिन परिवार का सम्मान करते हुए अपनी इच्छा को भी महत्व देना चाहिए। परिवार की अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं, मगर अपनी इच्छाएं अपने सपने दबाना सही नहीं है। सपनों को नई उड़ान दीजिए। घर में रहकर या जो परिवार चाहता है उसके साथ साथ भी आप अपने सपने अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनी खुशी के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। परिवार सर्वोपरि है, ठीक है, मगर साथ साथ अपने दिल की खुशी भी तो जरूरी है। अपनी खुशी के बारे में सोचना भी जरूरी है।

और हम भी अपना वादा निभा रहे हैं, ईमेल्स पढ़ के जो हमारे श्रोता भेज रहे हैं। बहरहाल, ये गाना हमने लिया था फिल्म जॉनी मेरा नाम से, किशोर कुमार आशु भोसले की थी आवाज़ें। और अब हमें ईमेल मिल गई है हमारे श्रोता सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं। लिखते हैं कि आपको सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन। बच्चों का सबसे पहला और बड़ा शिक्षक होता है उसकी माता, उसके पिता। हमारे माता पिता की शिक्षा हमेशा HHH रही, यानी ऑनेस्ट अम्बल एंड हेल्पफुल। क्या बात है, आप आज का सोमवार की शुभकामनाएं भी दी हैं इन्होंने, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात है, HHH का फंडा तो बहुत अच्छा लगा। और अब लिखते हैं राजेश शर्मा गाजियाबाद से। मुझे याद है जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो मैं उसे अपने क्लास में पढ़ने वाले में सबसे अच्छा बच्चा था। इस बात का शायद मुझे थोड़ा घमंड था, अहंकार था। मेरे पूजने गुरुजी स्वर्गीय पंडित श्रीराम परीक्षा शर्मा ने मुझे समझाया था, कहा था ईश्वर तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर बनाए, परंतु तुम एक बात याद रखना, कभी भी तुम अहंकार मत करना। बहुत अच्छी बात आपके गुरुजी ने आपको बताई। और आप लिखते हैं कि उनकी यही बात आज तक मैं नहीं भूला हूँ, वो हमेशा मेरी यादों में रहते हैं, मैं हृदय से उनके आभार और उनकी पूजा करता हूँ। ये मेल हमने पढ़ी राजेश शर्मा की गाजियाबाद से। और ये लिखते हैं, अगली मेल हमें मिली है गौरी शंकर जी की नांगलोई से। ये लिखते हैं राधा बेटा राम राम। 1970 की बात है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। हिसार हरियाणा में हमारे मास्टर जी का नाम था काकाराम। वो क्लास के बाद में हमें कहानी सुनाते थे और बड़े ध्यान से हम कहानी सुनते थे। वो कहानी भी शिक्षा प्रद होती थी। वो कहते थे जैसे तुम कहानी ध्यान से सुन रहे हो, ऐसे ही ध्यान पढ़ाई में लगाओ तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। आज भी मास्टर जी का नाम याद आता है और उनकी दी हुई शिक्षा भी याद आती है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी नांगलोई से, जो आप लिखते हैं कि बहुत अच्छी कहानी। क्योंकि हम शिक्षक जो होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई कहानी हमें बताते हैं जो हमें हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं। तो हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं अपने श्रोताओं से। और आज लेकर आ रहे हैं श्रोता वो बातें जो उन्होंने शिक्षा ली अपने गुरुओं से। जी, किसी भी शिक्षा शिक्षक ने जो भी आपको शिक्षा दी वो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं fmgoalga@gmail.com पर। क्योंकि सफलता का पैमाना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। क्या बड़ी नौकरी सफलता है, या बड़ा घर सफलता है, या बहुत सारा पैसा कमाना सफलता है? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। किसी महिला के लिए अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना सफलता हो सकती है। किसी बुजुर्ग के लिए स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन भी सफलता हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए एक छोटा सा व्यवसाय सफलता हो सकता है। इसलिए दूसरों के पैमाने से अपनी सफलता को मत नापिए। जिंदगी में आपका संतोष और आत्मसम्मान आपको मिलता रहे, वो सफलता है।

बहारों के सपने, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और हम अपने श्रोताओं से रूबरू हो रहे हैं एक ईमेल के जरिए। जी हाँ, आप ईमेल हमें भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि जिंदगी में किस शिक्षक ने आपको ऐसी कौन सी शिक्षा दी जो आपके बड़े काम आई, और हमें भी तो पता चले, और हमें भी तो वो शिक्षा पता होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। अब हमें पुनीत जी दिलशाद कॉलोनी से एक मैसेज मिला है कि विनोद सर कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संसार जीना चाहिए। जी हाँ, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संसार जीना चाहिए, कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। अब कभी ये नहीं करनी चाहिए वो ड्राइविंग तेज करता है तो मैं भी करूँगा, या वो गलत आदतों में है तो मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हिस्से का संसार जीना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, क्योंकि कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। अब वासु लिखते हैं कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है जो भी हालात हों। इनके शिक्षक इन्हें बताते हैं, इनकी गरिमा मैडम ने इन्हें बताया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हर हालात में खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक बात और है जो हम आज के कार्यक्रम में आपसे करेंगे कि कई बार कोई व्यक्ति सफल ना हो पाए, असफल हो जाता है, तो क्या पूरी ज़िंदगी असफल हो जाती है? नौकरी नहीं मिली तो हम असफल हो गए, व्यवसाय में नुकसान हुआ तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, किसी परीक्षा में अगर कम अंक आ गए, रैंक कम आ गई, तो लगता है आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन असफलता ज़िंदगी का अंत नहीं है, अनुभव का एक पड़ाव है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक अनुभव, एक ठोकर मिली जिसमें आपको अनुभव भी मिला। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अनुभव मिलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कि कई बार परिणाम के आधार पर बच्चों को आंका जाता है, वो भी ठीक नहीं है। कोशिश अच्छी थी, अगली बार और बेहतर करेंगे, ये बात सब पर लागू होती है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। ये मतलब है कि परिवार और समाज की बिल्कुल ना सुने, इसका अर्थ है सबके सुनिए, विचार कीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लीजिए। ज़िंदगी में कई रास्ते हैं, कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, कभी रास्ते में सफलता मिलेगी, कभी आलोचना मिलेगी, लेकिन अगर हमें अपने निर्णय पर विश्वास है ना, और हम ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ता धीरे धीरे बनता चला जाता है। इसलिए हमारा आज का ये संदेश है कि दूसरों की बनाई हुई ज़िंदगी मत जिए, अपनी परिस्थिति को समझिए और अपना रास्ता बनाइए, और देखिएगा मेहनत और ईमानदारी से सफलता ज़रूर मिलेगी।

अनपढ़ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और बातें चल रही थी जिंदगी की। अब कुछ बदलते मौसम की बात हो जाए। मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण इन दिनों वायरल संक्रमण या फ्लू की समस्या देखी जा रही है। सुबह शाम की ठंड और दिन के समय में गर्मी महसूस कराने वाला ये मौसम हमारी सेहत के लिए बहुत प्रतिकूल है। ऐसे में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। तापमान में वृद्धि के कारण ये मौसम खुशनुमा भी लगता है, और कई बार जब शाम को ठंड हो जाती है तो भी अच्छा लगता है। दिन में गर्मी हो जाती है, लगता है गर्मी होने लगी। मगर कुछ लोगों के लिए, विशेषकर एलर्जी की जिन्हें समस्या है ना, उनके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि दिवाली के समय में लोग साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। अब जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आएंगे, लोग घर की साफ़ सफाई करेंगे, तो जिन्हें एलर्जी है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। मौसमी परिवर्तन में वातावरण में पोलन संक्रमण यानी पराग का स्तर बुखार के लक्षणों को बढ़ा सकता है। ये पराग सूक्ष्म होते हैं और हवा के साथ साथ सीधे फेफड़ों में जाते हैं। चूंकि ये बाहरी तत्व हैं तो शरीर इन्हें स्वीकार नहीं करता और इससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है। इसलिए शरीर में तेज प्रतिक्रिया होती है, बार बार छींकें आती हैं, गले में खराश होती है, नाक बहती है जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, सिर दर्द भी हो सकता है।

इसलिए जरूरी है सावधानी। मास्क लगाएं, बाहर का खाना ना खाएं, साबुन से हाथ धोने की आदत बनाएं ताकि संक्रमण बढ़ ना जाए। ग्रीन टी लें, अंजीर अदरक जैसी एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें लें, शरीर को आराम दें, हाइड्रेट रहें, पानी के साथ साथ नारियल पानी छाछ लें और फ्लू से बचे रहें। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के गरारे किए जा सकते हैं। तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, गुड़ की चाय या काढ़ा पीजिए। कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। सेहत रहेगी तभी तो आप खुश रह पाएंगे।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और जब सेहत की बात चली ही है तो कुछ सलाद हम आपको आज बताना चाहेंगे। क्लासिक कुकुम्बर सलाद। जी हाँ, दो मध्यम प्याज ले लीजिए, दो मध्यम टमाटर ले लीजिए, दो मध्यम खीरे ले लीजिए, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू का रस, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, नमक, सब्जियों को बारीक काट कर सब मसाले मिला दीजिए। अब देखिए, एक आपको बताते हैं सलाद जो आपको लगे कि रशियन सैलड जिसे बोलते हैं, शाकाहारी, बिल्कुल जी हाँ। एक कप उबली हुई मिश्रित सब्जियां ले लीजिए, गाजर, मटर, आलू और बीन्स। एक छोटा

सेब ले लीजिए कटा हुआ मिठास के लिए, चौथाई कप उबला अनानास ले लीजिए, आधा कप मेयोनीज ले लीजिए, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम और आधा चम्मच छोटी चीनी, आधा चम्मच काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, इन सबको मिला दीजिए। अब देखिए रशियन सैलेड बन जाते हैं, जब मेयोनीज और फ्रेश क्रीम इन सब्जियों में लपेटेगी और आप खाएंगे ना तो आपको बहुत स्वाद आएगा। कॉर्न और शिमला मिर्च की सलाद बना सकते हैं, आधा कप उबला स्वीट कॉर्न, आधा कप कटी शिमला मिर्च, लाल पीली हरी सब तरह के ले लीजिए, क्योंकि रंगीन खाना लगेगा तो आपको खाने में भी लजीज लगेगा। आधा कप कटा प्याज, 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल, 1.5 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, इन सबको मिला दीजिए और सब्जियां इस तरह से काटिए ना स्क्वायर स्क्वायर के देखने में बड़ी खूबसूरत लगे। ये 3 तरह की सैलेड मैंने आपको बताई, देखते हैं अब कौन कौन श्रोता ये सैलेड बनाकर खाते हैं और हमें मेल करते हैं कि सैलेड इनको कैसी लगी। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

प्रश्न हमने अपने श्रोताओं से पूछा, एक मैसेज और आया है लवली जैन का रोहिणी से। वो लिखते हैं, उन्हें शिक्षा दी थी इनके जो गुरुजी हैं बचपन में, कि हर वक्त आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहो और छात्र बने रहो। शिक्षा वो जो कहीं से भी मिल जाए ले लीजिए, इंसान हर पल सीखता है। बिल्कुल सही लिखा है लवली जैन जी ने, और उनके शिक्षक ने भी बहुत अच्छी शिक्षा दी। और सभी उन श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में हमें मेल्स भेजी, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम ध्यान से सुना। और ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म इज्जत से लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस कार्यक्रम से यानी कि घर आंगन से राधा को दीजिए विदा। लेकिन ध्यान रही रखिए कि इस खूबसूरत विचार के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने लिए समय निकालिए, मुस्कुराते रहिए, फिर कभी फिर से मुलाकात होगी। राधा को फिलहाल इस कार्यक्रम से आज्ञा दे, सुनते रहिए ये गीत।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 4थे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स

82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: governing transboundary rivers, including the Nile. They opposed unilateral measures that could affect the existing water uses of Egypt and Sudan. India concluded its campaign at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya with 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze, finishing fourth in the overall standings. India's campaign produced a series of landmark achievements across disciplines. The defining feature of India's campaign was its clean sweep of gold medals in men's and women's cricket, kabaddi and hockey. Benchmark domestic equity indices were trading marginally up in afternoon trade today. The Sensex rose 82 points to 71,992, while the Nifty added 28 points to 22,450 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 16 सेकंड, और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाम है जिसका एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: प्रोग्राम एक ही फिल्म से आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज मैं आपको फिल्मी दुनिया के एक ऐसे सफर में लेके चलूंगी, और वो समय होगा 1970 का, एक ऐसी फिल्म की ओर जिसमें प्यार भी है, दर्द भी है, संगीत भी है, और एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे दुनिया उसकी असली पहचान से नहीं बल्कि एक नाम से याद करने लगती है। फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और इस फिल्म के साथ जुड़े जो गीत हैं वो आज भी हमारे दिल में वही कसक पैदा करते हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको इस फिल्म का सबसे सुपरहिट जो गीत है, जो इस फिल्म की पहचान है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप भी इस सफ़र में हमारे हमसफ़र बन सकते हैं। इस फिल्म से कोई जुड़ी ख़ास बात आपके पास है, जानकारी है, कोई याद है, तो वो सब आप हमसे शेयर कर सकते हैं मेल के ज़रिए। अपने संदेश भेजिए हमारे इस मेल आईडी पर, mail@radiodehli.com, और इस सुनहरे सफ़र में बन जाइए हमारे हमसफ़र।

जी हाँ, जब भी 1970 की बात चलेगी तो इस फिल्म का जिक्र जरूर होगा। इस फिल्म का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक शक्ति सामंत ने और मुख्य कलाकार के रूप में नजर आए थे शमी कपूर, आशा पारेख, हेलेन और प्रेम चोपड़ा। फिल्म के निर्माता अजीत चक्रवर्ती थे और संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। गीत के बोल जो आप इतने खूबसूरत से सुन रहे हैं, ये लिखे थे हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म के चार प्रमुख कलाकार, जैसा कि हमने आपको बताया, शमी कपूर, आशा पारेख, हेलेन और प्रेम चोपड़ा। इससे पहले 1966 की लोकप्रिय हिट फिल्म तीसरी मंजिल में एक साथ नजर आ चुके थे। पगला कहीं का, इसमें दर्शकों को एक बार फिर से इस लोकप्रिय टीम को देखने का मौका मिला था। ये फिल्म जो है, इसकी कहानी का जो केंद्र है वो है सुजीत, जिसका किरदार निभाया शमी कपूर ने। आशा पारेख डॉक्टर शालिनी यानी कि शालू बनी थी। हेलेन ने जैनी का किरदार निभाया था और प्रेम चोपड़ा श्याम के किरदार में थे। तो बात करते हैं थोड़ी सी इस फिल्म की कहानी की, जिसका केंद्र था सुजीत, जिसका बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीतता है। बचपन की एक घटना उसके जीवन पर गहरा असर डालती है और आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और वो समाज की नज़र में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगता है जो सामान्य जीवन से अलग है। फिर उसकी मुलाकात होती है श्याम से, जो उसे गाते हुए सुनता है और उसकी गायकी को पहचान कर उसे एक नाइट क्लब में गाने का मौका देता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है जैनी से। प्यार, गलतफहमियां, परिस्थितियां और सुजीत की ज़िंदगी की पुरानी परेशानियां कहानी को आगे बढ़ाती हैं। फिर क्या होता है वो भी बताएंगे। उसके पहले ये गीत खूबसूरत सा रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: जी हाँ, पगला कहीं का। कहानी थोड़ी बहुत आपको बता दी। बाद में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि सुजीत को मानसिक अस्पताल जाना पड़ता है। वहीं उसकी जिंदगी में डॉक्टर शालिनी यानी शालू की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है और यही वो जगह है जहां फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती बल्कि इंसान और समाज के नज़रिए की कहानी भी बन जाती है। पगला कहीं का की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं आप क्या है? इसका संगीत जो आप सुन रहे हैं, शंकर जयकिशन की धुनें और हसरत जयपुरी के गीतों ने फिल्म को यादगार बनाया। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों की आवाज़ सुनाई दी। एक से एक बढ़कर गीत हैं और ये गीत फिल्म की अलग अलग भावनाओं को सामने लाते हैं। कहीं दर्द है, कहीं मस्ती है और कहीं जिंदगी के संवाद भी हैं। आपको जो हमने पहला गीत सुनवाया था वो गीत तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जानते हैं ये गीत शम्मी कपूर साहब को इतना पसंद था कि उनके जीवन के बाद के वर्षों में ये गीत उनके मोबाइल फोन की रिंगटोन तक बन गया था। तो चलिए आप सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में खूबसूरत सा गीत, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा,
1: क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों।

शमी कपूर साहब को हम अक्सर उनकी चुलबुली, रोमांटिक और बेहद ऊर्जावान स्क्रीन इमेज के लिए याद करते हैं, लेकिन पगला कहीं का में उन्होंने सुजीत जैसा भावनात्मक और मानसिक संघर्ष से गुजरता किरदार निभाया। ये उनके सामान्य रोमांटिक अंदाज से काफ़ी अलग था और शायद यही वजह है कि आज भी ये फिल्म शमी कपूर की फिल्मोग्राफी में एक अलग रंग लेकर खड़ी दिखाई देती है। कभी कभी कोई गीत किसी किरदार की पूरी जिंदगी की आवाज़ बन जाता है। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे भी कुछ ऐसा ही गीत था। इसके शब्दों में जैसे किसी ऐसे इंसान की पुकार है जो कह रहा हो कि तुम मुझे भुला देना शायद आसान नहीं होगा ये, क्योंकि मेरी यादें तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। और यही भाव इस गीत को फिल्म से बाहर निकाल कर श्रोताओं के दिल तक पहुंचाता है। ये गीत रफ़ी साहब के साथ ही लता जी की आवाज़ में भी है। कुछ देर बाद वो गीत भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आशा जी की आवाज़ में सुनवाते हैं ये एक और खूबसूरत सा गीत।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं फिल्म 1970 की पगला कहीं का। और आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। अब मैं आपको सुनवा रही हूं वो खूबसूरत सा गीत जो इस फिल्म की जान है, जिसे रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सुन चुके हैं और लता जी की आवाज़ में अब आपको सुनवाती हूँ। आपके ढेर सारे संदेश भी मेरे पास पहुँच गए हैं, उनको भी मैं शामिल करूँगी। फिलहाल इस गीत को सुनिएगा और उसके बाद आपके संदेश हम शामिल करेंगे।

तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल नीति हमारे साथ हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम विशाल प्रिया हैं, सुल्तान नगर उत्तर

बताते हैं, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गो प्रेम, कपिल, शिवांश और संगीता जी हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमणी वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं और लिख रहे हैं कि यह जो प्रोग्राम है इसमें गीत और जानकारी हमें पसंद आ रही है, शुक्रिया आपका। बटिंगकेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और परिवार के सभी सदस्य हैं। मुरादाबाद गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस जी हमारे साथ हैं। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम और इंदिरा शर्मा जी हमारे साथ हैं और ये लिख रहे हैं कि एक ही फिल्म कार्यक्रम के बारे में मैं लाइव सुन रही हूं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शुक्रिया आपका। मुंडा टोला डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंड और गंगेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा जी ढेर सारी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी, जसवीर जस्सी के साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गांव फरा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का एक और संदेश पहुँच गया है हमारे पास। अगला संदेश जो हमारे पास है वो पहुँचा है मुकेश कासलेकर जी का, जो कि तहसील वरोड जिला अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत सी जानकारी भेजी है। लिख रहे हैं कि बचपन में अपने पिता को मानसिक चिकित्सालय में देखने के बाद सुजीत के जीवन पर गहरा असर पड़ता है, ये कहानी इन्होंने और बहुत सारी जानकारी भी हमसे शेयर करी है, शुक्रिया आपका। डी वी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। फारूक अली खान हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास अजीत भापसर जी का प्रमिला जी के साथ वीरन गाँव गुजरात से आया हुआ है और ढेर सारी जानकारी फिल्म से जुड़ी हुई आपने भी हमसे शेयर करी है हमेशा की तरह। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकेस्टो रोजी जी हमारे साथ हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूल जी हमारे साथ हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन, उषा और टीलू नायक जी हमारे साथ हैं। भवरपुर बसना से राधेश्याम, चंपा जगदीश देवानगन जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी ज्योति जी के साथ हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं और रामशरण विश्वकर्मा साहिल जी ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके बाद रोशन देवानगन जी हमारे साथ कौशल्या और हेमलता जी के साथ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से, गांव नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी जी हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सफ़र में आप हम सफ़र बने हैं और भी बहुत सारे संदेश हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और आपको हम निराश नहीं कर सकते हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार तिवारी जी हैं हमारे साथ। असलम खान जी हमारे साथ हैं। मसरूर हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ़ कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है और मैं आप सबको निराश नहीं करना चाहती, इसलिए जल्दी जल्दी आपके संदेश ले रही हूँ। बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, मधु जी हमारे साथ हैं। मेहर अरोड़ा पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से हमारे साथ हैं। बन बघेरा राजनांदगांव से योगेश आशा सर्वा जी हमें सुन रहे हैं और अब जाते जाते इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए छोड़े जा रही हूँ। 2:30 पर प्रोग्राम रहेगा एक ही कलाकार, तो आपको जाना कहीं नहीं है, बस थोड़ी देर में ही आपको वापस आना है क्योंकि आज के जो सितारे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और उनके ऊपर फिल्माई गीत भी लाजवाब हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम से यानी एक ही फिल्म से अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते स्विट्जरलैंड दे राष्ट्रपति गी मामला ने आज नवी दिल्ली विच दवल्ली गल्लबात कीती। वख-वख खेत्रां विच दवल्ले सहयोग विच प्रगति दी समीक्षा कीती गई। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत EU आजाद व्यापार समझौते की शलाघा करदे कहा कि यह व्यापार समझौतिया ते गल्लबात करन लई भारत की पहुंच नूं दर्शाउंदा है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब दे मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार अते नकदी बदले ट्रांसफर मामले दी केंद्रीय पड़तालिया ब्यूरो CBI जांच दे हुकम दित्ते ने। भारत अते कैनेडा अज ओटवा विच तजवीजशुदा व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते CEPA ते गल्लबात दा पंजवां दौर शुरू करनगे। मिस्र, सुडान, एरिट्रिया अते सोमालिया ने देशां दी प्रभुसत्ता नाल समुद्र दे शासन अते पानी दे अधिकारां दी महत्ता ते जोर दित्ता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच स्विट्जरलैंड दे राष्ट्रपति गी पैमला नाल दवल्ली गल्लबात कीती। गल्लबात विच व्यापार अते निवेश, विज्ञान, तकनालोजी अते नवीनता, आवाजाई, सभ्याचार अते लोकां तों लोकां दे संपर्क समेत वख-वख खेत्रां विच दवल्ले सहयोग विच प्रगति दी समीक्षा कीती गई। दोवें नेता बहुपक्षी मंचां विच सहयोग अते खेतरी तालमेल विकास ते चर्चा कीती। गल्लबात तों बाद अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ते स्विट्जरलैंड आलमी शांति ते स्थिरता लई रल के काम करदे रहणगे।
2: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: यूरोपियन आजाद व्यापार समझौते एसोसिएशन देशों दरमियान समझौते बारे श्री मोदी ने कहा,
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10,00,000 डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: पहला स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अज भारत के 3 दौरे से नवी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने नाल सीनियर अधिकारियों से व्यापारक आगुओं समेत एक उच्च पदरी वफद भी आया है। उन्होंने हवाई अड्डे से सड़क आवाजाई और शाहराहों बारे राजमंत्री अजय थमटा ने स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन विखे मेहमानों का रस्मी स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने तिना सेवाओं के गार्ड ऑफ ऑनर नाल सम्मानित किया गया। रस्मी स्वागत तो बाद पत्रकारों नाल गल्लबात करदिआं श्री पैमला ने कहा कि यह दौरा इस भाईवाली की महत्ता नूं उजागर करन दा एक वधिया मौका है। उन्होंने जोर दे के कहा कि दोवां देशों विचकार संबंध सांझियां लोकतंत्री कदरां कीमतां दे नाल नाल विश्वास अते आपसी सत्कार ते आधारित ने। राष्ट्रपति पैमला ने कहा कि उन्हां दा दौरा नजदीकी व्यापक अते लंबे समय तो चली आ रही भाईवाली नूं होर मजबूत ते डूंगा करन वल इक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज राष्ट्रपति पैमला नाल मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने भारत EFTA आजाद व्यापार समझौते समेत भारत स्विट्जरलैंड भाईवाली नूं होर मजबूत करन दे राष्ट्रपति पैमला दे दृष्टिकोण की शलाघा की थी। उन्होंने विश्वास प्रगट किया कि प्रधानमंत्री मोदी नाल श्री पैमला की मुलाकात वख-वख खेत्रां विच सहयोग नूं होर अगे वधाएगी। राष्ट्रपति पैमला अज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल मुलाकात करेंगे। शाम नूं राष्ट्रपति मुर्मू श्री पैमला दे सम्मान विच इक अधिकारित दावत दी मेजबानी भी करेंगे। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि अमरीका भारत व्यापार समझौते ते गल्लबात चल रही है अते अजे तक इस नूं अंतम रूप नहीं दिता गया है। अज नवी दिल्ली विच जर्मन नेतावां नाल मुलाकात करदे

0: श्रीमती सीतारमन ने कहा कि दोवें धिरां इक अजिहे बिंदू ते पहुंच गईआं ने जिथे गलबात रुक गई है। उन्हां कहा कि विचाराधीन समझौता मुश्किल अते गहन गलबात तो बाद होया है।
1: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
2: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
0: खजाना मंत्री ने भारतीय आजाद व्यापार समझौते की शलाघा करदिया कहा कि यह व्यापार समझौतिया से गलबात करन अते उन्हां नूं अंतम रूप देण लई भारत की पहुंच नूं दर्शाउंदा है। अज नवी दिल्ली विच म्यूनिख आगुआं की मीटिंग विच बोलदिया श्रीमती सीतारमन ने इस नूं सारे समझौतिया की जननी दस्या। उन्हां कहा कि यह समझौता करीब 2 अरब लोगों अते आर्थिकतावां नूं कवर करदा है जो विश्व GDP दे कोई 1/4 हिस्से की नुमाइंदगी करदिया ने। खजाना मंत्री ने कहा कि यह समझौता मुकाबलेबाजी नूं प्रभावित किते बिना पूरक बाजारा तक पहुंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते तहत अपनिया 92.5% टैरिफ लाइना खोलिया ने जो कि व्यापार मुल का करीब 97% है। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब ते मुख्यमंत्री दफ्तर नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार अते नकदी बदले ट्रांसफर मामले दी केंद्रीय पड़तालिया ब्यूरो CBI जांच दे हुक्म दित्ते ने। अदालत ने यह फैसला एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वल्लों मुख्यमंत्री दे विशेष ड्यूटी अधिकारी नाल संबंधित कथित भ्रष्टाचार ते उच्च प्रोफाइल नकदी ते दावियां तों बाद लिया है। इस तों पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कथित तौर ते पंजाब दे पुलिस डायरेक्टर जनरल नूं 3 पत्र भेजे सन जिन्हां विच FIR दर्ज करन दी मांग कीती गई सी, पर राज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान साबका केंद्रीय राजमंत्री अते सीनियर भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच किया है कि हाईकोर्ट वल्लों भ्रष्टाचार के मामले नूं CBI नूं सौंपना साबित करदा है कि राज मशीनरी जानबुझ के अपने आप नूं बचा रही सी। उन्हां कहा कि जदों ED दे 3 अलर्ट पंजाब पुलिस ने लुका दित्ते तां अदालत नूं दखल देना पिया। सीनियर कांग्रेस आगू अते विधानसभा विच विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी हाईकोर्ट दे फैसले दा स्वागत कीता अते उम्मीद जताई है कि CBI एक निरपक्ष अते समाबद्ध जांच करेगी। भारत अते कैनेडा अज ओटवा विच तजवीजशुदा व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते CEPA ते गलबात दा 5वां दौर शुरू करनगे। दोवें देश दिसंबर तक व्यापार समझौते नूं अंतिम रूप देण दा टीचा रखते ने। 5 दिना गलबात 9 अक्तूबर तक जारी रहेगी। 4थे दौर दी गलबात 18 सितंबर नूं नवी दिल्ली विच होई। इस साल मार्च विच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अते कैनेडा दे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दिसंबर तक समझौते नूं अंतिम रूप देण दा टीचा रख्या सी। अज सवेरे जलंधर नेड़े बंगा फगवाड़ा शाहरा ते हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस पलट जाण कारण 4 व्यक्तियां की मौत हो गई अते 15 तो वध जख्मी हो गए। मरण वाले विच फगवाड़ा विखे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU दी एक विद्यार्थन शामिल है अते एक होर मृतक अमृतसर तो है। मृतकों विचों 2 की पछाण अजे तक नहीं हो सकी है। जख्मियों विचों ज्यादातर LPU दी विद्यार्थन ने। पुलिस हल्कियां मुताबिक अमृतसर जाण वाली बस मनाली तो आ रही सी जदों ए एक पुल तो पलट गई। मिस्र, सुडान, एरिट्रिया अते सोमालिया ने देशां दी प्रभुसत्ता लाल समुंदर दे शासन अते पानी दे अधिकारां दी महत्ता ते जोर दित्ता है। नेतावां ने कल मिस्र दे न्यू अलामीन विच एक 4 तरी सलाहकार सम्मेलन तों बाद एल अलामीन सांझा ऐलाननामा पत्र जारी कीता। उन्हां ने किसी भी बहाने खेतरी देशां दे अंदरूनी मामलियां विच दखल अंदाजी नूं रद्द कीता है। अज गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अज इस मौके गुरु नानक देव जी नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच बिरला ने कहा कि अपने जीवन राही गुरु नानक देव जी ने दुनिया नूं सच्चाई, दया, मनुखता अते सद्भावना दा संदेश दिता। उन्हां ने समाज विच प्रचलित अंधविश्वास, वितकरे ते जात आधारित ऊच नीच जिहियां समाजिक बुराईयां खिलाफ बेखौफ होकर आवाज उठाई। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि प्यार, दया, सेवा, सच, भाईचारे अते आपसी सत्कार ते आधारित गुरु नानक देव जी का संदेश अज भी उन्ना ही प्रसंगिक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी गुरु साहब नूं उन्हां दे ज्योति जोत दिवस ते नमन कीता है। आखिर विच इस बुलेटिन दियां खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति की पामला ने आज नई दिल्ली में दवली गलबात की वक्त खेतरा में दवली सहयोग में प्रगति की समीक्षा की गई। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारत यू आजाद व्यापार समझौते की शलाघा करते हुए कहा कि व्यापार समझौतों से गलबात करने लिए भारत की पहुंच को दर्शाता है। पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री दफ्तर से संबंधित कथित भ्रष्टाचार और नकदी बदले ट्रांसफर मामले की केंद्रीय पड़ताल

0: ਬਿਊਰੋ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्ज़रलैंड के सदर गी पोमेलों के साथ दोतरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्ज़रलैंड तिजारत सरमायाकारी को मिलकर फरोग देने और दुनिया के लिए काबिल भरोसा सप्लाई चेन कायम करने के लिए पुरअज़्म है। भारत और स्विट्ज़रलैंड ने मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने भारत EU आज़ाद तिजारती माहदे की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे तिजारती माहदे से मुतालिक बातचीत और उन्हें कतई शक्ल देने के भारतीय तरीक़ाकार की अक्कासी होती है। अमरीकी फौज ने कहा है कि कैरेबियाई समंदर में मुबैना ड्रग स्मगलिंग से वाबस्ता एक कश्ती पर ताज़ा हमले में 4 अफराद हलाक हुए हैं। और भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी सिस्टम और बुनियादी ढांचे को फरोग देने और इनमें इश्तराक के सिलसिले में मुख्तलिफ माहदों पर दस्तखत किए। स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे के दरमियान दिलचस्पी के एक खत पर भी दस्तखत किए गए। इन माहदों पर नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गी पोमेलों के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। एक मुश्तरका प्रेस मुलाकात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के तई स्विट्जरलैंड के सदर गी पोमेलों के अज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता अक्टूबर में यूरोपीय आज़ाद तिजारती अंजुमन के साथ तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी से मुतालिक माहदे का नफाज तारीखी रहा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए बाजार तक रसाई को बढ़ाने और सरमायाकारी में मजीद सहूलत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इसी वक्त में भारत बायोटेक्नोलॉजी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और खुराक को डिब्बा बंद करने जैसे अहम शोबों में स्विट्जरलैंड की जानिब से नई सरमायाकारी को रागिब करेगा।
2: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सदर गी पोमेलों से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने भारत EFTA TEPA के वादे सिलसिले में भारत स्विट्जरलैंड शराकतदारी को मुस्तहकम करने की खातिर सदर पोमेलों की कोशिशों की सताइश की। इससे कबल स्विट्जरलैंड के सदर ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गुलाय अकीदत नजर किए। सदर पोमेलों आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सदर मुर्मू स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब के एजाज में एक सरकारी जियाफत की भी मेजबानी करेंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत के माहदे की सताइश की और कहा है कि ये तिजारती माहदों से मुतालिक मुजाकरात और उन्हें हतमी शक्ल देने के हवाले से भारत के तरीक़ाकार को उजागर करता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिख लीडर्स मीटिंग से खिताब करते हुए मुहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस माहदे को बजा तौर पर तमाम माहदों की असल करार दिया गया है। इस माहदे में तकरीबन 2 अरब अफराद की آبادی رکھنے والی معیشتیں شامل ہیں جو مجموعی طور پر دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی جی ڈی پی کی نمائندگی

0: स्मगलिंग से वाबस्ता एक कश्ती पर ताजामली में 4 अफराद हलाक हुए हैं और भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. India and Switzerland today inked several agreements in the field of promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure. A letter of intent was also signed between the Department of Science and Technology and the Swiss National Science Foundation. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These agreements were signed after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated the Swiss President's commitment to India-Switzerland relations. He said India implemented the historic Trade and Economic Partnership Agreement with the European Free Trade Association, EFTA, countries last October. He said the agreement was India's first free trade agreement with the European Economic Bloc.
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: Prime Minister Modi said India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries. He said this will increase exports of Indian agricultural products, pharmaceuticals, textiles and engineering goods to Switzerland.
2: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
1: Mr. Modi said at the same time India will attract new Swiss investments in important sectors such as biotechnology, life sciences, banking, insurance, food processing and sustainability. The Prime Minister said through these initiatives, the two nations will work together to develop trusted supply chains and reliable solutions for the entire world.
2: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: Swiss President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a 3-

0: Forecast heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
2: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
2: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामलान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के

0: राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from. Both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
3: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गाँवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
4: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
5: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
4: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
6: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
4: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से ये साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
8: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कॉन्फ्लिक्ट के ओर बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार

0: के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार। नाम है एक ही कलाकार। एक ही कलाकार प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आज हम सिनेमा की दुनिया के एक ऐसे चेहरे को आपके बीच लेकर आए हैं जिसकी मुस्कान, जिसकी अदाकारी आज भी सबके दिल में बसी हुई है। जी हाँ, सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनकी अदाकारी सब कुछ दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेता है। तो आज की हमारी जो ये कलाकार हैं, जो सितारे हैं, ये भी एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं जिन्होंने 70 के दशक के आखिरी वर्षों में हिंदी सिनेमा में कदम रखा और बहुत कम समय में बड़े सितारों के साथ अपनी पहचान बनाई। अब ये सितारा कौन है ये वो तो आप गीत सुनकर पहचान ही जाएंगे। और जब आप पहचान लेते हैं, जान जाते हैं, तो आपको पता ही है क्या करना होता है। अपने जवाब हमें मेल के जरिए भेजना होता है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो फिलहाल आपको हम लता जी की आवाज़ में ये गीत सुनवा रहे हैं। पहचानिए कि आज हम कौन सा सितारा आपके लिए लेकर आए हैं।

ढेर सारे खूबसूरत से गीत भी सुनेंगे। 11 फरवरी को यानी कि 1957 को मुंबई में जन्मी टीना मुनीम ने मनोरंजन की दुनिया में फिल्मों से पहले मॉडलिंग के रास्ते पर कदम रखा था। 1975 में उन्होंने फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब जीता और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और यही वो दौर था जब उनकी खूबसूरती और कैमरे के सामने सहज व्यक्तित्व ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया और फिर उनकी मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता और निर्देशक देवानंद साहब से। देवानंद ने टीना में अपनी अगली नायिका को देखा और उन्हें अपनी अगली फिल्म देश परदेश में मौका दिया। साल था 1978, फिल्म थी देश परदेश, निर्देशक और अभिनेता थे देवानंद और टीना मुनीम ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना अभिनय शुरू किया। फिल्म में टीना ने गौरी का किरदार निभाया था और एक नए चेहरे के लिए ये किसी सपने के सच होना जैसा था और टीना ने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया। तो अब फिलहाल हम आपको जो अगला गीत सुनवा रहे हैं वो हमने इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म सौतन से लिया है। इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीत को।

सुपर डुपर हिट सॉन्ग फिल्म सौतन से आप सुन रहे थे। तो चलिए बात करते हैं आगे की। हमने आपको बताया कि टीना मुनीम ने किस तरीके से अपने अभिनय के सफ़र की शुरुआत की थी। देवानंद साहब ने उनको मौका दिया था। इसके बाद देवानंद साहब के साथ उनकी जोड़ी ने मनपसंद और लूटमार जैसी फिल्मों से भी दर्शकों का दिल जीता। लूटमार जो कि 1980 में आई थी और इसका निर्देशन भी देवानंद ने ही किया था। टीना मुनीम का जो फिल्मी सफ़र था वो ऐसे दौर में शुरू हुआ जब हिंदी फिल्मों में संगीत की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। फिल्में सिर्फ कहानी और सितारों के कारण नहीं चलती थी बल्कि उनके गीत भी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते थे। टीना पर फिल्माए गए गीतों में रोमांस था, चंचलता और 80 के दशक की खास फिल्मी रंगत दिखाई देती है। उनकी जो फिल्में थीं जिनमें देश परदेश, मनपसंद, लूटमार, कर्ज, 50-50, सौतन, पुकार, बड़े दिल वाले, युद्ध, आखिर क्यों, अधिकार, मुकद्दर का सिकंदर, इन फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरीके के किरदार निभाए और दर्शकों के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। साल 1980 में याद कीजिए, उस फिल्म का नाम था कर्ज। टीना मुनीम के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है और इस फिल्म में उनके साथ ही ऋषि कपूर। फिल्म की कहानी, संगीत और पुनर्जन्म की रहस्यमय कहानी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिलहाल अगला जो गीत हमने लिया है वो दीदारे यार, उनकी एक खूबसूरत सी फिल्म थी, उससे लिया है। इस गीत को भी आप सुनिएगा।

टीना मुनीम के करियर में एक और महत्वपूर्ण नाम रहा, वो थी राजेश खन्ना। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिसमें सौतन, आखिर क्यों, बेवफाई, अलग अलग और दूसरे प्रोडक्ट्स प्रोजेक्शन भी शामिल रहे थे। टीना और राजेश खन्ना की जोड़ी 80 के दशक के जो दर्शक थे उनके बीच काफी चर्चित थी। राजेश खन्ना उस समय हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय सितारों में से एक थे और उनके साथ काम करना किसी भी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। टीना ने उनके साथ रोमांटिक और पारिवारिक दोनों तरीके की भूमिकाएं निभाई। वहीं देव आनंद साहब के साथ भी जो टीना का संबंध था वो केवल फिल्मों से ही नहीं था। देव आनंद की फिल्म बुलेट के निर्माण के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और बाद में देव आनंद ने टीना को अपनी फिल्मों में नायिका के रूप में लिया, यानी कि पर्दे पर टीना की पहली बड़ी शुरुआत से पहले ही उनकी मुलाकात उस इंसान से हो चुकी थी जिसने आगे चलकर उन्हें हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया था।

0: जी हाँ, टीना जी की यही अदायगी थी जो उनको इतने ज़्यादा प्यार लोगों का दिलाया उन्होंने। उनकी जो सादगी थी, उनके बहुत ज़्यादा बनावटी अंदाज़ उनका नहीं था, और एक सहज और सादगी भरे अंदाज़ में उन्होंने लोगों के बीच एक अलग ही आकर्षण पैदा किया था। उनका शांत चेहरा, कैमरे के सामने उनका एक आत्मविश्वास, ये सब उन्हें 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक की यादगार अभिनेत्रियों में जगह दिलवाने में कामयाब रहा। एक कलाकार का सफ़र हमेशा एक जैसा नहीं होता। टीना ने भी एक समय फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। इंटीरियर डिज़ाइनर डिज़ाइन का अध्ययन किया और बाद के वर्षों में उन्होंने कला, संस्कृति, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में सक्रिय भूमिकाएं निभाईं। उनका फिल्मी करियर 1978 से शुरू होकर लगभग एक दशक से अधिक समय तक दर्शकों के सामने रहा। उनकी आखिरी फिल्म का नाम था जिगरवाला, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी, और 1991 के बाद उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। टीना मुनीम ने उद्योगपति अनिल अंबानी से विवाह किया और उसके बाद उनका सार्वजनिक जीवन फिल्मों से हटकर सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों की ओर अधिक केंद्रित हुआ। आज उन्हें टीना अंबानी के नाम से जाना जाता है। कला, संस्कृति, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका का एक अलग ही योगदान है।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
1: सुनिए, सुनिए,
2: कहिए, कहिए ना।

बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशला हेमलता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ केंट से दिग्दर्शन कविता गौर हमें सुन रहे हैं। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश हमारे पास गुरमीत सिंह मीटा जो कि साउथ एक्सटेंशन से हैं, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी का है। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन बीना डब्बू चैतन्य चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता केशो जी हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती जी हमें सुन रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल ईशान और पूजा जी हमारे साथ हैं। बाबू शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबास झारखंड से पोचियाल कला दुर्ग से हमें संजय कुमार साहू और सुजाता जी सुन रहे हैं। अगला संदेश गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर सीता गीता का है। और इसके बाद पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश है जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगरेजा पूनम जी का आया है। पिपरिया से कमलकांत दीपा रिमझिम गुप्ता जी हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से निलमोहन उषा मोहन चिल्लू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हैं। मेहर अरोड़ा ममता जी पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से जुड़े हैं। ग्राम नागरकोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत जी हमारे साथ हैं। फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश जो है ये दिल्ली बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन जी

का द्वारा आया है। नलवेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर, निर्मला जी और विशाल जी हमें सुन रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शहनवास पर सरफराज और परिवार के सभी सदस्य हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन और पहाड़ जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा जी हमारे साथ हैं। ये संदेश संदीप मक्कर जी का जालंधर से हमारे पास पहुंचा है। सुदर्शन मुखी अनीता, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो जी हमारे साथ हैं। अजीत भापसा जी प्रमिला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन कौशला जी के साथ हमें सुन रहे हैं। सोनसिन गिल दलजी जी गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: जी हाँ, आज हमने याद किया उस अभिनेत्री को जिसने 70 और 80 के दशक के हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरत मौजूदगी दर्ज कराई। एक ऐसा नाम जिसे याद करते ही आंखों के सामने आती है 70 के दशक की ताजगी, 80 के दशक की फिल्मी चमक और देव आनंद का अंदाज, ऋषि कपूर का रोमांस, राजेश खन्ना का स्टारडम और हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की वो रंगीन दुनिया। सिनेमा की रील आगे बढ़ती है, किरदार बदलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे हमेशा अपनी जगह बनाते हैं और चीना मुनीम जी उन्हीं चेहरों में से एक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम को ज़रूर पसंद आया होगा। आपको कहीं जाना नहीं है, 3 बजे मैं चीनी मेलोडीज लेकर आपके बीच होंगी, प्रीति त्यागी। फिलहाल इस प्रोग्राम यानी एक कलाकार से मुझे यानी अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। परसों यानी 7 तारीख को एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और वक्त हुआ है आप सभी के एक और पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलेडीज का। तो दोस्तों, मैटिनी मेलेडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी के होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम मैटिनी मेलेडीज यानी कि हमारे वो गोल्डन एरा के सॉन्ग्स हम इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में छिपे हुए हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान हम अपने उस छिपे हुए दरवाजे को खोलते हैं और उसमें से निकलते हैं वो खूबसूरत प्यारे मीठे गीत। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ, बाकी का सफ़र बाद में।

दोस्तों बिल्कुल बाहर आई और हमारे दिल में भी कलियां खिल गईं, क्योंकि जो खूबसूरत से गीत हैं वो हमारे दिल में निकलने शुरू हो गए कि ये गीत भी हमें पसंद है। और जब भी हम गोल्डन इरा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है 50 के दशक का वो दौर, जिस वक्त में ब्लैक एंड वाइट फिल्में हुआ करती थी और उसके जो गीत हैं वो ऐसे हुआ करते थे कि हमारे दिलों को रंगीन कर देते थे, और एकदम से वो इतनी खूबसूरती के साथ शब्दों को बयां करते थे, और हर गीत का, हर शब्द का कुछ ना कुछ मायने होता था। हर शब्द, हर गीत पूरी की पूरी एक कहानी अपने अंदर समेटे होता था। जी हाँ दोस्तों, यही है वो स्वर्णिम काल, यानी कि वो गोल्डन इरा, जब ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर जिंदगी के रंग उकेरे जाते थे, और जो सिनेमा होता था वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता था बल्कि भारत के नए सपने, संघर्ष, हर चीज़ को वो बारीकी के साथ दिखाया करता था। तो चलिए, सफ़र हमारा आगे और भी चलेगा, लेकिन उससे पहले अभी हम सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

हम बात कर रहे हैं गोल्डन एरा की, और अगर 50 के दशक की हम बात करते हैं तो उस टाइम में जो तीन ऐसे बड़े बड़े पिलर थे हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, जिनके भरोसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री टिकी हुई थी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है राज कपूर साहब, दिलीप कुमार और देवानंद। ये वो तीनों पिलर, ये तीनों स्तंभ थे जिनके ऊपर पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई थी। जहाँ एक तरफ राज कपूर साहब थे जिन्होंने आवारा, श्री चासुबीर जैसी फिल्में बनाई, और उसमें चार्ली चैपलिन जैसा जो एक अंदाज, एक तरीका उन्होंने अपनाया, और उन किरदारों में वो समाज की सच्चाइयों को दिखाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ थे हमारे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब, जिनकी देवदास, नया दौर जैसी फिल्मों ने एक्टिंग के नए रूल सेट किए। वहीं तीसरी तरफ अपने खास अंदाज, अपनी खास स्टाइल, अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले देवानंद साहब थे, जो कि बाजी, सीआईडी जैसी फिल्मों से एक नया दौर लेकर आए। और अगर हम उस दौर की बात करें और उनके बारे में जिक्र ना हो, तो वाकई में जो हमारी फिल अगर हमारा हम फिल्मी सफ़र की बात करें तो वो सफ़र अधूरा रहेगा। तो हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं और लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। वैसे

तो अगर आपके पास में भी उस वक्त के कोई गीत, कुछ बातें, कुछ किस्से ऐसे हैं जो कि दिल में कुछ खास स्थान रखते हैं, कुछ खास जगह रखते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और तरीका क्या है वो तो आपको मालूम ही है। आप हम तक भेज सकते हैं अपने संदेश ईमेल के ज़रिए, और हमारी मेल आईडी आपको मालूम ही है। जी हाँ दोस्तों, हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com पर हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतज़ार। लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा।

जी दोस्तों, अभी आपने सुना एक ही रास्ता फिल्म से खूबसूरत सा गीत आशा जी की आवाज़ में, है ना? कितना खूबसूरत गीत। और अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि 1950 के दशक की, तो अगर उस 50 के दशक के हम संगीत को देखें और उस संगीत को देखकर कहें कि भाई ये युग तो वाकई में गोल्डन पीरियड था, तो बिल्कुल भी कहीं भी गलत नहीं है। क्योंकि उस वक्त SD बर्मन साहब, नौशाद, शंकर जयकिशन, OP नैयर, मदन मोहन जैसे इतने टैलेंटेड संगीतकार थे जिन्होंने ऐसी धुनें बनाई जो कि आज इतने साल, इतने दशक बीत जाने के बाद भी उतनी ही ताज़ी लगती हैं जैसे कि बस अभी बनी है। और उनके गीत आज भी, चाहे वो आज का युवा हो चाहे उस वक्त का युवा हो, हर किसी के दिल में एक अलग जगह लेके रखा है ना? तभी तो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, आशा जी, गीता दत्त, तलत महमूद जैसी आवाज़ों ने उस दौर की फिल्मों में जान डाल दी। जी हाँ दोस्तों, ये जो खूबसूरत सफ़र हमारा गोल्डन पीरियड का चल रहा है, उसी में अपने सफ़र को आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म आन से।

तो आन फिल्म से आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना। वैसे आपको मालूम है ये जो गीत है इसको तैयार किया था संगीतकार नौशाद साहब ने। और आन भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके बैकग्राउंड स्कोर और उसके गानों की रिकॉर्डिंग के लिए 35-पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया गया था। और इस गाने के म्यूज़िक अरेंजमेंट में वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात ये कि जो आन फिल्म जिसका गीत अभी आपने सुना वो भारत की पहली टेक्निकलर फिल्मों में से एक थी। और यहाँ तक कि नौशाद साहब ने इस फिल्म के साउंड और गानों को लेकर इतने ज़्यादा वो गंभीर थे कि उन्होंने इस गाने और फिल्म के पूरे म्यूज़िक को लंदन ले जाकर 100-पीस वाले रॉयल फिर हार्मोनिक जो ऑर्केस्ट्रा था उसके साथ प्रोसेस कराया, फिर वहाँ पर मिक्स कराया, जो कि उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने ये जो सुना था, और इसके गीतकार थे शकील बदायूनी जी। और जो इसकी लाइनें हैं कि हम अब आज अपनी मौत का सामान ले चले, ऐसे खूबसूरत बोल दिलीप कुमार साहब के ऊपर उनके एक्टिंग के साथ क्या ही खूब, क्या ही ज़बरदस्त लगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने सफ़र में अगले सफ़र पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये खूबसूरत से संदेश जो कि हम तक भेजे हैं हमारे सभी श्रोताओं ने। और ये संदेश हमारे पास आया, इसको भेजने वाले हैं फारूक अली खान जी। ये हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो सितारा, रेडियो लिसनर क्लब से, और लिखते हैं कि हम अलग अलग जगह पर आपका ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपर कोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश आया है बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशो रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम नागर कोरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत बेबी आराध्या हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर शेख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। और ये एक बार फिर से हम तक संदेश आया तुलसी मस्कीन जी का, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित, केशव रुदान खुराना का हमारे साथ एक बार और संदेश आया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने इस कार्यक्रम के अगले सफ़र पर और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, धुन फिल्म से अभी आपने सुना ये खूबसूरत संगीत लता जी और हेमंत जी की आवाज़ में। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, जिसमें आज 1950 के दशक के उस जादुई दौर की गलियों में हम घूम रहे थे, जहां दिलीप साहब की वो रौबदार अदाकारी थी, रवि साहब के खूबसूरत सुरों का तूफान था, और नौशाद साहब की धुनों की भव्यता, या कहें कि जितने भी हमारे उस वक्त के खूबसूरत संगीतकार थे, गायक थे, उन सब की गायकी, उनके सुरों में हम घूम रहे थे, उन गलियों में घूम रहे थे। और अब ये सफ़र हमारा यहीं पर ख़त्म होगा। आप सभी के जो पसंद के नगमे हैं, वो ज़रूर आप हमारे साथ अगली बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मुझे, यानी प्रीति को, सिनेमा के उस सुनहरे पन्नों से कुछ जो हम आगे आए थे उसको वहीं ख़त्म करने की अनुमति दीजिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, सुनते रहें आप सभी का पसंदीदा शो मैटिनी मेलोडीज़। और मुझे, यानी प्रीति को, दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलेडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 3:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: बाहर निकलने के मौके बहुत
1: बड़े
0: मिले,
1: मौके मिले जी।
0: कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, हांगकांग, चाइना, फिलीपीन, मतलब हर करीब करीब मुल्क में जो है
1: कह सकते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड आप घूमिए। प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, ये खुशबख्ती है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारी गुजारिश पे यहाँ तशरीफ लाए हैं, तबीयत भी खराब है।

0: हूँ कि मेरा ताल्लुक दरअसल मध्य प्रदेश से है।
1: जी
0: भोपाल के नज़दीक एक छोटी जगह है सरौंज नाम की,
1: जी
0: एस
1: बहुत
0: आई
1: मशहूर
0: यू आर।
1: जगह है।
0: अच्छा, वो जो सरौंज है हमारा वतन, वो दरअसल मर्जर से पहले रियासत टोंक का हिस्सा था,
1: जी जी
0: और टोंक राजस्थान में है,
1: जी
0: दोनों में बड़ा फासला था। तो जब दोबारा नए सूबे बने तो टोंक चला गया राजस्थान में, जयपुर के नज़दीक है,
1: जी
0: और
1: जी जी
0: सरौंज
1: जी
0: भोपाल। तो मेरी तालीम का आगाज़ सरौंज में ही हुआ,
1: जी
0: वहाँ मदारिस से तालीम का आगाज़ हुआ करता था। तो मैंने भी सबसे पहले मदारिस में तालीम हासिल की, और उर्दू के अलावा फ़ारसी अरबी की शुद्बत भी वहीं हुई,
1: जी
0: और कई फ़ायदे हुए। क्योंकि उर्दू हमारा मुस्तकबिल में जो मौजू मज़मून था उर्दू ठहरा, तो वो फ़ारसी और अरबी, उसके जो हमारा जो बैकग्राउंड था वो हमारे बड़े काम आया कई अतबार से।
1: जी
0: तो वहाँ तालीम हासिल करने के बाद हायर सेकेंडरी सरोज में किया, और उसके बाद भोपाल हम चले गए। तो भोपाल के दो मशहूर कॉलेज थे, एक तो गवर्नमेंट का हमीदिया कॉलेज, एक सैफिया कॉलेज।
1: जी
0: हमीदिया कॉलेज में भी बड़े बड़े असातिज़ा थे, एक साल मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की, फिर सैफिया कॉलेज आ गया, और अपनी बाकी तालीम बीए और एमए सब, और बीएड भी सब वो सैफिया कॉलेज में मुकम्मल की। और उसके बाद फिर मेरा दिल्ली में, यानी जामिया मिल्लिया के स्कूल में, बल्कि
1: अच्छा,
0: सीनियर
1: स्कूल
0: सेकेंडरी
1: से आपने
0: स्कूल में,
1: शुरुआत था
0: हाँ,
1: वो।
0: बीएड मैंने कर लिया था।
1: जी
0: बीएड का जो डिग्री थी वो काम आई, और
1: जी
0: स्कूल में एज ए पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो अब लेक्चरर कहलाता है,
1: जी
0: उसमें
1: जी जी
0: हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। स्कूल में कुछ अरसा गुजारा, और उसके बाद वहीं रहकर पीएचडी किया। तो जामिया से मैंने सिर्फ पीएचडी किया,
1: अच्छा,
0: बाकी
1: उस वक्त
0: पूरी
1: पीएचडी हुआ करती थी।
0: पीएचडी हो करती थी,
1: जी
0: लेकिन दूसरी और जो एजुकेशन थी हमने भोपाल से हासिल कर ली थी।
1: जी जी
0: तो फिर फ़ौरन ही हम वहाँ आ गए शोबे उर्दू में, फिर हमने वहाँ पर काफ़ी तवील अरसा गुजारा। कुल मैंने 40 साल जामिया मिल्लिया
1: दरसो
0: इस्लामिया
1: तदरीस
0: में
1: का
0: दरसो
1: काम
0: तदरीस
1: अंजाम दिया
0: गुजारे,
1: है, बड़ी
0: और
1: बात है।
0: उसके बाद ये कि वहाँ रहकर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि जामिया आने से, यानी एक तरीके से मुझे बहुत बड़ा वसी मैदान मिला। उर्दू से मेरा ताल्लुक़ तो था ही, लिखता पढ़ता भी रहता था, लेकिन जामिया का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ, सच बात है।
1: जी
0: और उर्दू से मुझे इश्क था, वो भी काम आया। तो
1: हमें जैसा
0: जा
1: मालूम है, आप शोबे
0: हाँ
1: उर्दू के सदर भी रहे, और इसके
0: शो
1: अलावा
0: जी,
1: आपको
0: वाह
1: उर्दू एकेडमी, साहित्य एकेडमी, उर्दू एकेडमी में वाइस चेयरमैन रहे, साहित्य एकेडमी से
0: जी।
1: आपको
0: अब
1: अवार्ड
0: ये
1: मिला
0: सब
1: है,
0: ये कि दिल्ली आने के
1: और
0: बाद
1: कितने ऐसे
0: ये,
1: तालिब इल्म होंगे जिनको आपने पीएचडी
0: अब उसकी
1: कराई होगी,
0: तादाद तो
1: बहुत
0: मैं
1: सारी
0: सब
1: एक
0: हाँ
1: अंदाजे।
0: पीएचडी तक, वैसे तालिब इल्म की तादाद तो
1: जी
0: 40 साल में,
1: 40 साल
0: अगर
1: होंगे,
0: मैं कहूँ कि हजारों में
1: हजारों में
0: हो
1: होंगे।
0: सकती
1: जी
0: है, तो वो भी गलत नहीं
1: जी
0: होगा।
1: जी जी
0: और हमारे पढ़ाए हुए तालिब इल्म बहुत सारे प्रोफेसर बने, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हुए
1: जी
0: सारी दुनिया में। चूँकि हम दुनिया में जब कहीं जाते हैं तो वो जामिया के तालिब इल्म मिलते हैं, और टूट कर मिलते हैं। तो ये जो जामिया से हमने जो कुछ सीखा, जामिया ने हमें जो इज्जत और एहतराम दिया, वो हमें बड़े काम आया। फिर हमने वहाँ पर भी जामिया के सदर शोबे उर्दू के हैसियत से
1: जी
0: उसके लिए भी हमने कुछ काम किए।
1: अपने सामीन को बता दें, आप बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं, साथ में नक़ाद हैं, और अच्छी किताबें हैं आपकी। कितनी किताबों की तादाद होगी
0: मेरी
1: अंदाजन?
0: किताबों तो तकरीबन 25-30 तो
1: पच्चीस
0: है ही।
1: तीस
0: तो
1: किताबें हैं। अच्छा तस्नीम फातिमा साहिबा, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, शादी किस तरीके से हुई आपकी?
2: वो मैं इत्तेफाक ही कह दूं कि
1: जी
2: लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक साहब पीएचडी कर रहे थे एज
1: जी
2: ए टीचर फेलो,
1: जी जी
2: डॉक्टर मुशाहिद हुसैन साहब, और मैं अपने डिपार्टमेंट में कर रही थी।
1: जी
2: मेरी कुछ फ्रेंड्स फिजिक्स
1: ये
2: डिपार्टमेंट में थी,
1: उर्दू और साइंस का जो
2: कुछ
1: मेल
2: भी
1: है।
2: उनका पहला अपॉइंटमेंट जो है वो भोपाल में हो गया,
1: जी
2: वो भी सैफिया कॉलेज में।
1: जी
2: तो वो
1: जी
2: इन लोगों से वाकिफ हो गए
1: खाली साहब से।
2: खाली साहब। इत्तेफाक से जब मैं दिल्ली में आई तो वो भी फिजिक्स डिपार्टमेंट में जामिया में आ गए, तो उन्होंने ही जो है दोनों को मिलवाने का काम कर दिया है,
1: ब्रिज का काम
2: ब्रिज
1: किया
2: का
1: उन्होंने,
2: काम कर दिया।
1: तो फिर शादी हो गई आपकी
2: फिर शादी जो है वो काफी लेट हुई, हमारी शादी 98 में हुई
1: 98,
2: है।
1: और उसके बाद जो खालिद साहब हैं, जाहिर सी बात है आप दोनों मसरूफ तरीन शख्सियात हैं, दोनों को यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारियां हैं, तो कभी कोई किसी किस्म की दिक्कत आई हो जिंदगी को चलाने में आगे? जहां तक मुझे
2: ऐसी
1: मालूम है एक साहबजादी हैं आपकी, उनकी शादी हो चुकी है।
2: इत्तेफाक की बात ये है कि ऐसी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट,
1: जी
2: तो वो दोनों लोग आराम से कर लेते थे और हर काम हो जाते थे।
1: آپ تو چونکہ اردو سے شاید اتنا تعلق نہیں ہے، آپ کی ماضی زبان اردو ہے، جو

0: पर काम किया गया, वो एल्गी लाई गई थी यहाँ पे इंडिया में रिसर्च पर्पज से जर्मनी से, यानी कि लैब टू द फील्ड वर्क का वो प्राइमरी एक्सपेरिमेंट था इंडिया के अंदर। और आजकल हर आपको फार्मेसी पे वो दवा मिल जाएगी स्पायरोलिना के नाम पे।
1: किस मुल्क में आपको तालिबे इल्मों के साथ ज़्यादा अच्छा लगा? इंडिया तो हमारा अपना कंट्री है, यहाँ अच्छे तालिबे इल्म हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तकरीबन कई बरसों से नंबर एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जैसा हम पढ़ते रहते हैं अखबार में।
0: स्टूडेंट्स के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो नहीं रहता, क्योंकि हम लोग रिसर्च फील्ड के लैब के, तो सिर्फ लैब के जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे ही मेरा ताल्लुक रहता है। तो उसमें मुझे एक साल मैं अमेरिका में रही, वहाँ का वर्क कल्चर एनवायरनमेंट वो सब बहुत अच्छा लगा। जैसे ही आप गए, उन्होंने आपको एक दिन दो दिन के बाद पूरे यूनिवर्सिटी के बारे में एक लेक्चर दिया, मतलब इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है। फिर एक दिन ये लेक्चर हुआ कि रेडियो एक्टिविटी जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रही हैं वो केमिकल्स या हैजार्ड हैं, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, और यहाँ तक रेडियो लेवल जो है मॉनिटर का जो स्केल होता है 1 मीटर, मुझे भी लगा दिया गया कि आपका हर 2 महीने के बाद में वो देखा जाएगा कि एक सर्टेन लेवल से जो अमाउंट रेडियो लेबिलिटी का वो ना निकलने पाए।
1: प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, जैसा सामीन को बताया कि आप बहुत अच्छे जहाँ उस्ताद रहे हैं, आज भी हमें गाइड करते रहते हैं, अपने तालिबे इल्मों को हमें भी करते रहते हैं, बेहतरीन शायर भी हैं और नक्काद तो हैं जैसे मैंने बताया, तो मैं ये चाहूँगा कि खालिद महमूद साहब कुछ अपनी शायरी के बारे में बताएं और कुछ अपने कलाम से भी नवाजें।
2: भाई अब ये बेहतरीन है या नहीं है ये तो फैसला सामीन आप या जिन लोगों ने हम पर लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि लोग अगर हमारे तारीफ में इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं
1: अपने
2: है।
1: कलाम से
2: मैं बहरहाल तो मैं कुछ अशार अपनी एक दो गजलों के पेश कर देता हूँ। एक बहुत सादा सी गजल है लेकिन ज़रा गौर करेंगे तो लुत्फ आएगा इसमें, वो मैं सबसे पहले आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसका मतलब है कि वो कहते हैं ये पानी है,
1: वो कहते हैं ये पानी है,
2: घटा कुछ और कहती है,
1: घटा कुछ और कहती है,
2: वो कहते हैं ये पानी है,
1: घटा
2: कुछ और कहती है, उन्हें खुशबू का धोखा है, हवा कुछ और कहती है।
1: वाह वाह क्या बात है, क्या बात,
2: उन्हें खुशबू का धोखा है,
1: हवा कुछ और कहती
2: है, हवा कुछ और कहती है। वफा के बाब में अहले वफा कुछ और कहते हैं,
1: क्या बात,
2: वफा के बाब में अहले वफा
1: कुछ और कहते
2: कुछ और कहते हैं, वफा से बात कीजिए तो वफा कुछ
1: और कहती है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत ख्याल।
2: वफा के बाब में अहले वफा कुछ और कहते हैं, वफा से बात कीजिए तो
1: वफा
2: कुछ और कहती है, सुना है कि सजा दी है जिन्हें वो सारे मुजरिम थे,
1: वाह,
2: सुना है कि सजा दी है जिन्हें वो सारे मुजरिम थे, सजा से हमने जब पूछा सजा कुछ और कहती है,
1: वाह वाह वाह क्या बात है,
2: सजा से हमने जब पूछा
1: सजा
2: कुछ और कहती है, तुम्हारे पास दोनों एक हैं तुमसे अलग होकर,
1: वाह,
2: तुम्हारे पास दोनों एक हैं तुमसे अलग होकर, वफा कुछ और कहती है, जफा कुछ और कहती है,
1: क्या बात है,
2: तुम्हारे पास दोनों एक हैं तुमसे अलग होकर,
1: वफा
2: कुछ और कहती है,
1: जफा
2: कुछ और कहती है, अगर सुर्खी इन आँखों की हिना का अक्स ठहरी है,
1: वाह,
2: अगर सुर्खी इन आँखों की हिना का अक्स ठहरी है, हिना फिर झूठ क्यों बोली, हिना कुछ और कहती है, अगर सुर्खी इन आँखों की हिना का अक्स ठहरी है, हिना फिर झूठ क्यों बोली, हिना कुछ और कहती है, हिना फिर झूठ क्यों बोली, हिना कुछ और कहती है। और उसके बाद उन्होंने देश में आकर फजाओं को झुलस डाला,
1: वाह,
2: उन्होंने देश में आकर
1: फजाओं
2: को झुलस डाला, किसी ने कह दिया जाकर फजा कुछ और कहती है,
1: कहती है।
2: और शेर देखिए कि बतर्जे इनकिसारी जब वो कहते हैं कि खादिम हूँ, बतर्जे इनकिसारी जब वो कहते हैं कि खादिम हूँ, तो एक मखदूम खादिम की अना कुछ और कहती है।
1: तस्नीम साहब आप यहाँ भी दाद दे सकती हैं, घर में तो देखी होंगी।
2: हाँ, मक्ता ये कसम खाकर वो कहते हैं कि बस एक दोस्त है खालिद,
1: क्या बात, क्या खूबसूरत मक्ते का मिसरा,
2: कसम खाकर वो कहते हैं कि बस एक दोस्त है खालिद, خدا سمجھے یا مخلوق خدا کچھ

0: और कहती है क्या बात,
1: वफा वो कहते हैं
0: बहुत ही खूबसूरत मुरस्सा गजल आपने सुनाई। और एक गजल आप, और एक मेरी पसंद के भी एक दो शेर आपको सुनाने होंगे, एक गालिब और एक मीर वाला जो आपका बड़ा खूबसूरत एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है दोनों एक सज्जन।
1: अच्छा पहले मैं गालिबी, हाँ ये
0: जी वो अगर सुना दे,
1: गालिब और मीर की रदी
0: दोनों के बीच बड़ा रहता है कि बड़ा कौन है।
1: असल में गालिब और मीर ने बहुत परेशान किया है शायरों को बहुत ज्यादा,
0: बहुत।
1: अच्छा हम लोग जब जवानी में शेर करते थे तो हर आदमी गालिब और मीर से मुकाबला करता था, आज ये देखिए ये गालिब से बेहतर गालिब से, लेकिन ये जब पढ़ा तो मालूम हुआ कि गालिब और मीर तो सब कुछ कह गए,
0: सब कुछ कह,
1: हम तो कुछ आप जगह ही नहीं है
0: उनकी इत्तेबा कर रहे हैं।
1: उनको गुस्सा आया उनके ऊपर गालिब, मैंने गुस्से में कहा कही थी गजल की, घर में रखे गजलों का फन,
0: घर में रखे
1: अपने घर में रखे बैठ गए, घर में रखे गजलों का फन, एक गालिब एक मीर हर शायर के पक्के दुश्मन,
0: एक गालिब एक मीर बहुत,
1: घर में रखे गजलों का फन, एक गालिब एक मीर हर शायर के पक्के दुश्मन, एक गालिब एक मीर, लहजा वहजा शोखी वोखी सारे उनके खेल,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: लहजा वहजा शोखी वोखी सारे उनके खेल
0: का इस्तेमाल खूबसूरती से,
1: दोनों शातिर दोनों पुरफन,
0: एक गालिब एक मीर, क्या बात,
1: लहजा वहजा शोखी वोखी सारे उनके खेल, दोनों शातिर दोनों पुरफन, एक गालिब एक मीर, आपस ही में बांट के रख ली सारी शेर जमीन,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: आपस ही में बांट के रख ली सारी शेर जमीन, खाली करके फन का दामन, एक गालिब एक मीर,
0: बहुत खूब,
1: आपस ही में बांट के रख ली सारी शेर जमीन। और शेर देखिए कि बाकी हैं दुनिया में जब तक दोनों के दीवान, बाकी है दुनिया में जब तक दोनों के दीवान, हर सच्चे शायर की उलझन,
0: एक गालिब एक मीर, वाह वाह वाह,
1: बाकी है दुनिया में जब तक दोनों के दीवान, हर सच्चे शायर की उलझन,
0: एक गालिब एक मीर।
1: और एक शेर और देखिए कि पीछे पीछे सारे शायर,
0: पीछे पीछे सारे शायर,
1: वो भी कितनी दूर,
0: वो भी कितनी दूर,
1: पीछे पीछे
0: सारे
1: शायर, वो भी कितनी दूर, आगे आगे दो ही सज्जन,
0: एक गालिब एक मीर, सज्जन का बहुत जबरदस्त सवाल,
1: पीछे पीछे सारे शायर
0: जी,
1: वो भी कितनी दूर, आगे आगे दो ही सज्जन,
0: एक गालिब एक मीर।
1: और उसके बाद अभी बक्ता सुन लीजिए
0: जी, इरशाद,
1: उनके आगे कौन जलाए अपना शेर चराग,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: उनके आगे
0: कौन जलाए
1: अपना शेर चराग, खालिद हैं दो सूरज रोशन,
0: एक गालिब, क्या खूबसूरती से आपने तारीफ की है दोनों,
1: हर शायर के पक्के दुश्मन, एक गालिब एक मीर।
0: प्रोफेसर तस्नीम फातिमा साहिबा, इस वक्त आप हमारे साथ हैं और बहुत पॉल्यूशन है और दिल्ली खास तौर से इस मामले में, तो क्या आप कहना चाहेंगी, कैसे इसमें रोकथाम हो सकती है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है?
2: जहाँ तक पॉल्यूशन का सवाल है और हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो हर इंसान को, हर रहने वाले दिल्ली के दिल्लीवासी को खुद स्टेप लेना पड़ेगा,
0: खुद की जिम्मेदारी है,
2: गवर्नमेंट अपनी तरफ है, उसकी जिम्मेदारियाँ थोड़ी हैं, लेकिन खाली कहने से, प्रोग्राम अनाउंस करने से, पैसा रिलीज करने से नहीं होता, जब तक कि हर इंसान खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं ले लेता है। घर के जितने लोग हैं वो अपने घर की लेवल पे देखें कि किस टाइप का पॉल्यूटेंट वहाँ पे है
0: जी।
2: अगर गार्बेज का सेग्रीगेशन है, उसको अलग अलग करना है और देना है, तो हमको देना पड़ेगा, क्या हम खाद बना सकते हैं उसकी
0: जी।
2: या उसके अंदर हम प्लास्टिक को और मिला के और उसको ऐसा बना दें कि वो गलने ना पाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आपको मिल रही है प्लास्टिक की, पॉल्यूशन की, और हर तरफ आपको हर चीज़ के छोटे छोटे पाउचेस मिल रहे हैं
0: जी।
2: और पाउचेस के ऊपर और अंदर जो प्लास्टिक होती है
0: जी,
2: और जो सिल्वर को टाइप की कोटिंग होती है, वो सब इन्वायरमेंट के लिए बहुत पॉल्यूटिंग एजेंट की तरह काम
0: हर तरह से पाबंदी उस पे होनी चाहिए।
2: आपको याद होगा कि आप लोग जब छोटे रहे हों तो आप लोगों के घरों में तेल के जो 20-20 लीटर के पीपे आते थे
0: जी जी,
2: या कोई भी बोतल जो थी या कोई भी चीज, वो ज्यादा मंगाने में किफायत और सस्ती वाली बात होती थी।
0: पीपा हमारे समझ लें सामीन कनस्तर को कहते हैं, पीपा पुर्तगीज वर्ड है वैसे
1: कनस्तर
0: जी।
2: और ये है कि जैसे چاول ہے تو وہ 20 کلو

0: बोरी आ जाएगी, 50 किलो का बोरा आ जाएगा गेहूं का, लेकिन एक एक किलो की चीजों की वो चीजें नहीं होती थी। तो ये सब चीजें जो है पैकिंग जो होती है प्लास्टिक की, वो कहाँ जा रही है अल्टीमेटली? आपके एनवायरमेंट में जा रही है।
1: जी जी।
0: साथ साथ आजकल जो नया कल्चर डेवलप हुआ है ऑनलाइन फूड सप्लाई, ऑनलाइन एवरीथिंग मटेरियल, तो वो चीजें जो आ रही हैं वो सब हमारे एनवायरमेंट को पल्यूट कर रही
1: पल्यूट कर रही।
0: तो हम ऑनलाइन चीजों को मंगवाना बंद करें और ज्यादा चीजों को इकट्ठा लें और जो वेस्ट मटेरियल है उसको
1: डिस्पोज करें। आपने बहुत अच्छी दो बातें कहीं, दोनों तरीके से सेहत आपकी बेहतर रहेगी। पहली बात तो ये कि उन चीज़ों का पन्नी का इस्तेमाल करना बंद करें, दूसरे आप घर से निकल ही नहीं रहे हैं। आप घर से निकलेंगे 4 कदम 8 कदम चलेंगे भी तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। प्रोफेसर तस्नीम फातिमा साहिबा, ये बताएं कि क्या ऐसी चीज़ है खालिद महमूद साहब की जो आपको बहुत पसंद है?
0: बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है
1: जी,
0: सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि डिटरमिंड हैं और जो वादा करते हैं
1: उसे पूरा,
0: वादा खिलाफी के बहुत अगेंस्ट हैं
1: जी, इसका तजर्बा तो हमें भी है,
0: और पंक्चुअलिटी के बहुत कायल हैं। तो सबसे बड़ी चीजें यही हैं और सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड हो गए, जिंदगी की चीजें चलती
1: कहते हैं अजवाजी जिंदगी में एक पॉइंट जो होता है उसको लेके पूरी जिंदगी गुजार। खालिद साहब आपको क्या पसंद है?
2: मुझे तो पूरी की पूरी तस्नीम फातिमा पसंद है
1: जी,
2: इनकी हर अदा। हालांकि कुछ चीजें ऐसी है जिनसे मैं यानी खफगी होती है ना नकली
1: जी जी
2: करते रहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सादगी पसंद है, लिबास में सादगी, खानों में सादगी, सादगी इनका एक मिजाज है। अच्छा, मेरे अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि एक खास बात यह है जो मुश्तरक भी है, हम लोग दूसरों के लिए दिल खोल कर खर्च करना, कोई फंक्शन हो किसी के घर का खानदान का, तो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कर देते हैं और अपने खुद के लिए कम किया जाता है, जैसे खाना पीना पहनना वगैरह। इनमें ऐसी खूबियाँ हैं, अब क्या बताएं, इतनी लंबी फहरिस्त है
1: लंबी, लेकिन हम अपने सामीन से कहना चाहेंगे, एक हिंदी का लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों हजरात हमारे सामीन के सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप उनके लिए एक तहरीक बन सकते हैं जिनकी जिंदगियों में बेवजह की उलझने पैदा कर रखी हैं। आप चाहें तो इतनी बड़ी पोजिशन पर रह के भी अगर इतनी सादगी से रह सकते हैं तो कोई भी फिर साथ,
2: तो मेरी किताबों में इन्होंने हमेशा मदद की
1: जी,
2: मुझे कोऑपरेट करती है हर मामले में।
1: तो आप दोनों हजरात इसी तरीके से, हमारी दुआ है कि सेहत के साथ आगे ऐसी चलते रहें, जिंदगी को लेके आप यहाँ तशरीफ लाए, हम आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
3: सामीन, अभी आप प्रोफेसर खालिद महमूद और उनकी शरीक हयात प्रोफेसर तस्नीम फातिमा की बातचीत सुन रहे थे। आपसे महव गुफ्तगु थे शुएब रजा खान। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम हम सफ़र। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 4 बजने को हैं आपसे कुछ ही देर में, आप सुन सकेंगे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। वक्त हुआ है 4:05 और वक्त है गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी का। थाना कवि नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है नीलू पुत्री कमलेश। इनकी उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं कमलकांत उपनिरीक्षक थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से। गांव सुराना पुलिस स्टेशन मुरादनगर से मिली सूचना के मुताबिक अगली गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अंकिता पुत्री श्री मुकेश कुमार। इनकी उम्र 14 वर्ष 2 महीने, कद 5 फीट।

दाहिने हाथ की कलाई पर ताज़ा कटे का निशान है। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह, जांचकर्ता थाना मुरादनगर गाजियाबाद से। इनके विषय में कोई भी सूचना अगर आप देते हैं तो 5,000 रुपये की इनाम राशि रखी गई है। आप संपर्क मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9675598780। नंबर एक बार फिर से नोट करें, 9675598780। थाना नंदग्राम गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम हनुफा खातून, पुत्री हजरत अली, निवासी झुग्गी सिक रोड, निकट JBL स्कूल, नंदग्राम गाजियाबाद। इनकी उम्र 18 वर्ष 2 महीने, कद 5 फीट 2 इंच। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक इंद्रेश कुमार, थाना नंदग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से। थाना नंदगांव से ही मिली अगली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम साधना, पत्नी विकास विकास शुक्ला। इनकी उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, बाएं हाथ पर चोट का निशान है। इनके विषय में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना नंदग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति हैं श्रीमती कमलेश राजे, पत्नी श्री अरविंद सिंह। ये सैन्य विहार क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन के पास के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 33 वर्ष, शरीर की बनावट पतली, कद 5 फीट 4 इंच, दाहिने हाथ पर अखिलेश टैटू गुदा हुआ है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक हरिंद्र कुमार, पुलिस स्टेशन क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद से। नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है प्रियंका, पुत्री चंदन। इनकी उम्र 21 वर्ष, कद 4 फीट 9 इंच। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, थाना नंदग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली सूचना के मुताबिक अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम राकेश रानी, पत्नी विनोद कुमार, निवासी रईसपुर, थाना मधुबन बापूधाम। इनकी उम्र 50 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक शिवानी, थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद से। इनके विषय में कोई भी सूचना आप देना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर भी उपलब्ध है। नंबर नोट कर सकते हैं 9389728299 पर। नंबर एक बार फिर से नोट करें 9389728299। थाना कविनगर से मिली अगली सूचना के मुताबिक ये हैं नीलम राठौर, पत्नी तुलसीदास राठौर। इनकी उम्र 37 वर्ष, कद 5 फीट। अपनी बहन के घर जाने का कहकर ये घर से गई थी लेकिन वापस नहीं आई। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उपनिरीक्षक सूरभ सिंह, थाना कवीनगर से। अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:05 हुए हैं, लीजिए सुनते हैं युवाओं का कार्यक्रम युव वाणी।

0: कहते हैं एक अच्छा शिक्षक हाथ पकड़कर हमें मंजिल तक नहीं ले जाता, बल्कि हमें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। वो किताबों का ज्ञान ही नहीं, जिंदगी को समझने की नज़र भी देता है। आज का दिन उन्हीं शिक्षकों के नाम जो हमारी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाने नहीं, हमें गढ़ने आते हैं।
1: वाह, क्या खूब कहा। इन पंक्तियों को सुनने के बाद मेरे मन में भी कुछ पंक्तियाँ आई हैं जो मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगी। जिंदगी की राह में कुछ हाथ हमें थामने के लिए नहीं, हमें खुद चलना सिखाने के लिए बढ़ते हैं। वो शिक्षक ही तो हैं जो हमारे आज को ज्ञान देते हैं और हमारे कल को दिशा। विश्व शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को सादर नमन।
0: वाह, बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर अब वक्त हो चला है आपके फेवरेट यूथ प्रोग्राम युववाणी का, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, आपकी अपनी होस्ट करिश्मा। और आज इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ हैं मान्या।
1: आज का प्रोग्राम बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि हमें सोचना, सवाल करना और अपने सपनों पर भरोसा करना सिखाया। और इसी सोच के साथ आज का हमारा सफर होगा एजुकेशन से हेल्थ तक
0: हेल्थ से यूथ तक,
1: और यूथ से हिस्ट्री तक। आज हम जानेंगे कि युवाओं की हेल्थ के सामने कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और 5 अक्टूबर की हिस्ट्री हमें क्या बताती है।
0: पर इससे पहले अब जरा रुक करते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, जो बिना कुछ कहे भी भावनाओं को पूरी तरह कहानी के रूप में कह जाता है। तो सुनते हैं ये प्यारा गीत, दो नैना और एक कहानी, जिसकी गीतकार हैं आरती मुखर्जी जी, और ये है मासूम फिल्क का गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत, वाकई कुछ धुनें सच में सीधे दिल तक पहुंचती हैं।
1: यू आर राइट। नाउ लेट मी टेल आवर लिसनर्स दैट टुडे इज वर्ल्ड टीचर्स डे, जो हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और ये 1966 से ILO यूनेस्को रिकमेंडेशन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स की याद में मनाया जाता है।
0: और मान्या, इस साल का वर्ल्ड टीचर्स डे इसलिए भी खास है क्योंकि 2026 में उस रिकमेंडेशन के 60 साल पूरे हो रहे हैं।
1: एग्जैक्टली। और इस साल की थीम भी इसी बात पर फोकस करती है, स्टैंडिंग विद टीचर्स, 60 ईयर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रोफेशन, एडवांसिंग इट्स स्टेटस एंड शेपिंग आर फ्यूचर्स।
0: यानी बात सिर्फ टीचर्स को थैंक यू कहने की नहीं, बल्कि यह समझने की भी है कि बदलती दुनिया में टीचर्स को सपोर्ट करना और उनकी भूमिका को मजबूत करना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल करिश्मा। एंड ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ सेलिब्रेटिंग टीचर्स एंड एजुकेशन, वी हैव अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन बिटवीन एक्सपर्ट नक्काशी जैन एंड आर फ्रेंड पार्वती पिल्लई ऑन द टॉपिक हाउ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी आर अफेक्टिंग यंग माइंड्स।
2: हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस एपिसोड ऑफ मन से माइक्रोफोन तक वी हैव विद अस मिस नकाशी जैन, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट, एंड थ्रू हर गाइडेंस विल अंडरस्टैंड हाउ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इज अफेक्टिंग यंग पीपल्स माइंड्स, हैबिट्स, मोटिवेशन एंड वेलबींग। इट इज अ ग्रेट प्लेजर मिस जैन टू हैव यू विद अस टुडे।
3: Thank you. Namaskar to all our listeners. Thank you so much for having me on the show today. It is an absolute privilege to be here, sharing the space with all of you.
2: Great. So now let me just begin with our very first question. From a psychological perspective, what has changed the most in the way Indian youth learn because of EdTech?
3: Have you ever thought about how much our zip codes decide our future? In the traditional setup, getting a world-class education or learning a specialized skill usually depended on where we lived or, how our family could afford it. It was a massive barrier. But today, technology is completely flipping the script. Imagine a student living hundreds of kilometers away from a major city. With just a smartphone now in their hands, they can now learn from the finest teachers in the country. Not only the country, I think from in the globe. Now they can revisit a tough math concept over and over again without the fear of any embarrassment, or they can pick up any new skill or a subject that is

0: What an incredible song.
1: बिल्कुल मान्या, बट यू नो कि जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है हमें पिंक रिबन्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं इसके पीछे की

0: वजह क्या है?
1: हाँ करिश्मा, अक्टूबर दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और 2026 में इसकी थीम है एवरी स्टोरी इज़ यूनिक, एवरी जर्नी मैटर्स, यानी हर व्यक्ति की कहानी अलग है और हर सफ़र मायने रखता है।
0: और यह अवेयरनेस सिर्फ एक बीमारी के बारे में जानकारी देने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य है समय पर पहचान, सही डायग्नोसिस, बेहतर ट्रीटमेंट और हर पेशेंट को सपोर्ट देना।
1: लेकिन करिश्मा, ब्रेस्ट कैंसर को पहचाने कैसे?
0: बिल्कुल सही सवाल। तो श्रोताओं, सबसे पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं। ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब ब्रेस्ट की कुछ एबनॉर्मल सेल्स अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना सकती हैं। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये सेल्स शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकती हैं।
1: और यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, हर ब्रेस्ट कैंसर एक जैसा नहीं होता। इसके अलग-अलग टाइप्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट भी हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है।
0: बिल्कुल मान्या। इसलिए डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स कैंसर के टाइप, स्टेज और दूसरी मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ट्रीटमेंट तय करते हैं। बट इसके सिम्टम्स क्या हैं?
1: अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी काम आ सकती है। ब्रेस्ट में नई गांठ या असामान्य मोटापन, ब्रेस्ट के आकार या शेप में बदलाव, स्किन में डिम्पलिंग या कोई असामान्य बदलाव, इनमें से कुछ भी दिखाई दे तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, लेकिन एक ज़रूरी बात, हर गांठ कैंसर नहीं होती और कभी-कभी ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत में कोई स्पष्ट सिम्टम भी नहीं होता। इसलिए खुद से निष्कर्ष निकालने के बजाय कोई नया या असामान्य बदलाव दिखे तो डॉक्टर से मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना बेहद ज़रूरी है।
1: यानी घबराना नहीं है, लेकिन टालना भी नहीं है। और सबसे ज़रूरी, अवेयरनेस को अपने तक सीमित मत रखिएगा। ये जानकारी अपनी माँ, बहन, दोस्त और परिवार की दूसरी महिलाओं तक भी पहुँचाइए।
0: बिल्कुल दोस्तों, अब हमारी बात जिंदगी और हेल्थ से जुड़ी है, तो क्यों ना कुछ पल उस जिंदगी के नाम जिए जाएं।
1: बिल्कुल, अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें जिंदगी को पूरे दिल से अपनाने का एहसास देता है।
0: सुनते हैं ऐ जिंदगी गले लगा ले, जिसे आवाज दी है सुरेश वाडकर ने और ये गीत है फिल्म सदमा का।

0: वाह, क्या गीत था! सच में, जिंदगी को समझने के साथ साथ उसे गले लगा लेना भी जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है टुडे इन हिस्ट्री। क्योंकि तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, कुछ तारीखें इतिहास के पन्नों पर भी अपनी जगह बना लेती हैं। 5 अक्टूबर, रानी दुर्गावती का जन्म दिवस।
1: बिल्कुल मान्या। 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर में जन्मी रानी दुर्गावती चंदेल वंश से थीं। विवाह के बाद वे गोंडवाना की रानी बनी और 1550 में पति दलपत शाह के निधन के बाद शासन की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली।
0: उन्होंने एक कुशल प्रशासक और साहसी योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1564 में मुगल सेना के आक्रमण के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और युद्ध करते हुए 24 जून 1564 को वीरगति प्राप्त की। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और नेतृत्व से मिसाल है। और शायद यही संदेश आज के युवाओं के लिए भी है। मुश्किल परिस्थितियां आए तो अपने मूल्यों से समझौता नहीं, बल्कि उनका साहस के साथ सामना करना चाहिए। रानी दुर्गावती जी के जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र नमन।
1: नमन। दुर्गा का रूप लिए साहस शौर्य की वह मूरत थी, मुगलों को पराभूत कराती देवी की वह सूरत थी। दुश्मन थर थर कांप गया उसका जब पौरुष जागा था, उसके दृढ़ व तेज के आगे अकबर भी रण से भागा था।
0: सचमुच ये कविता रानी दुर्गावती के शौर्य को क्या खूब दर्शाती है। और अब ऐसा ही एक सदाबहार गीत आपके लिए सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज में, छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से।

0: बेहद खूबसूरत, और शायद इसीलिए कुछ पुराने गीत आज भी उतने ही अपने लगते हैं।
1: और अब एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट का वक्त आ चुका है, जो कि है क्विक बाज।
0: जहां कम समय में मिलेंगी आपको जरूरी और काम की कई बड़ी खबरें।
1: तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम सेगमेंट क्विक बाज की ओर, जहां बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों की जो युवाओं के करियर, एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट्स और कल्चर से जुड़ी हैं। सबसे पहले करियर की खास खबर। दिल्ली विश्वविद्यालय में 7 अक्टूबर को AVASAR 2026 यानी अवसर 2026 प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप फेयर आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नॉर्थ कैंपस के मल्टीपर्पस हॉल गेट नंबर 2 में होगा। इसमें 85 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD स्टूडेंट्स के साथ एलुमनाई, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट वेबसाइट पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपडेटेड CV की 5 से 6 कॉपीज और वैलिड ID प्रूफ साथ लेके जाना होगा।
0: इसी श्रेणी में अब शिक्षा और AI की दुनिया से FICCI हायर एजुकेशन समिट 2026, जो 8 और 9 अक्टूबर

0: भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इसमें हायर एजुकेशन, एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
1: विज्ञान और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए वर्ल्ड स्पेस वीक 2026 4th से 10th अक्टूबर तक मनाया जाने वाला है। इस सप्ताह की थीम है रॉकेट रिवॉल्यूशन। इसका फोकस नए रॉकेट टेक्नोलॉजीज, रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम्स एंड स्पेस तक बढ़ती पहुंच पर है। देश भर में अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हालांकि हर शहर में रजिस्ट्रेशन और टाइमिंग अलग है, इसलिए विद्यार्थी अपने शहर के ऑफिशियल इसरो या वर्ल्ड स्पेस वीक प्रोग्राम की जानकारी देखकर ही रजिस्ट्रेशन करें।
0: बिल्कुल, इसी श्रेणी में अब थिएटर और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति से जुड़ी खबर। 12 से 14 अक्टूबर नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर फेस्टिवल 2026 आयोजित होगा। फेस्टिवल में 9 ब्रिक्स मेंबर और पार्टनर कंट्रीज से 100 से अधिक थिएटर प्रैक्टिशनर्स, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा लेंगे। दर्शकों के लिए परफॉर्मेंसेस के टिकट्स बुक माई शो पर उपलब्ध हैं। अलग अलग प्लेस के समय और वेन्यू अलग हैं, इसलिए टिकट बुक करते समय अपनी पसंद की परफॉर्मेंस का टाइमिंग ज़रूर देख लें। तो ये थी अक्टूबर की कुछ खास खबरें, करियर से एजुकेशन तक, एआई से स्पेस साइंस तक और थिएटर से सोशल अवेयरनेस तक। आप भी इन अवसरों का लाभ उठाइए, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में जाने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, टाइमिंग और एंट्री रिक्वायरमेंट्स ज़रूर वेरीफाई करें। इसी के साथ अब हम चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: दोस्तों, ये गाना तो वाकई में एकदम दिल को छू जाने वाला था। आज हमने हिस्ट्री के बारे में जाना, एजुकेशन और टीचर्स के बारे में जाना, पर अब एक बार फिर आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, उसकी ओर लौट आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क उम्र बढ़ने के साथ बढ़ सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, कुछ जेनेटिक चेंजेस, पहले के कुछ रेडिएशन एक्सपोजर्स और कुछ रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल फैक्टर्स, अल्कोहल जैसे फैक्टर्स भी इसको प्रभावित कर सकते हैं।
1: लेकिन यहाँ WHO की एक महत्वपूर्ण बात है, लगभग 80% से अधिक ब्रेस्ट कैंसर उन महिलाओं में भी होते हैं जिनमें सेक्स और इंक्रीजिंग एज के अलावा कोई स्पेसिफिक नोन रिस्क फैक्टर नहीं होता। इसलिए ये सोचना कि मेरे परिवार में किसी को नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है।
0: और करिश्मा, पूरी तरह हर ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करना संभव नहीं है, लेकिन अपने हेल्थ के लिए हम कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जरूर ले सकते हैं।
1: बिल्कुल मान्या, जैसे हेल्दी वेट मेंटेन करना, नियमित फिजिकल एक्टिविटी करना, टोबैको से दूर रहना, अल्कोहल को अवॉइड करना या लिमिट करना, और बैलेंस्ड डाइट लेना, और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के प्रति जागरूक रहना।
0: और अगर फैमिली हिस्ट्री या कोई दूसरा रिस्क फैक्टर है, तो अपने डॉक्टर से अपने लिए अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग और मेडिकल एडवाइस के बारे में बात करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है मान्या। दोस्तों, बहुत सीरियस हो गए, अब एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं नीरजा मूवी का सॉन्ग जीते हैं चल।

0: रियली व्हाट अ सॉन्ग। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने बात की हेल्थ की, टीचर्स, करंट अफेयर्स, स्किल्स और उन लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को लर्निंग के नाम किया।
1: बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है आज का ये सफर आपको कुछ नई बातें, कुछ नई सोच और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी देकर गया होगा। हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल yuvvanifeedback@gmail.com पर ज़रूर भेज सकते हैं।
0: जी हाँ, आप अपने सुझाव और विचार yuvvanifeedback@gmail.com yuvvanifeedback@gmail.com पर हमसे साझा कर सकते हैं। एंड विद दैट, इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप टुडेज एपिसोड। लेकिन याद रखिए, हर नया दिन अपने साथ एक नई कहानी, एक नई उम्मीद और कुछ नया सीखने का मौका लेकर आता है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप बीइंग योरसेल्फ।
1: तो चलिए, अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, नए जोश और नई कहानियों के साथ।
0: स्टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे पॉजिटिव एंड कीप शाइनिंग।
1: मैं करिश्मा
0: और मैं मान्या, आपसे लेते हैं आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष द्विवेदी।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी युगवाणी।
0: Don't forget, keep reading, keep vibing, and keep shining.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 5 बजने को है, आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास में अवसर तलाश सकती है। इससे पहले भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख अप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए समझौता किया गया। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पहामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।

0: और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत की राजकीय यात्रा पर आए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहमला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है। वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एक तरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को मंजूरी दी है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि कल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। India and Switzerland today signed several agreements to promote cooperation and collaboration in the fields of transportation technologies, mobility systems and infrastructure. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These pacts were inked following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. Later, in a joint press meet, Prime Minister Modi said that India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries.
0: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
3: ब्रीफिंग मीडिया इन न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी

0: लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के बहुत सारे लोकगीत, उपदेश, रागिनी, भजन, ये सभी का संगम लेकर आते हैं
1: जी।
0: लेकिन आज हम कार्यक्रम की जो शुरुआत करेंगे लोकगीत से करेंगे, और उससे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: जी, और सरिता, कहते हैं कि अगर बालम पसंद का हो ना तो उसमें सारे के सारे रंग है ना दिखाई देने लगते हैं,
0: क्या
1: पूरी
0: बात
1: दुनिया
0: है?
1: उसी में समा जाती है।
0: तो मतलब जो लोक गीत आप सुनाने वाले वो भी कुछ ऐसे ही धमाकेदार है
1: जी
0: जिसे सुनकर हमारे जो भाई बहन है वो

0: तो साथियों, मंजू शर्मा का गाया ये लोकगीत अभी आपको बता रहा था कि बलमा बहुत ही प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। और सरिता कहते हैं कि पुरुष या जो बलमा होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अच्छे और
1: अच्छा।
0: एक बहुत अच्छे।
1: अच्छे, बहुत अच्छे। और क्या औरतें कुछ कम होती है
0: नहीं।
1: क्या? और अगर हम बात करें नोक झोंक की, तो भाई यही तो हमारे लोकगीत में शुरू से ही सुनाई देती है, और इसकी ना अपनी ही मिठास होती है। अभी देखो ना, कभी सास, कभी ननद की तकरार, कभी अपने बलम से तकरार, इन सब का एक अपना ही आनंद है।
0: जी, कहते हैं ना, एक घर में इतने सारे जो बासन होते हैं, यानी बर्तन होते हैं, जब उन्हें इधर उधर करते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा बहुत टकराते हैं, उस आवाज़ को है ना संगीत बना लेना चाहिए। तो यही बता रही हैं रचना शर्मा।

0: जी हाँ, अगर बात नहीं मानेंगे तो अदालत में दावा हो सकता है।
1: जी हाँ, यही तो है एक औरत की खूबसूरती, ताकत, जो प्यार में कह रही है कि भाई अदालत में दावा करूंगी।
0: जी
1: तो भाई जो अगला हम लोग गीत लेने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा
0: बिल्कुल
1: ही है, वो भी
0: डिमांड है थोड़ी सी, मतलब मांग की जा रही है। अगर मान जाऊंगी, अगर आप मुझे कंगन शंगन दिलवा दोगे तो फिर इतना गुस्सा इतनी नाराजगी
1: भाई
0: नहीं
1: यहाँ तो
0: होगी।
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि इस गीत में इतना ग्रामीण नारी के श्रृंगार और उसके मन की जो उमंग है ना, वो दिखाई देती है। जैसा कि उसकी जो मांग है भाई, वो तो बनता ही है एक
0: जी
1: महिला के लिए कि वो अपनी मांग को अपने पति के सामने जरूर रखे।
0: जी
1: तो क्या कह रही है?
0: बबीता चौधरी, तो सुनवाते हैं साथियों आपको ये प्यारा सा लोकगीत।

0: तो साथियों, बबीता चौधरी भी अपनी भाव बड़े प्यारे तरीके से रख रही थीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सरिता जी कि उनका जादू चल जाता है।
1: नहीं बिल्कुल, बबीता ने जैसे अपनी शिकायत की कि भाई मेरे हाथों के कंगन ढीले पड़ गए। हाँ तो भाई इंतज़ार में कई बार ऐसा होता है, और आपने जैसे बोला कुछ लोगों का जो असर होता है ऐसा लगता है कि जादू टोना चल गया, तो भाई ऐसा ही कुछ हमारे कार्यक्रम के अंत में ये जो लोकगीत है इसे पूजा शर्मा और
0: अनुराधा शर्मा सुना रही हैं, बता रही हैं कि जादू कैसे होता है, कैसे चलता है।
1: तो आइए लेते हैं आनंद इस लोकगीत का।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे पूजा शर्मा और अनुराधा शर्मा को जो गा रही थी ये प्यारा सा शाम भजन। और इसी के साथ आज का ये लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को है, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है खेल और खिलाड़ियों से जुड़े इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं सहयोगी चंद्र आलोक।
3: नमस्कार साथियों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एशियाई खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन पर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र मणि राजेश की वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ शास्त्री से बातचीत। इसके अलावा ईरानी कप पे हम बात करेंगे। WTT चाइना स्मैश भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप पर भी हमारी बातचीत रहेगी।
2: जी बिल्कुल आलोक, जापान के आईची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का कल रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों सहित 85 पदक लेकर अपना चौथा स्थान कायम रखा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जैसा आपने अभी जिक्र किया, धर्मेंद्र मणि राजेश ने एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर ये खास रिपोर्ट तैयार की है और खास बातचीत की है खेल पत्रकार मोना पार्थ शास्त्री से। तो पेश है ये रिपोर्ट।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: नमस्कार, आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहां से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है।

0: जहां चार साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांगझू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे, 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दांव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीवी इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया।
0: मोना, 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए। लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10

0: देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये एक हो सकता है।
1: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही, और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
0: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है। तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहां निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
0: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
1: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है, और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
0: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा। लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है, अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
1: तीरंदाजी में मोना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं, और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
0: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
1: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
0: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो

0: सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है।
1: जी, और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
0: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे हैं, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा। 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए, और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
1: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
0: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
1: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है?
0: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
1: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है। खास तौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की 2 टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहां सीरीज जीत रहे हैं, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं, और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी, और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
1: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
0: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार 1 ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है, और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहाँ निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक भारत की झोली में डाले, और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो 1 गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें, वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी 2 प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर, लगातार जिनका दबदबा रहा है, वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में। तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए, लेकिन रिले टीम की यहाँ तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विथ्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहाँ जरूर निराशा रहे कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
1: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
0: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली, तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी, और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन।

0: रहा टीम का भी, जिसमें
1: जी
0: अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी, कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ से देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था, और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
1: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आए, लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
0: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनाहत सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती है और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
1: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि इन खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक
1: और
0: प्रदर्शन।
1: एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर हैं, और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने, जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है जो स्पेक्ट्रम है, वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदकों पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे, लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: मोना स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का यह आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: जी हाँ आलोक, शानदार प्रदर्शन रहा कई खिलाड़ियों का, और उनमें 17 साल की तीरंदाज कुमकुम मोहोद और पहलवान सुजीत कलकल शामिल हैं। और उनके प्रदर्शन का ये इनाम है कि पहले जसपाल राणा पुरस्कार और राजा रणधीर सिंह पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आईची नगोया एशियाई खेलों में किए गए शानदार प्रदर्शन के आधार पर भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने उनका चयन किया है। IOA ने एशियाई खेलों की सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत की है। कुमकुम ने अपने पहले एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते। उन्होंने पहले महिला रिकर्व तीरंदाजी में दक्षिण कोरिया के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। आलोक, अब क्यों ना चाइना स्मैश टेबल टेनिस की बात करें, तो पेश है चंद्रालोक की ये खास रिपोर्ट।
4: ट टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से प्रेरित होकर के वर्ल्ड टेबल टेनिस ने साल में ग्रैंड स्मैश टूर्नामेंट

0: एक सीरीज शुरू की। इस सीरीज में साल का आखिरी इवेंट चाइना स्मैश अभी बीजिंग चीन के सेयांग पार्क में चल रहा है, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। पुरुष सिंगल्स में मानुष शाह को राउंड ऑफ 64 में क्रोएशिया के तोमिस्लाव पुकार से हार का सामना करना पड़ा। भारत के नंबर वन खिलाड़ी 2-0 से आगे थे। तीसरे गेम में उनके पास मैच खत्म करने का मौका भी था, लेकिन पुकार ने सेट को जीत करके मैच का स्कोर 2-1 कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मैच 5वें सेट तक चला गया, जिसमें दुनिया के 32वें नंबर के खिलाड़ी तोमिस्लाव ने दुनिया के 43वें नंबर के खिलाड़ी मानुष शाह को 3-2 से हरा दिया। स्कोर रहा 11-9, 11-4, 12-14, 10-12, 8-11। वही मानव ठक्कर आज फ्रांस के दुनिया के 30वें नंबर के खिलाड़ी साइमन गोजी के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। महिला सिंगल्स में दुनिया की 53वें नंबर की खिलाड़ी मलिका बत्रा ने शानदार शुरुआत की। राउंड ऑफ 64 के रोमांचक मैच में ब्राजील की दुनिया की 27वें नंबर की खिलाड़ी ब्रूना ताकाहासी को हराया। मनिका बत्रा ने 2 मैच पॉइंट भी बचाए। मैच का नतीजा रहा 8-11, 11-8, 11-9, 5-11, 12-10। इस जीत के साथ मनिका बत्रा ने ब्रूना ताकाहासी के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड 3-2 कर लिया है। इससे पहले ब्रूना ताकाहासी ने 16 अप्रैल को टेबल टेनिस वर्ल्ड कप के एक मैच में मनिका बत्रा को 3-1 से हराया था। श्रीजाकुला अपना पहला राउंड मैच चीनी खिलाड़ी से हार गई। पुरुष डबल्स में मानुष शाह और मानव ठक्कर को राउंड ऑफ 32 में बाय मिला। यह भारतीय जोड़ी अपना अगला मैच चीन और इंग्लैंड के बीच होने वाली जोड़ी के बीच जीतने वाले से खेलेगी। मिक्स डबल्स में एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 5वीं सीट मानुष शाह और दिया चितलिक को पिछले राउंड में बाय मिला था। वो कल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए मिस्र की जोड़ी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखेंगे।
1: बात अब क्रिकेट की करें और चर्चा ईरानी कप की हो तो शेष भारत ने रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू कश्मीर को 167 रन से हराकर 31वीं बार विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 5 सीजन में तीसरी बार चैंपियन बनी है शेष भारत की टीम। जम्मू और कश्मीर की टीम को अपने घरेलू मैदान पर 289 रन का लक्ष्य मिला था। एक समय जम्मू एवं कश्मीर की टीम ने 3 विकेट पर 89 रन बना लिए थे, लेकिन 22 रन के अंतराल में टीम ने 7 और विकेट गंवा दिए और 111 रन पर आउट हो गई। तेज गेंदबाज मुकेश ने जम्मू कश्मीर की दूसरी पारी में 33 रन पर 6 विकेट चटकाए। आकाशदीप ने दोनों पारियों में 3-3 विकेट लिए। जम्मू कश्मीर के लिए शुभम खजूरिया और कामरान इकबाल ही कुछ टिक कर खेल सके। दोनों ओपनरों ने 32-32 रन का योगदान दिया और पहले विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी भी की। शेष भारत ने पहली पारी में 237 रन बनाए थे। जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 278 रन बनाकर 41 रन की बढ़त ली थी। शेष भारत ने दूसरी पारी में 319 रन बनाकर जम्मू कश्मीर को लक्ष्य दिया था 279 का। अगर जम्मू कश्मीर ड्रॉ भी करा लेती तो ट्रॉफी उसके नाम हो जाती। आकाशदीप इंजरी से लौटे हैं, उन्होंने मैच में 6 विकेट लिए। आगामी न्यूजीलैंड दौरे के मद्देनज़र उनका यह प्रदर्शन अहम माना जा रहा है। शेष भारत के रविचंद्रन स्मरण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने पहली पारी में 68 और दूसरी पारी में 135 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। शेष भारत ने 2 साल बाद ईरानी कप जीता है और शेष भारत के कप्तान ऋषभ पंत को जन्मदिन पर टीम का शानदार तोहफा रहा, जिसके लिए उन्होंने टीम को थैंक्स भी कहा। बीसीसीआई की ओर से जारी वीडियो में क्या कहा पंत ने साथियों से, आइए जानते हैं।
2: पिछले 5-7 दिनों में यही बात हो रही थी यार कि लेट्स प्ले फॉर द प्राइड, कुछ भी हो जाए। फर्स्ट इनिंग में स्पेशली उन्होंने अच्छा बैटिंग करा, ठीक है, फर्स्ट इनिंग लीड ली, बट ड्रेसिंग रूम में जो बात हुई कि वो लोग कुछ भी करें, वी नीड टू फोकस ऑन आर सेल्फ, ठीक है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम गेम ऐसा चला कि बहुत बारी उनको फेवर हुआ, वेन एवर दे वॉन्टेड विकेट, वेन एवर दे वॉन्टेड रन, बट वन थिंग फॉर श्योर, टेस्ट ऑफ इंडिया की टीम है, वी डिडंट लेट इट गो, वी जस्ट केप्ट ऑन फाइटिंग विद एवरी इंटेंसिटी वी हैड, वन डे वन ओवर वन बॉल एट अ टाइम, एंड एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओन वे, एंड यू नो फ्रॉम लास्ट 2 years वी आर नॉट विनिंग, बट वी मेड श्योर दैट वेन वी लीव दिस ग्राउंड पुट आर नेम ऑन द ट्रॉफी एज विनर। या
3: One more thing. Happy birthday to you. Happy birthday.
2: Thanks for the gift.
3: Happy birthday.
1: जी हाँ, पंत का जन्मदिन था और टीम ने उनको जीत का एक शानदार तोहफा दिया शेष भारत के कप्तान को। और अब बात विश्व जूडो चैंपियनशिप की करते हैं और चंद्र आलोक की ये खास रिपोर्ट।
0: श्रोताओं, बात करते हैं वर्ल्ड सीरीज।

0: यह जूडो चैंपियनशिप की जो अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रही है, 93 देशों के 622 जुडाकू वर्ल्ड सीनियर जूडो चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। बात करते हैं कल के मुकाबले की, जहां मेंस माइनस 60 केजी वेट क्लास में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन हर्ष सिंह, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 83 है, उन्होंने जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बड़ा उलटभेर करते हुए पुरुषों के माइनस 60 केजी वेट कैटेगरी में शुरुआती राउंड में बेहतर रैंकिंग वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पेड्रो एटून नोटो को, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 40वीं है, वजारी से हराया। हर्ष ने पुरुषों के माइनस 60 केजी वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहतर रैंकिंग वाले रुस्लान पेल्टो तोरे, जो कि एशियन चैंपियन भी है, को वजारी से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में हर्ष का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 5 यानी कि मेजबान देश अहमद यूसुफोव अजरबैजान से था। उनको वहां हार का सामना करना, केवल वो एक कदम दूर थे। अगर वो क्वार्टर फाइनल पहुंचते तो उन्हें जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में रैपचेज खेलने का मौका मिलता। यह श्रोताओं मैं बताना चाहूंगा कि जूडो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जो क्वार्टर फाइनलिस्ट थे उनको रैपचेज खेलने का मौका मिलता है, लिहाजा अगर वो रैपचेज मुकाबले जीतते हैं तो उसके बाद अगर सेमीफाइनलिस्ट जो हारते हैं दो उनके खिलाफ जो है वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलने के एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं महिलाओं के माइनस 48 किलो वेट क्लास में मौजूदा कॉमनवेल्थ चैंपियन अस्मिता डे को क्रोएशिया की गैब्रियल नार्वोज ने राउंड ऑफ 32 हरा दिया। इस प्रकार उनकी चुनौती समाप्त होगी। आज के मुकाबले की बात करते हैं माइनस 52 किलो वेट क्लास में भारत के लोसान गमत नुई सियांग चानू और चोपरे श्रद्धा कुडुबल का मुकाबला स्पेन की लाइबा संचेज और बुल्गारिया की दिमित्री गैब्रियल से था। दोनों ही भारतीय जो जुडाकू थे आज उनको हार का सामना करना पड़ा पहले ही राउंड में। इस प्रकार इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों का जो है चुनौती जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में समाप्त हो गया।
1: जी हाँ, बात करते हैं AFC अंडर 17 महिला एशियन कप के क्वालिफायर्स की, जहाँ भारत ने इराक को 14-0 से हरा दिया है। अनुष्का ने 5 गोल किए। बारिश के कारण ये मैच बीच में रोकना भी पड़ा था, उस समय भारत 9-0 से लीड कर रहा था। भारत को अगले मैच 8 अक्टूबर को सीरिया और 11 अक्टूबर को मलेशिया से खेलने हैं। मुख्य प्रतियोगिता अगले साल चीन में होगी, जबकि क्वालिफायर्स मलेशिया में हो रहे हैं। और बात भारत ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 दूसरे यूथ टेस्ट की, जो कि अहमदाबाद में चल रहा है। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 174 रन बनाए। तन्मय ने 32 रन देकर 6 विकेट लिए। 15 ओवर तक भारत ने 2 विकेट पर 38 रन बना लिए थे।
0: जी अब बात करते हैं बैडमिंटन की, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप चल रही है इस समय, जिसमें जहां से खबर ये आ रही है कि भारत ने अपना पहला मैच जो है अल्जीरिया को 55-16 और 55-8 से जीत लिया है। दूसरा मुकाबला भारत की टीम कल खेलेगी पेरू से, जो मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:30 बजे शुरू होगा।
1: घड़ी की सुइयां हमें ज़्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं, तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा को अपने साथी चंद्र आलोक के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
1: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।

0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया कैम्प के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को स्वीकृति दी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में भी कल तक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साहिरा मुज्तबा। India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility, exchange of young professionals and cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, both nations identified new possibilities for cooperation in military exchanges and defense production. He said they've also agreed to further deepen cooperation in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: सेक्रेटरी वेस्ट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सीबी जॉर्ज एड्रेस्ड मीडिया इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग ऑन बायलैटरल मीटिंग बिटवीन द टू लीडर्स।
3: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. One, the MOU on migration and mobility partnership. Second, agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. Fourth, letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And fifth, implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम
1: राम राम।
0: राम। और सरिता बहन, हम मुझे लग रहा है आप सीधे है ना पैंट से यहीं चली आ रही हो। अरे तुम्हारे हाथ में ये देखो कैसे हैं, हरी हरी सी गोभी है, हरा वाला कद्दू, वो भी खीरे जैसा। ओए होए, और ये टमाटर के बच्चे छोटे छोटे से।
1: अरे नहीं बाबा, तुम जरा ध्यान से देखो है क्या मेरे हाथ में। ये
0: जी
1: देखो, ये है ब्रोकली, और ये जो
0: अच्छा,
1: है जुकिनी, और ये
0: ओ
1: है चेरी टमाटर। और पता है, ये सलाद
0: अच्छा।
1: में इसका स्वाद ही बढ़ जाता है अगर अगर इसको खाते हो तो। और अगर हम बात अपने खेतों की करें ना, तो मैं तो भाई अपने सारे किसान साथियों बहनों को बोलूंगी कि भाई इसकी खेती करो और अच्छा मुनाफा लो।
0: तो ये साथियों आपके लिए जो सरिता बहन बता रही हैं, तो इन नई नई प्यारी प्यारी सी सब्जियों से हम ज़्यादा उत्पादन लेके या कम उत्पादन लेके भी हम अच्छी खासी आय कर सकते हैं। ये बहुत आकर्षित करने वाली हैं और साथ ही पौष्टिक भी होती होंगी।

0: हाँ
1: बिल्कुल। और मैं कहूँगी कि ये जो ब्रोकली, जुकनी, चेरी, टमाटर है ना, ये फसलों को सही तरीके से अगर आप उगाते हो ना, यानी खेती में आप अपनी विविधता ला सकते हो और बाजार में भी आप मुनाफा ले सकते हो।
0: जी
1: तो भाई अगर हम बात इसकी खेती में उगाने की बात करें, तो ये जो सारी फसलें हैं ना, इसकी देखभाल की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है, और इसके लिए स्पेशली मैं अगर चेरी टमाटर की बात करूँ तो भुरभुरी मिट्टी होनी बहुत ज़रूरी है।
0: अच्छा
1: तो अगर ये भुरभुरी मिट्टी पे आप लगाते हैं तो इसकी फसल अच्छी होती है। और हाँ, जुकीनी जो है वो तेज़ जल्दी होने वाली पैदावार है, और आप इसकी जो बेल के लिए एक सपोर्ट की आप डंडिया भी लगा सकती हो। और जो शहरों में रहने वाले जो मेरे भाई बहन है ना, उनसे वो मैं ये कहूँगी कि वो आप गमले में भी इसकी आप खेती कर सकते हैं।
0: जी, तो इतनी आसान भी है और इसके जो तरह तरह की होने की वजह से है ना, इसका मूल्य अच्छा मिलता है और ये पौष्टिकता में तो अच्छी होती ही है और
1: बिल्कुल।
0: ये मतलब जल्दी भी हो जाती है जैसा आप बता रही हो। तो भैया, आम के आम और
1: भाई
0: गुठलियों के दाम वाली कहानी
1: हाँ,
0: थोड़ी थोड़ी सी है इसमें।
1: बस और खेत की तैयारी के समय यही कहूंगी कि आप सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी
0: जी
1: मिलाकर
0: जी
1: के इसकी तैयारी कर सकते हैं। और बीजों से पहले नर्सरी में पौधा आप तैयार कर सकते हैं। जब पौधे मजबूत हो जाए तो आप उन्हें खेत में उचित दूरी पर लगाना शुरू कर सकते हैं। और ब्रोकली के जो पौधे की मैं बात कर रही हूँ, ये नियमित, इसमें नमी की ज़रूरत होती है, लेकिन खेत में पानी जमा भी नहीं होना चाहिए। समय समय
0: अच्छा
1: पर निराई गुड़ाई आपको करते रहना चाहिए ताकि खरपतवार जो है पौधे की वृद्धि में बाधा ना डाले।
0: जी
1: जब पौधे के बीच में हरे रंग का फूल यानी कि मुख्य सिर अच्छी तरह विकसित हो जाए तो उस समय पर काट ले। बहुत देर करने पर जो फूल है ना वो ढीला हो सकता है। और
0: अच्छा
1: फिर मैं बताऊँ आपको वीरेन भाई, कि बाजार में इसका जो मूल्य है ना वो कम हो सकता है। बात अगर जुकीनी की खेती की करें तो जुकीनी तेजी से बढ़ने वाली सब्जी है, और इसके खेत के साथ साथ कई बड़े गमले या आप ग्रो बैग में भी इसको आप उगा सकते हैं जो शहर में रहने वाले हैं।
0: बिल्कुल सरिता बहन, मुझे लगता है कि जो शहरी लोग हैं वो भी टेरेस गार्डन वाला एक कॉन्सेप्ट होता है ना,
1: बिल्कुल
0: उसमें भी इन्हें उगा सकते हैं। ये
1: आसानी
0: ऐसे
1: से।
0: हैं और जो बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो वो अपने
1: अपने
0: ग्रीन
1: खेतों में।
0: हाउसेस लगा सकते हैं, पॉली हाउसेस लगा सकते हैं और उसमें अच्छा खासा उत्पादन भी हो जाता है। और वो जो आप बता रही थी ना, गुणवत्ता वाली चीज़ें होती हैं
1: बिल्कुल
0: उसमें, कीट नियंत्रण भी हो जाता है, सही समय पे खाद वाद मिलती है, तो उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा सा होता है।
1: जी हाँ। तो यही है छोटी छोटी बातें वीरेंद्र की। अगर हमारे जो किसान भाई बहनें छोटी छोटी बातों का ध्यान रहेंगे तो इन सब्जियों का वो पूरा मुनाफा बाजार में ले सकते हैं।
0: जी
1: और ये भी हम बोल दें कि छोटी सी ही बात है कि जैसे अभी हमने बात की कि हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज का हमें चुनाव करना चाहिए। पानी की निकासी को आप अच्छी व्यवस्था रखें। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग बिना जानकारी के अधिक मात्रा में ना करें। मिट्टी की जांच और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार आप पोषक तत्वों का प्रयोग करें। फसल में किसी भी तरह के कीट रोग या असामान्य लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो उसकी समस्या बढ़ने का इंतजार बिल्कुल ना करें। और लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि
0: जरूर
1: फसल लगाने से पहले बाजार की मांग और बिक्री की व्यवस्था के बारे में भी आप जानकारी जरूर ले लें।
0: जी
1: अच्छी फसल के साथ अच्छा बाजार मिलना भी किसान की आय बढ़ाने का बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: जी और जैविक जो कृषि है उसका भी इसमें मॉडल कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपकी ये जो खेती है, अगर जैविक प्रमाणित हो जाए, इसका
1: तो सोने पे
0: सर्टिफिकेशन करा
1: सुहागा।
0: लो, तो इसका मूल्य संवर्धन हो सकता है।
1: तो मतलब है अच्छा बीज, अच्छी मिट्टी, सही सिंचाई, संतुलित पोषण और समय पर फसल प्रबंधन, यही सफल खेती की पहचान है। क्यों वीरेंद्र
0: जी
1: भाई?
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने तो सारी की सारी जो निचोड़ की चीज़ें हैं ना वो बता
1: वो
0: दी,
1: बता
0: आपने
1: दिए।
0: पूरा खेत तैयार कर दिया। अब तो मैं ब्रोकली अपने खेतों में ही उगाऊंगा और अपने श्रोताओं को और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें बताई हैं ना, ये हमारे भोजन की चीज़ें हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा मनोरंजन करवाते हैं अपने श्रोताओं का रविंद्र सिंह खल्लौर की आवाज़ में, और ये भोजन की ही बात बता रहे हैं, सुन लें।

0: हैं, बना के चली जाती हैं और युग युग तक उनकी कृतियाँ, उनके कार्य अमर हो जाते हैं।
1: बहुत सही कहा वीरेंद्र। और आज जो है ना, आज एक खास साहित्यकार जो है उनका आज जन्मतिथि
0: दिवंगत
1: है।
0: दिवस है
1: हाँ,
0: आज
1: तो उनकी
0: उनकी
1: पुण्य
0: जयंती।
1: है, हाँ, तिथि है। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि भाई ये उपन्यासकार जो है, साहित्यकार है, उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। और ये जो भगवती चरण वर्मा की अगर हम बात करें, तो वो एक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन, प्रेम, पाप, पुण्य और समाज की गहरी सच्चाई को शब्द दिए थे।
0: जी
1: और इनका जन्म अगर हम बात करें, तो 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर में हुआ था। वे
0: जी
1: हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और कहानीकार थे। और ये प्रसिद्ध कृति की अगर बात करें, तो चित्रलेखा एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य की परिभाषा को लेकर एक गहरा दार्शनिक प्रश्न उठाने वाला उपन्यास है।
0: जी
1: और आगे अगर हम बात करें, तो ये इसमें जो है ना, चित्रलेखा के माध्यम से वर्मा जी ने ये सोचने पर हम लोगों को मजबूर किया कि कोई भी कर्म अपने आप में पाप या पुण्य होता है, या फिर परिस्थितियां और मनुष्य की भावना ही किसी के कर्म को पाप या पुण्य बनाती है।
0: जी
1: और बहुत
0: एक
1: सारे हैं उनकी रचनाएं, जैसे पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते,
0: हाँ,
1: भूले
0: टेढ़े
1: बिसरे
0: मेढ़े
1: चित्र,
0: रास्ते,
1: सामर्थ्य।
0: टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी उन्होंने सीधा साहित्य का रास्ता बना दिया। और ये जो कृति है ये राजनीतिक उपन्यास मानी जाती है और अपने आप में एक मील का पत्थर है। तो इतनी बड़ी बड़ी कृतियाँ इन्होंने हमें दी हैं, तो भगवती चरण वर्मा की पुण्यतिथि पर हम उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और सरिता बहन, आज एक और बड़ा सा दिन है, पूरे विश्व का
1: जी
0: दिन है
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: शिक्षकों का दिन है, यानी आज है विश्व शिक्षक दिवस।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये आज 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये दिन जो है ना, शिक्षकों के योगदान, उनकी मेहनत और समाज के निर्माण में उनकी जो भूमिका है महत्वपूर्ण, उसको हम सम्मान देने का ये अवसर होता है। क्यों
0: जी
1: वीरेंद्र?
0: बिल्कुल, और शिक्षकों से ही हमारी जो आगे की जनरेशन होती हैं, पीढ़ियां होती हैं, उनको तराशा जाता है, उनको बनाया जाता है ताकि वो देश की बागडोर को संभाल सकें, अपने विकास क्रम को आगे बढ़ा सकें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: शिक्षा
1: कहा।
0: बहुत ज़रूरी है सरिता बहन।
1: बिल्कुल सही कहा। और गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने का सही राह भी दिखाते हैं। और कहते हैं ना कि शिक्षा सिर्फ बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन, मेहनत और अच्छे संस्कार भी विकसित करता है।
0: जी
1: शिक्षा की वही व्यक्ति है जो किसी विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
0: जी
1: और अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, तो शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गाँव के विद्यालयों में शिक्षक जो है, बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक करते हैं।
0: जी एक शिक्षक का जो क्षेत्र है वो बहुत ही वृद्ध है, बहुत फैला हुआ है। और हमारे गांव में भी अगर हम देखें तो हमारे जो शिक्षक हैं वो पूरे गांव का केंद्र बिंदु रहते हैं। कोई भी समस्या आई तो गुरुजी के पास चले गए,
1: हाँ,
0: किसी
1: बिल्कुल
0: का जवाब पढ़वाना है, किसी का जवाब देना है तो गुरुजी के पास चले गए। तो गुरु जो है, टीचर जो है, वो पूरे समाज का एक अभिन्न अंग है।
1: बिल्कुल सही कहा कि एक अच्छा शिक्षक जो है ना, विद्यार्थी के जीवन में दीपक की तरह काम करते हैं। और वो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने जो विद्यार्थी है ना, उसके भविष्य को उज्जवल बनाने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं।
0: जी तो सरिता जी, क्यों ना हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें, शिक्षा का सम्मान करें। और मनसाराम चौहान बहुत पहले ये कह गए हैं, तो सुनवा देते हैं।

साथियों, यूं ही जिंदगी की बागडोर है, वो आगे चलती रहनी चाहिए। रविंदर सिंह खिल्लौर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारी सी प्रस्तुति। और साथियों, हम बात कर रहे हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, और हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी विभूतियां होती हैं जो अपने कार्यों से बहुत कुछ रच के चली जाती

भाई अनपढ़ मानस को दुनिया में ना कोई साथ लगावे। अनपढ़ औरों की विनती कर अपने काम करावे। छोटी छोटी संख्या का भी जोड़ लगाना

के अनपढ़ मानस के जीवन में रहे मुसीबत भारी, ना कोई उससे यारी चाहवे ना कोई रिश्तेदारी। अनपढ़ के संग हेरा फेरी हो जाती गद्दारी, इसलिए तो पढ़ना चाहिए।

आन तान को सदा पढ़ावे। विद्या धन ऐसा धन है जो काम सभी के आवे, ना कोई इसको छीन सके और ना कोई इसे चुनावे। जितना इसको

भाई पढ़े लिखे को बोल चाल का मर्यादा का ध्यान रहे, मान दूसरों को देवे और खुद का भी सम्मान रहे। कब क्या कहना करना चाहिए इसका भी अनुमान रहे, शिक्षित में व्यवहार कुशलता

0: साथियों, अभी आप मनसाराम चौहान की आवाज़ में सुन रहे थे शिक्षा से जुड़ा ये एक बहुत ही प्यारा सा उपदेश। और अब सरिता बहन, जितने भी इस पृथ्वी पे जीव जंतु और पाख परिंदे रहते हैं, सब अपने किसी न किसी तरीके के आवास और पर्यावास में ज़रूर रहते हैं, ताकि वो थोड़ा सुकून महसूस कर सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें, और इंसान भी अपने घर में जाके ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित और आनंदित और मतलब जीवन
1: सुरक्षित,
0: उपयोगी
1: बिल्कुल।
0: महसूस करता
1: और
0: है।
1: बहुत आपने सही कहा। और ऐसे में मैं बता दूं कि भाई आज जो है, मतलब अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है ना, वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: जी, और सरिता बहन, जो इस दिवस को मनाने का औचित्य
1: उद्देश्य।
0: है वो सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे लोग हैं विश्व में, उनके पास एक आवास हो, आश्रय हो, जिसमें वो सुख सुविधाएं जुटाकर अपने जीवन को जी सकें। तो उसी को प्रेरित है ये, और
1: दिवस
0: इसमें बस यही देखा जाता है कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों के पास ये है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और होगा तो कैसे होगा, इसी की व्यवस्था की जाती है।
1: और भाई, और एक है कि अभी हम लोग सेवा संकल्प अभियान भी मना रहे हैं। और ये जो सेवा संकल्प अभियान है, ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशव्यापी जो है ना, सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। और ये पहल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और उनके जन्मतिथि 17 सितंबर जो है, वो सेवा दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई है।
0: जी,
1: तो
0: और
1: जो सेवा की अगर हम बात कर रहे हैं वीरेन, तो सेवा तो किसी भी क्षेत्र में आप लेकर के संकल्प कर सकते हैं। चाहे आप जरूरतमंद या कमजोर वर्ग की सहायता करें, या समाज और सेवा में जन भागीदारी की भावना विकसित करें, या स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण जैसे कार्य में लोगों को आप जोड़ सकते हैं।
0: जी, वोकल फॉर लोकल भी एक बहुत ही प्यारी सी योजना है, जिसमें आप कितना भी अपने आप को फैला सकते हैं, अपने जो व्यापार को बड़ा कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दूर तक भेज सकते हैं, उत्पादों की मूल्यवर्धन कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे होगी आत्मनिर्भरता और कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा।
1: बहुत सही कहा, क्योंकि जब लोकल मजबूत होगा ना, तो तभी देश मजबूत होगा।
0: जी
1: तो वोकल फॉर लोकल, अपने देश की मेहनत को अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएं, यही इसका
0: जी
1: उद्देश्य है।
0: जी तो इसलिए जब हम अच्छे काम करेंगे, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, उत्पाद बिकेगा, तो हमारे पास पैसे भी आएंगे, और पैसे आएंगे तो हमारा जीवन खुशहाल बनेगा। यही बता रहे हैं जयवीर भाटी।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे जयवीर भाटी को, और इसी के साथ आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम अब संपन्न हो रहा है। चलते चलते सभी भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और इस कार्यक्रम के संयोजक शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता
1: तुषार पराशर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 7 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे पामला के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं

0: दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्कॉटहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया गेम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम जी। साथियों, आशा है कि आपके खेत लहलहा रहे होंगे, आपकी बगिया महक रही होंगी और आंगन में चिड़िया चहक रही होंगी।
0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनकी जो खेत हमेशा लहलहाए और वो सुख समृद्धि से भरपूर हो। तो भाई,
1: जी
0: हमारा ये जो कार्यक्रम है वीरेंद्र भाई, इसमें
1: हाँ,
0: बहुत सारी जानकारी लेके आते हैं ताकि जो हमारे ग्रामीण भाई बहन है, जो हमारे किसान भाई बहन है, इसका पूरा फायदा ले सके।
1: जी
0: तो आज जो कार्यक्रम की हम
1: जी
0: शुरुआत करेंगे वो किसी जानकारी के साथ ज़रूर करेंगे।
1: जी बहुत ज़रूरी जानकारी है। और सरिता बहन, ये एल नीनो का जो वर्ष है, इसमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और पूरे विश्व को भी, अभी तक का अगर पूरे वर्ष का लेखा जोखा देखें तो बहुत सारी जगह बहुत सारी आपदाएं आई हैं। उनमें बहुत नुकसान होता है, जनहानि होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ किसानों का होता है। उनकी फसलें, उनका जो आवास और उनके उस पर बहुत सारा कुठाराघात होता है। लेकिन
0: बहुत सही कहा आपने वीरेन भाई, कि जो हमारे किसान भाई बहन है ना, खेत में फसल तैयार करते हैं और अपना ये जो काम है बहुत आसान नहीं है। किसान दिन रात मेहनत करता है, कभी तेज धूप में खेत तैयार करता है तो कभी बारिश में बुआई करता है, कभी फसल में खाद और पानी देता है और कभी कीट पतंगों से फसल को बचाता है। लेकिन कभी सोचा है कि किसान की महीनों की मेहनत खेतों में लहलहा रही है और अचानक बाढ़ आया, सूखा आया, ओलावृष्टि हुई, चक्रवात हुआ, तूफान आया, भारी बारिश या कोई
1: जी
0: भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो किसान के सामने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।
1: जी तो इसी मतलब दृश्य को सोच कर, देख कर, हमारे किसानों के वेलफेयर के लिए, उनकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री

0: फसल बीमा योजना है और इसके तहत आप अपनी फसलों का बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा करा सकते हैं। तो भाई पूरी भरपाई तो नहीं की जा सकती, वो तो किसान की मेहनत की भरपाई कौन करेगा, वो तो ये है कि भाई उनको थोड़ी सी आर्थिक मदद मिल जाएगी और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं और कैसी कैसी सुरक्षाएं मिलती हैं, सरिता बहन अपने किसान बहन भाइयों को बताते हैं। एक होता है कि भाई मौसम ही ख़राब हो गया, बुआई ही नहीं हो पाई, तो वो तो जो फसल है उसके प्रथम चरण में ही सारी जो गड़बड़ हो गई, अब क्या किया जाए। तो इससे भी प्रतिकूल मौसम या सूखे के कारण यदि बुआई नहीं हो पाती है, और बीमित राशि का अधिकतम जो होता है 25% उनको मुआवजा मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि जो किसान जो है उनको बीमा क्यों कराना चाहिए।
0: जी
1: देखो, अगर मौसम ख़राब हो गया तो नुकसान तो होना ही है, तो बीमा कराने से फ़ायदा जो है वो ये होगा कि आप जो आने वाले संभावित जो खतरा है, जो जोखिम है, उससे आप बच जाते हैं। मान लीजिए कि आपने गेहूं, धान, कपास, दलहन या किसी अन्य अधिसूचित फसल की खेती की
0: जी
1: और उस खेती में बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर आपने पैसा भी लगाया और अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई और फसल को नुकसान हो गया, तो ऐसे समय में किसान को केवल फसल का नुकसान नहीं होता बल्कि उसके अगले सीजन की खेती, परिवार के खर्चे और पुरानी कृषि जो कर्ज है उसकी
0: जी
1: अदायगी पर भी असर पड़ जाता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कहा।
1: फसल बीमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आर्थिक सुरक्षा का एक माध्यम बन जाता है और हमारे किसान अगर ये बीमा योजना लेते हैं तो उनको काफी हद तक बहुत अच्छी मदद मिल जाती है।
0: जी सरिता बहन, आप जो बता रही हैं ना उससे मुझे यही पता चला कि किसान के लिए जोखिम हर वक्त रहता है। खेत खेत बोने से पहले खेत बो दिया तब भी, फसल कट गई तब भी, तो इन सब जोखिमों को समुचित रूप से मतलब प्रबंध किया गया है कि भाई नॉमिनल जो प्रीमियम है वो दीजिए और कुछ ना कुछ तो आपके लिए किया ही जाएगा।
1: जी हाँ, और अगर आपने बीमा किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है तो निकटतम किसी भी बैंक में जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और आपकी अगर जो भी बीमित फसल है उसके अंतर्गत जो आपदा से नुकसान हुआ है उसका आपको मुआवजा मिलेगा, और आपको सिर्फ यही है कि नुकसान की सूचना निर्धारित समय सीमा पर देना है और बैंक शाखा या कृषि विभाग या बीमा कंपनी जो भी अधिकृत माध्यम है उनसे आप संपर्क करें और फसल बीमा से संबंधित दस्तावेज और जानकारी जरूर सुरक्षित रखें। नुकसान की स्थिति में खेत और फसल से संबंधित जो आवश्यक जानकारी वो भी आप उपलब्ध कराएं।
0: जी
1: बीमा कंपनी या संबंधित विभाग द्वारा जो बताई गई प्रक्रिया है ना उसका आप पूरा पालन करें। और एक सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि नुकसान की सूचना आप देने में देरी ना करें, तुरंत आप
0: जी
1: जानकारी
0: जी
1: दें।
0: समयबद्ध तरीके से उसको आपको सूचित करना चाहिए उस संस्था को जहाँ से आपने बीमा कराया है। और किसानों को सरिता बहन कितना प्रीमियम देना पड़ता है बता देते हैं आपको। खरीफ फसल के लिए जो कि धान, मक्का आदि होती हैं, इसमें 2% का आपको प्रीमियम देना होता है। रबी फसलों के लिए जो कि गेहूं, सरसों, चना आदि होती हैं, इसमें अधिकतम 1.5% का आपको प्रीमियम देना पड़ता है। और जो बागवानी फसलें हैं या वाणिज्यिक फसलें हैं, इनमें 5% प्रीमियम देना पड़ता है और बाकी का जो प्रीमियम होता है वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वहन करती है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे किसान भाइयों को। भाई मैं तो यही कहूँगी कि मौसम बदले, परिस्थिति बदले, लेकिन किसान की जो तैयारी है ना वो ना बदले। तो
0: जी
1: भाई आप मेहनत आपकी है, सुरक्षा की तैयारी आपकी होनी चाहिए और बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो फसल बीमा के प्रति आप ज़रूर जागरूक बने, अपनी खेती और अपने परिवार के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में आप ज़रूर अपना ये कदम बढ़ाएं।
0: जी और सरिता बहन, जो किसान होता है ना उसमें बल भी होता है, उसमें बुद्धि भी होती है, उसमें क्षमता भी होती है, उसमें धैर्य भी होता है, यही बता रहे हैं श्रीपाल फौजी।

0: जी हाँ साथियों, मान घटाना ठीक नहीं। श्रीपाल फौजी को सुन रहे थे आप, और हमारे किसान बहन भाइयों को हम हमेशा बताते हैं कि ये दुनिया आपकी है, आपसे है, और आप जैसा कर देंगे वैसा सबको मिलेगा। और जो फसलों की बात करें हम सरिता बहन, तो हमारे किसान बहन भाई है ना, अधिकतर जो परंपरागत कृषि प्रक्रियाएं हैं और फसलें हैं उन्हीं को बोते रहते हैं। उनको
1: बिल्कुल
0: और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो बोने से उनका जो लाभ है वो बढ़ सकता है, और वहीं जो उनकी जो भूमि है, कृषि है, खेत हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रह सकता है।
1: तो भाई वीरेंद्र भाई, आज क्यों ना हम अपने भाइयों के साथ विविधीकरण, कृषि विविधि, फसल विविधीकरण के बारे में बात करें।
0: जी
1: और ये जो विविधीकरण की बात हम कर रहे हैं, ये है कि केवल अगर हमारे किसान भाई एक ही फसल पर निर्भर रहते हैं और अलग, तो उसके बजाय अगर वो अलग अलग मौसम, खेत और उपलब्ध जो संसाधन है उसके अनुसार विभिन्न फसलों को अपनाते हैं, तो इससे उनको फायदा भी होता है और फसल भी अच्छी होती है। यानी कि इसे ही हम विविधीकरण कहते हैं।
0: जी
1: अगर देखा जाए कि एक किसान जो है ना हर साल केवल धान की खेती करता है, तो कुछ क्षेत्र में धान के साथ, कुछ टाइम के बाद कुछ क्षेत्र में धान के साथ वो दलहन, तिलहन, मक्का, मोटे अनाज, सब्जी या अन्य कुछ खास फसलें भी वो ले सकता है।
0: जी
1: तो इस तरह से क्या होता है ना फसल चक्र अपनाने से कि आपको बहुत सारी फायदे मिल जाते हैं। और कई बार देखा जाए गया है कि एक ही फसल अगर लगाते हैं तो जो मिट्टी की उर्वरता है ना उसमें कमी आ जाती है।
0: जी तो आपको ये प्रयोग करने चाहिए, प्रयोगों से हमें बचना नहीं चाहिए, जबकि हमें पता है कि हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे उसमें, हम कभी अनुत्तीर्ण नहीं होंगे। किसान जो भी करता है वो अच्छे से ठोक बजा के करता है उस कार्य को, तो इन सब चीज़ों को भी करें। मोटे अनाज आप उगाएं, अब जो अक्टूबर का महीना है ये आपके खेतों की तैयारी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण
1: सही
0: है।
1: में
0: रबी के जो फसलें हैं उनको बोने के लिए खेतों की तैयारी करनी पड़ती है, तो बहुत सारे जो जैसे खेल होते हैं ना, खेल की तैयारी हम खेल वाले दिन ही
1: हाँ
0: नहीं करते, खेल से पहले हम जितनी तैयारी, भाग दौड़ और वर्जिश कर लेंगे उतना ही फिर हमारे जीतने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे खेत है, खेत को पहले अच्छे से तैयार कर लो और फिर उसमें जब बीज बोया जाएगा तो वो फसल अच्छी होगी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम सही से पहले तैयारी अगर हम कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो खेती है वो अच्छी होगी और मौसम के अनुकूल आपका जो उत्पादन है ना वो बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बार देखा गया है मौसम के अनुकूल अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो जो उत्पादन है वो घट भी जाता है।
0: जी
1: और फसल विविधीकरण करने में एक जो महत्वपूर्ण लाभ है वो है कि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। और कुछ फसलों को अधिक पानी की जरूरत तो होती है, लेकिन कुछ फसलें जो है ना अपेक्षाकृत जो है कम पानी में भी आप उगा सकते हो।
0: जी
1: मान लीजिए कि कभी आपको पानी की
0: किल्लत
1: कमी
0: हो
1: है
0: जाती है।
1: तो आप इस तरह की फसल को लेकर उसका भी मुनाफा फायदा ले सकते हैं।
0: जी
1: और कई क्षेत्र में ऐसा वीरेंद्र भाई देखा गया है कि पानी की जो उपलब्धता है वो सीमित है, और वहाँ स्थानीय कृषि विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि आप ऐसे फसलों को अपना

0: लगाएं
1: हाँ
0: जहाँ उस क्षेत्र में उपलब्ध पानी के अनुसार अच्छी आपको मतलब उत्पादन दे सके।
1: जी,
0: तो
1: तो करनी का जो फल है वो तो हमें भोगना ही पड़ता है, और उसका फल भी मिलता है, उसका हमें परिणाम भी मिलता है। तो शीशपाल सिंह भाटी यही बात बता रहे हैं कि करनी का फल पड़े भोगना।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे शीशपाल सिंह भाटी को। और साथियों, हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे परिवेश में बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं कि हम उनको अपना कर कुछ नए रास्ते निकाल सकते हैं।
1: भाई, आपको पता है गरीबों की गरीब गाय किसे कहते हैं?
0: जी हाँ, मेरे पास, मैं गरीब हूँ और मेरे पास एक
1: नहीं,
0: गाय
1: मजाक कर रही हूँ। हाँ, मतलब
0: है।
1: आपके पास कम पैसे हैं तो ऐसे में आप कहाँ से ला सकते हैं ऐसी गाय जो बहुत सस्ती हो?
0: जी वो तो आप ही
1: ये
0: बता
1: तो मैं
0: सकती
1: कहावत है,
0: हैं।
1: बताओ बताओ, कोशिश
0: जी
1: करो।
0: जी कोशिश कर ली मैंने, तो मेरी नज़र तो गाय पे ही जा रही है।
1: अच्छा, तो मैं बताओ भाई, आप बकरी पर भी ध्यान दें, वो भी एक छोटी गाय है जो आपको बहुत
0: अच्छा,
1: अच्छा मुनाफा दे सकती है।
0: सही सही कहा।
1: तो मैं आज बात करूंगी बकरी पालन के लिए कि भाई, बकरी जो पालन है ना, कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं, और जो हमारे ग्रामीण परिवार है ना, ये आय का एक बहुत अच्छा साधन भी बन सकता है।
0: जी जी सही कहा।
1: तो अगर आपके पास कम बजट है और आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो बकरी पालन शुरू कर सकते हैं।
0: जी, लाइव स्टॉक में बहुत सारी अपूर्व संभावनाएं हैं। आप कम बकरियों से भी अपना छोटे से बाड़े में बकरियों का पालन शुरू कर सकते हैं। इसमें जो इसका दूध होता है ना सरिता बहन, वो भी बड़ा उपयोगी होता है और पौष्टिक होता है।
1: बिल्कुल।
0: और एक जगह मैंने देखा कि वो एक बच्चों का अस्पताल था, तो बकरी पालन करने वाले उसमें उन बकरियों का दूध सप्लाई करते हैं, तो उनसे भी उन्हें बहुत अच्छी आय होती है। तो ये भी देखो नज़रिया है हमारा कि
1: हाँ,
0: हम जहाँ चाह वहाँ राह ढूंढ सकते
1: ढूंढ
0: हैं।
1: सकते हैं। तो बात अगर हम बकरी की कर रहे हैं ना, तो अगर आप बकरी लाए, आपने बहुत बोला कि छोटे से बाड़े में आप इनको रख सकते हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान भी रखना है, क्योंकि जब आप बकरी की शेड, आप बकरी को वहाँ बांध रहे हैं, तो साफ़ सुखर हवादार भी रखिए,
0: जी
1: फर्श पर पानी जमा ना होने दें, बारिश के बाद बची हुई नमी को आप तुरंत साफ़ करें, और इनके खाने पीने का भी आप ध्यान रखें, हरा चारा, सूखा चारा, सब ज़रूरत के अनुसार आप दाना दें। और वैसे भी बकरी है, बहुत कम चारे में आप उसका गुजारा कर सकते हैं। मतलब
0: जी
1: वही मैं बता रही हूँ कि कम आमदनी में आप अच्छा मुनाफा बकरी के माध्यम से ले सकते हैं।
0: जी तो आप बकरी पालिए और हम आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको ब्रजेश की आवाज में ये एक प्रस्तुति।
1: उपदेश हम सुनते हैं ब्रजेश से।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ब्रजेश कौर। इसी के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। सभी सुनने वाले हमारे किसान बहन भाई और श्रोताओं को राम राम।
1: कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:35 होने को है, कुछ ही पलों में सुनिए गजल। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आई श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गजल। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

जी हाँ, तन्हाई, तन्हाई से ही हर किसी के दिल में वो उम्मीद आती है कि शायद कल का दिन तन्हा ना गुजरे। तन्हाई में किसी ने बहुत खूब कहा है, यूं तो हम भीड़ में चलते रहते हैं, लेकिन जीवन के हर एक मोड़ पर ये सफ़र तन्हा लगता है।

0: अभी आप सुन रहे थे गजल। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 7:45 होने को है। अब सुनिए समाचार।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: देखा हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर के कामकाज की समीक्षा की, हर महीने विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू। दिल्ली में मतदाताओं के नामांकन के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप जारी। DTC बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने PG संचालन से जुड़े मुद्दों पर संचालकों और प्रबंधकों से चर्चा की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को दी जा रही सेवाओं तथा शिकायतों के निस्तारण की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की।
10: निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने सेंटर पर आने वाले मामलों के रिकॉर्ड और उनके फॉलोअप की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब से राजधानी के सभी सखी वन स्टॉप सेंटरों की विस्तृत रिपोर्ट प्रतिमाह मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाए, जिसमें प्रत्येक मामले की पुलिस सूचना, FIR की स्थिति, आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई और पीड़िता को मिली वास्तविक सहायता का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य हो। श्रीमती गुप्ता ने पॉक्सो मामलों में गोपनीयता के साथ पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया की समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
9: राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐप आधारित और डिजिटल परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
11: आयोग ने कहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं रोजाना ऐप आधारित कैब और अन्य परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन

0: दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। आयोग ने बताया कि दिशा निर्देश महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें 2013 की JS वर्मा समिति की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है। आयोग ने राज्य सरकार, पुलिस और परिवहन सेवाओं से महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: दिल्ली परिवहन निगम DTC बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस कार्ड को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग ने राजधानी के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए 38 DTC पिंक पास वितरण केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। इसके साथ ही कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और अधिक आसान और सुलभ बनाने के लिए राजधानी के कई इलाकों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सभी पात्र महिलाओं को कार्ड बनाने और जारी करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज की छात्राओं से संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए आगे आना चाहिए और विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण कर लोकतांत्रिक संस्था के कामकाज को प्रत्यक्ष रूप से समझने तथा संविधान, विधायी प्रक्रियाओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जाना। दिल्ली सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा का शुभारंभ किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस सुविधा से बोर्ड को अपनी सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान होने वाली आर्थिक परेशानियों से बड़ी राहत मिलेगी।
2: दिल्ली सरकार ने बताया कि इस सुविधा से पहले किसी बीमारी या उपचार की आवश्यकता होने पर पेंशनरों को अस्पताल में इलाज का खर्च पहले अपनी जेब से वहन करना पड़ता था। इसके बाद प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने और लंबी प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता होती थी। इसी प्रक्रिया को और आसान करने की दिशा में यह कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दिल्ली की सेवा में समर्पित किया है।
3: वो हजारों कर्मचारी अधिकारी जो दिल्ली जल बोर्ड में काम करते रहे और उनके जीवन के इस पड़ाव पे जब उन्हें सरकार की सहायता की जरूरत थी, उनके पास अभी तक कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध थी। आज हमारी सरकार ने इसके लिए सभी पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी जो उपलब्ध कराई है, ये बहुत बड़ी सहायता है।
2: ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सहज और सम्मानजनक तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाताओं के नामांकन के लिए फॉर्म 6 के जरिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए इस महीने की 7 और 8 तारीख को राष्ट्रीय राजधानी के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर एक और विशेष शिविर 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए हैं। मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़ा है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि मई 2023 में शुरू हुए संचार साथी पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक बार विजिट किया गया है। मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा बनाया गया ये पोर्टल उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध कॉल या मैसेज रिपोर्ट करने की सुविधा देता है।
4: ये पोर्टल लोगों को ये जानने में भी मदद करता है कि उनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। उपयोगकर्ता इस पोर्टल से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन ब्लॉक भी कर सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि खोए और चोरी हुए 14 लाख से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। नागरिकों की ओर से अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानने से जुड़ी 4 करोड़ से अधिक जानकारियां प्रदान की गई है। मंत्रालय ने कहा कि जो नागरिक धोखा

0: धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ शिकायत करने के लिए संचार साथी का इस्तेमाल करते हैं, वे एक साइबर वॉरियर की तरह काम करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर से 5,000 करोड़ से अधिक की संभावित साइबर धोखाधड़ी को रोका गया है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पीजी मालिकों, संचालकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पीजी संचालन से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं, चुनौतियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस बैठक से पहले उन्होंने पीजी आवासों में रहने वाले विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया था। उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताहों में दिल्ली सरकार विद्यार्थियों आवासों के लिए अंतिम नियामक ढांचा और दिशा निर्देश लागू करेगी, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लाखों विद्यार्थियों के हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
2: बैठक के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है जिसको एक रेगुलेशन बनानी है। दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए पढ़ते समय रहने के लिए पीजी भी एक बड़ा साधन है। वो सेफ हो, रेगुलेटेड हो, सुरक्षित हो और सही दाम पर बच्चों को मिले और जो अप्रिय घटना पिछले दिनों घटी ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रही है और उसी के तहत हमने आज पीजी के ओनर्स के साथ बातचीत की।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने परिसरों की सुरक्षा और विद्यार्थियों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि बैठक में वायु संकल्प, पराली और बायोमास जलाने की रोकथाम, ब्राउन पैच की पहचान तथा ग्रीन दिल्ली ऐप के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज पूट गांव स्थित मैत्रीय मध्यान्ह भोजन रसोई यानी मिड डे मील किचन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने भोजन बनाने के स्थल, कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता मानकों का पालन करने की जांच की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 7 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दुर्गा पूजा आयोजन के लिए गठित विशेष समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री मिश्रा ने पंडालों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने और सभी जिलाधिकारी को इसकी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी आयोजकों को आवश्यक NOC और अनुमतियों की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने को भी कहा। दिल्ली नगर निगम द्वारा गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत शहर के सभी 12 जोनों में 31 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इसके साथ ही 5 संपत्तियों को सील किया गया और लागू भवन मानदंडों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 7 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। आज के प्रवर्तन अभियान के दौरान जनकपुरी, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, सरस्वती विहार, शालीमार बाग, शक्तिनगर, शकरपुर, घरौली एक्सटेंशन, सीलमपुर और संत नगर सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की के ज्योति जोत दिवस पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि गुरु नानक देव जी की वाणी में मानवता का कल्याण, उनकी शिक्षाओं में सेवा का संस्कार और उनके जीवन में सभी की भलाई का शाश्वत संदेश है। राजधानी दिल्ली में आज का दिन के समय तेज धूप

0: रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर के कामकाज की समीक्षा की, हर महीने विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पीजी संचालन से जुड़े मुद्दों पर संचालकों और प्रबंधकों से चर्चा की। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड के 50,000 से अधिक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए आज से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू। डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी और दिल्ली में मतदाताओं के नामांकन के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
2: और हमेशा हमारी फिकर करना।
3: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है,
1: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
2: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
4: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम हमारे अतिथि।
6: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत होती हैं, वो असल में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी कहानी होते हैं अपने आप में। कैसे किस काम की शुरुआत हुई, क्या संघर्ष थे, क्या उपलब्धियां, और आज किस तरह से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं अपना काम करते करते, हम ये सब जानते हैं इस कार्यक्रम में। और अलग अलग क्षेत्र जो हैं उनके बारे में भी समझते हैं किसी एक व्यक्ति के माध्यम से। आज स्टूडियो में जो शख्सियत हैं, जो आपसे मिलने के लिए आए हैं, ये हैं संजीव श्रीवास्तव जी। आप जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, और हाल ही में आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संजीव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
7: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।
6: सबसे पहले आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त होने की, यह सम्मान प्राप्त होने की बहुत बहुत बधाई।
7: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
6: हम सब जानना चाहेंगे, राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा ये सम्मान पाते हुए कैसी अनुभूति थी, कैसा लगा आपको?
7: राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान पाकर के ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में कोई नया चमत्कार हो गया
6: जी।
7: अब तक मैं विज्ञान भवन में दूसरे कलाकारों और लेखकों को देखा करता था, पुरस्कार प्राप्त करते हुए उस वक्त मैं तालियां बजाया करता था, और उस वक्त मेरी आंखों में भी सपने होते थे कि काश कभी मुझे भी यह पुरस्कार मिलेगा क्या। आज जब मुझे यह पुरस्कार मिला तो मैं बहुत ही भावुक हो गया। मैं बताना चाहूँगा नीलम जी कि 18 जुलाई को जैसे ही इस पुरस्कार की घोषणा हुई और मुझे पता चला कि बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दिया जा रहा है, तो घर में बहुत ही भावुक माहौल था। और मैं अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ गले से लिपट करके बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगा
6: जी।
7: और घर में भी सब लोग बिल्कुल ही बहुत ही भावुक हो गए, मुझे यह बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड दिया जा रहा है इस साल
6: जी।
7: सपनों के सच होने जैसा था जब 22 सितंबर को केवड़िया में राष्ट्रपति जी के हाथों यह अवार्ड मिला। इस बीच पुरस्कार की घोषणा होने से लेकर के पुरस्कार मिलने तक जो धड़कन थी, जो बेताबी थी, वो तो बिल्कुल ही अनकही है, उसे शब्दों में बिल्कुल ही व्यक्त नहीं किया जा सकता
6: जी।
7: ये बहुत ही महसूस करने वाली बात है
6: जी।
7: और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस पुरस्कार की बड़ी सफलता है।
6: तो हम ये कामना करते हैं कि स्वर्ण कमल की जो चमक है वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। मैं ये भी जानना चाहूंगी संजीव जी आपसे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद जीवन में क्या बदला?
7: बहुत कुछ बदला है, नजरिया बदला है नीलम जी। बताऊं मैं आपको कि फिल्में देखना और फिल्मों पर लिखना बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया जाता रहा है, और मुझे अपने घर में ही उस नजरिए का शिकार होना पड़ा कई बार
6: जी।
7: जब मैं सुबह सुबह फिल्म देखने चला जाता था तो घर में मुझे ताने सुनने के मिलते थे कि और कोई काम नहीं है क्या,

0: सुबह उठे और फिल्म देखने चले गए, या फिर जो हमारे बहुत सीनियर साथी हैं
1: जी
0: हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, उनका भी एक नज़रिया होता था कि यार इतना सीनियर व्यक्ति है और फिल्मों पर लिखता रहता है, उन्होंने कभी बहुत गंभीरता से इस चीज़ को लिया नहीं।
1: जी
0: लेकिन जब पुरस्कार का ऐलान हुआ तो मुझे अपने घर में ही सबसे पहले छूट मिल गई,
1: जी
0: जाइए अब जितनी फिल्में आपको देखनी है
1: जी
0: देखिए। और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग मुझे अभी तक बहुत इग्नोर कर रहे थे, गंभीरता से नहीं ले रहे थे, ये बहुत ही भावुक पक्ष है, तो
1: जी
0: उन्होंने अब मुझे बहुत अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा काम किए हो, जीवन में एक उपलब्धि हासिल की है, आगे बढ़ो।
1: जी अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत के किस राज्य में आपका जन्म हुआ, बचपन कैसा था?
0: मेरा जन्म बिहार में हुआ है,
1: जी
0: बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल जैसा उपन्यास लिखा, उनके शहर में मेरा जन्म हुआ। पिताजी वहाँ पर सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो
1: जी
0: पिताजी वहाँ पर पोस्टेड थे, पूरी फैमिली वहीं पर रहती थी, मेरा जन्म वहीं हुआ। लेकिन वैसे मेरा जो पैतृक शहर है वह बिहार का सीतामढ़ी ज़िला है। सीतामढ़ी
1: जी
0: नॉर्थ बिहार के बॉर्डर पर है और बहुत ही मशहूर जानकी स्थान मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है,
1: जी
0: जो कि सीता जन्म स्थली के तौर पर वो जगह जानी जाती है। तो वो मेरा पैतृक शहर है, वहाँ का एक गांव है रिखौली, जहाँ मेरा बचपन बीता। पूर्णिया से आने के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि शहर छोड़ करके पूरी फैमिली गांव में शिफ्ट हो गई थी कुछ सालों के लिए, तो गांव में कुछ साल हमारे बीते, और गांव में जो साल बीते वे साल बहुत ही कठिनाइयों भरे थे। गांव में तब बिजली नहीं थी,
1: जी
0: सड़कें बहुत ही कच्ची हुआ करती थी, और वहीं रह करके हमने 12वीं तक पढ़ाई की। पैदल जाता था स्कूल, वो करीब 2.5-3 किलोमीटर भी होता था। पिताजी फिर चूंकि दूसरी जगह पर रहा करते थे, दूसरे शहर में उनकी पोस्टिंग हो गई थी और फैमिली गांव में रहती थी, तो जब पिताजी शहर से जब गांव आते तो पूछते कि कैसे जाते हो कैसे आते हो, तो फिर मैं उनको बताता। बहुत लोग मेरी उम्र में साइकिल चलाते थे स्कूल जाने के लिए, मैं साइकिल भी नहीं चलाता था, तो कठिनाइयों भरे वर्ष रहे वो।
1: जी तो इन संघर्षों के बीच जब आप पढ़ रहे थे, तो उस वक्त क्या सपना था कि बड़े होकर हमें क्या बनना है? कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिससे आप जुड़ना चाहते थे?
0: बिल्कुल, जो सिनेमा में आज जो सम्मान मिला है इसका बीज उन्हीं दिनों पड़ गया था। सच
1: जी
0: बताऊं मैं आपको
1: जी
0: कि उस वक्त रेडियो से गाने बहुत आते थे, रेडियो के कुछ ही चैनल्स होते थे, विविध भारती है या फिर सिलोन है या गुवाहाटी है,
1: जी
0: ऐसे होते थे। पटना आकाशवाणी केंद्र से गाने बजते थे, फिल्मी गाने खूब सुना करता था मैं, नए पुराने गाने सब खूब सुना करता था, और फिल्में देखने का शौक उसी समय से पैदा हो गया था।
1: जी
0: शहर जाकर के फिल्में देखता था, और जब शुक्रवार को नए पोस्टर लगते थे हमारे जो कस्बाई इलाके हैं वहाँ पर कि कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, तो फिल्म तो बाद में देखना है, पोस्टर के सामने खड़ा हो जाता था और पोस्टर पे जो हीरो हीरोइन की तस्वीरें होती थी उनको गौर से देखता था, और ख़ास तौर पर देखता था उसमें कौन कौन सितारे हैं, गीतकार है, संगीतकार है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, सब जो लिखा रहता था पोस्टर पर
1: जी
0: उन सबको देखा करता था, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा अपील करता था उसको देखने के लिए शनिवार को स्कूल से हाफ टाइम के बाद मैं फरार हो जाता था,
1: जी
0: फिर वो देख कर ही आता था। हमारे शहर में एक बड़ी ख़ास बात थी उस दौर में ये कि स्टूडेंट कंसेशन मिला करता था 50%, शनिवार को भी और रविवार को भी।
1: जी
0: तो शनिवार को मॉर्निंग शो में और रविवार को मैटिनी शो, मैटिनी शो कहने का मतलब 2 बजे का शो और मॉर्निंग शो 11 बजे का शो, उसमें 50% का डिस्काउंट मिलता था। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं
1: जी
0: कि मुझे हफ्ते भर जो पॉकेट खर्च मिला करता था उसमें से मैं कुछ पैसे बचा लेता था फिल्म देखने के लिए, लेकिन मैं
1: जी
0: हर हफ्ते फिल्म देखता ही था।
1: आज पता चला कि वो इन्वेस्टमेंट था।
0: इन्वेस्टमेंट था शायद।
1: जी संजीव जी, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम ये सोचते हैं कि अब आत्मनिर्भर हुआ जाए, यानी अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, कमाना शुरू किया जाए। तो जब आप उस पड़ाव पर पहुंचे जीवन के, तब किस तरह के संघर्ष थे? क्या विकल्प सामने थे? कैसा था वो दौर?
0: मेरा जो पहला लक्ष्य था वो प्रोफेसर बनने का था,
1: जी
0: क्योंकि हिंदी साहित्य से मैं एमए कर रहा था, शहर में आकर रहने लगे थे हम सब लोग। मेरी इच्छा थी प्रोफेसर बनने की, क्योंकि मैं
1: जी
0: प्रोफेसरों की दुनिया देखा करता था, वो बड़े आज़ाद ख्याल से रहा करते थे और बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म के होते थे, उनको बहुत सारी जो औपचारिकताएं होती हैं दफ्तर की उनको शायद मानने में शायद छूट मिला करती थी। अब हो
1: जी
0: सकता है बहुत सारे प्रतिबंध लग गए होंगे, लेकिन उस दौर में ऐसा ही कुछ था।

0: तो मुझे वो आज़ादी बहुत पसंद आई थी। लेकिन क्या है कि पत्रकारिता में सबसे पहली एंट्री मुझे मिल गई तो फिर मैं पत्रकारिता में चला गया। उन दिनों प्रोफेसर बनने में बहुत ही वक्त लगता था,
1: जी, यानी कोई प्लानिंग नहीं थी पत्रकार बनने की, लेकिन उस समय ऐसा लगा कि यही बेहतर विकल्प है।
0: यही बेहतर विकल्प है और शायद दूसरा सबसे बेहतर विकल्प लगा था, क्योंकि लिखना पढ़ना शुरू हो चुका था।
1: जी
0: फिल्मों पर भी हमने छोटी छोटी टीका टिप्पणियां उन्हीं दिनों शुरू कर ली थी। ये बात भी बहुत उल्लेखनीय इसी जगह पर हो जाती है कि
1: जी,
0: सड़क फिल्म एक आई थी महेश भट्ट की,
1: संजय दत्त
0: और पूजा भट्ट। उसका एक गाना था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है।
1: जी
0: फिल्म बहुत ही मशहूर थी उस जमाने में और ये गाना भी काफी चर्चित हुआ था। लेकिन इस गाने का जो पिक्चराइजेशन था, उस पिक्चराइजेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उससे प्रभावित होकर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी लिखी और वह टिप्पणी फिल्मों पर लिखी, हमारी समझी समीक्षा कह लिए, टिप्पणी कह लिए, वो पहली टिप्पणी थी
1: जी
0: कि कैसे एक नायक बदनाम बस्ती के कोठे पर रहने वाली लड़की को अपने साथ लेकर जाता है एक दिन के मुचलके पर, और लेकर कहाँ जाता है तो मंदिर। तो ये जो नायक के भीतर एक जो क्रांतिकारी चेतना है, एक पतिता को पतित पावन के द्वार पर ले जाने का जो विजन था डायरेक्टर का, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था
1: जी। और एकदम से विरोधाभास पैदा होता है,
0: एकदम से विरोधाभास, दोनों नंगे पांव मंदिर के सामने खड़े हैं। तो इस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, उस पर मैंने छोटी टिप्पणी लिखी थी, वो मेरे जीवन की सबसे पहली टिप्पणी।

0: माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है, वहाँ के लिए मैंने प्रवेश परीक्षा दी और वहाँ मैं पास कर गया। जबलपुर जाके मैंने परीक्षा दी थी, फिर उसके बाद भोपाल में मुझे हॉस्टल मिल गया, पर फिर मैंने वहाँ रहना शुरू कर दिया और
1: जी
0: एक साल मैंने वहाँ कोर्स किया। उसके बाद भोपाल में दैनिक नई दुनिया से जुड़ा कुछ समय के लिए
1: जी
0: और फिर उसके बाद दिल्ली आ गया।
1: जी आप पत्रकारिता से जुड़े, तो पत्रकारिता जो है वो अपने आप में एक बहुत ही जटिल दुनिया है और ऐसा लगता है कि सीमाएं भी जो हैं वो अनंत हैं और संभावनाएं भी अनंत हैं। यहाँ से संघर्षों की एक अलग दुनिया शुरू होती है, तो वो दौर कैसा था? आप दिल्ली आए, परिवार कहीं और था या साथ में था परिवार, और घर गृहस्थी जो है तब शुरू हुई नहीं हुई?
0: दिल्ली जब आए तो मैं बिल्कुल अकेला था, उस वक्त शादी नहीं हुई थी हमारी।
1: जी
0: मदर फादर अपने शहर में रहते थे, भाई बहन भी वहाँ सब लोग थे। और समझिए कि दिल्ली आकर के उस दौरान नए जीवन की शुरुआत करनी थी। नए जीवन की शुरुआत का मतलब है कि एक रोजगार शुदा जीवन की शुरुआत।
1: जी
0: लेकिन उन दिनों पत्रकारिता की दुनिया में नौकरी मिलना बहुत कठिन था। या तो आप कोई बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए हों, या तो आप संपादक जी के बहुत ही करीबी हों, या तो वहाँ पर कोई बड़ी जगह निकली है तभी ये सिफारिशें भी काम कर रही थी।
1: जी
0: तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान अखबार में काफ़ी समय तक फ्रीलांस किया,
1: जी
0: उन्होंने कई सारे लेख हमारे छापे, ये कुछ साल चला। उसके बाद दिल्ली में कुछ नए नए अखबार शुरू हुए, वहाँ मैंने अप्लाई किया, तो फिर वहाँ से फिर नौकरी का एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन वो छोटा सा अखबार था, फिर वो अखबार बंद हो गया, फिर बेरोजगार हो गया।
1: जी
0: फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई, टेलीविज़न की दुनिया शुरू हुई। फिर उसके बाद मैं टीवी में चला गया साल 2000 से, के बाद से लगातार मैं टीवी में ही रहा। तब से ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से सिलसिला चलता आ रहा है।
1: जी पहले जो है वो शब्दों की दुनिया में थे, उसके बाद आप स्क्रीन की दुनिया से जुड़े, थोड़ा अलग होता है?
0: बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि प्रिंट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो हम वहाँ पर लिखते हैं
1: जी
0: उसके साथ जो विजुअलाइजेशन की जो एक अपेक्षा होती है टेलीविज़न में,
1: जी
0: वहाँ तो वो नहीं होती है।
1: जी
0: तो हम लिख देते हैं, चार पैराग्राफ लिख देते हैं, एक पन्ना लिख देते हैं, अखबार का आधा पेज भर देते हैं दो तीन फोटोग्राफ्स के साथ। लिखने की आज़ादी वहाँ ज़्यादा होती है,
1: जी
0: लेकिन टेलीविज़न में लिखने का कौशल थोड़ा बदल जाता है। हमें कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है क्योंकि उसको सुनाना है हमें,
1: जी वो विजुअल को सपोर्ट करे,
0: विजुअल को सपोर्ट करे, साथ में जो दर्शक देख रहे हैं
1: जी
0: वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत एजुकेटेड ही हो। अखबार तो एजुकेटेड लोग ही पढ़ते हैं
1: जी,
0: पत्रिकाएं भी एजुकेटेड लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन टेलीविजन जरूरी नहीं कि शिक्षित लोग देखे सुने। तो वहां पर ऐसी भाषा लिखनी होती है जो बहुत ही आसान हो, बोलचाल के करीब हो और उस भाषा को सपोर्ट करने वाले विजुअल भी हो, साथ में बाइट्स भी हो, इस सब बहुत अपेक्षित हो जाता है। तो जो एक लेखन कौशल है, लेखन कला है ना, वो अखबार के मुकाबले टेलीविज़न की कुछ ज़्यादा कठिन है, वो एक अलग क्राफ्ट है, उसको सीखने की ज़रूरत पड़ती है।
1: तो लगातार इस तरह की चुनौतियां आती गईं, तो कैसे आप फिल्म समीक्षा से जुड़े, क्या ध्यान रखते थे आप कि आपकी समीक्षा में क्या क्या तत्व होने चाहिए, कैसे वो दूसरे समीक्षक से अलग लगे और किस तरह से वो पाठक के या जो फिल्म प्रेमी हैं, सिने प्रेमी हैं, उनके वो नज़दीक हो?
0: पुस्तक समीक्षाएं मैं उस वक्त बहुत किया करता था
1: जी,
0: तो पुस्तक समीक्षाओं के साथ साथ मैं फिल्मों पर भी टीका टिप्पणियां किया करता था। उस वक्त बहुत सारे फिल्म समीक्षक, दिग्गज फिल्म समीक्षक हुआ करते थे, ब्रजेश्वर मदान, बच्चन श्रीवास्तव, संपत लाल पुरोहित, ऐसे कई सारे हुआ करते थे जिनसे मैं मिलता था और सिनेमा के बारे में जो बातचीत उन सबसे होती थी उनसे बहुत प्रोत्साहन मिलता था कि तुम फिल्मों पर भी इसी तरह की समीक्षाएं लिखा करो जैसे पुस्तक समीक्षाएं लिखते हो।
1: जी
0: हमने वहां से सीखा और शायद मुझे लगता है कि फिल्म समीक्षा में जो हमने थोड़ी गहराई पकड़ने की कोशिश की उसकी वजह यही थी कि इससे पहले हमने रंगमंच की और पुस्तकों की समीक्षाएं की
1: जी।
0: तो एक डेप्थ को ढालने का एक प्रैक्टिस हमें हो गया था पहले से। फिल्म समीक्षा वास्तव में डायरेक्टर के विजन कैसा है, डायरेक्टर ने कहानी के जरिए क्या कहना चाहा है, ये बताना फिल्म समीक्षक का सबसे बड़ा इम्तिहान हो जाता है
1: जी।
0: उसे समझना हमें पड़ेगा फिल्म आखिर कहती क्या है, किस लिए यह फिल्म बनाई गई है। ये जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक हम किसी भी फिल्म के साथ न्याय नहीं कर सकते। खूबियां और खामियां दोनों बताना बहुत जरूरी है, तभी कोई एक फिल्म समीक्षा बिल्कुल मुकम्मल हो पाती है। लेकिन डेस्क पर कई बार ऐसा होता है कि जो उस फिल्म के बारे में कुछ दूसरे आयाम, कुछ दूसरे तथ्य, दूसरी कहानी
1: जी
0: डेस्क के साथ ही लिखते हैं, वो उसके लिए क्या होता है कि चार जगहों से पढ़ते हैं या कुछ क्लिप्स आती हैं, गाने आते हैं, टीजर ट्रेलर आता है और डायरेक्टर का व्यू आ गया, एक्टर का व्यू आ गया, तो उसको पढ़ करके सुन करके रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट अलग चीज है।
1: संजीव जी, इस समय हो सकता है हमारे ऐसे बहुत सारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या किसी ना किसी डेस्क के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। आपके विचार में सीधे किसी एक डेस्क के साथ जुड़ना सही है या हम हर तरह का काम करें, अनुभव लें और उसके बाद ये तय करें कि हम कहाँ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं?
0: देखिए, इसमें एक चीज ये है कि मैं अक्सर ये शिकायत सामने रखता हूँ, अपने दफ्तर में भी रखता हूँ और अपने दफ्तर के अलावा और भी दूसरे दफ्तर में जो बड़े अधिकारी हैं उनके सामने रखता हूँ
1: जी,
0: कि उनके पास जब भी कोई नया ट्रेनी आता है, नया स्टाफ आता है, तो उनसे यह पूछते हैं कि क्या आपको बिजनेस में दिलचस्पी है, पूछ करके वो बिजनेस डेस्क पर लगाते हैं। फिर दूसरे से पूछते हैं क्या आपको स्पोर्ट्स दिलचस्पी है, तो उससे पूछ करके फिर वो स्पोर्ट्स डेस्क पर लगाते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ ऐसा नहीं होता है
1: जी।
0: उनसे सीधे अपेक्षा ये की जाती है कि आप डेस्क पर जाइए, काम करिए और वहाँ आप रिव्यू लिखिए और टीका टिप्पणी करिए, उनसे कभी पूछा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जो भी नए लोग आ रहे हैं मीडिया के फील्ड में, एंटरटेनमेंट को संभालना चाहते हैं, उस पर लिखना चाहते हैं, क्रिटिक बनना चाहते हैं, फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले ये देखना होगा कि सिनेमा को लेकर के उनके भीतर कैसी जिजीविषा है
1: जी,
0: कैसी जिज्ञासा है, कितना डेप्थ है, कितना ज्ञान है इस बारे में और कितनी रुचि है, ये सब कुछ उनको देखना पहले पड़ेगा और उसके बाद ही वो फैसला करे कि उनको इस फील्ड में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अपनी ख्वाहिश और दफ्तर की जरूरत दोनों का तालमेल बिठा पाना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है
1: जी।
0: उस इम्तिहान में जो पास कर गया वो पुरस्कार जरूर पाता है
1: जी। संजीव जी, आपने शुरुआत की थी प्रिंट मीडिया से
0: जी।
1: और अब सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है और पत्रकारिता से भी इसे जोड़ दिया गया है। जिसके भी हाथ में मोबाइल है या जिसका अपना सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है, वो सोचता है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, इसमें जिम्मेदारी जो है वो कहाँ तक जरूरी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में?
0: पहले होता था ना नीलम जी कि हम लोग डायरी मेंटेन करते थे
1: जी,
0: और डायरी बहुत सीक्रेट रखते थे। उस डायरी के पन्ने कोई खोलता नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, यहाँ तक कि धोखे से अगर कोई घर में पन्ना पलट दे तो उस पर नाराज होते थे,
1: झगड़ा हो जाता था,
0: झगड़ा हो जाता
1: जी।
0: था कि हमारी डायरी क्यों पढ़ रहे हैं, हमने अपने मन की बात उसमें लिखी है। लेकिन ये सोशल मीडिया जो आया है ना, एक तो वो डायरी को खत्म कर दिया उसने
1: जी,
0: और वो सोशल मीडिया एक तरह से जगजाहिर डायरी हो गई है। यहाँ लोग अपनी मर्जी की बात कुछ उसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे कभी डायरी में लिखा करते थे, लेकिन अब उनको इस बात का कोई भय नहीं है कि इसको कोई पढ़ेगा तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या टीका टिप्पणी करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को लोकतांत्रिक आज़ादी दी है कि अपनी बात खुलकर रखने का। तो लोग लिख रहे हैं और यहाँ भी लेकिन इम्तिहान है कि कौन कैसा लिख रहा है, कौन किस तरह के विचार व्यक्त कर रहा है, उसके भी उसी तरह के फॉलोअर्स बन रहे हैं, उसको भी उसी तरह से प्रसिद्धि मिल रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं
1: जी,
0: सोशल मीडिया के माध्यम से ही बने हैं। ऐसे लोगों ने बहुत सारे लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो उन्हीं वजहों से बनाई है कि उन्होंने कैसा लिखा है या फिर कैसा अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो वहां पर लोगों की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि सोशल मीडिया पर अपनी भाषा को थोड़ा संयमित रखे। फिल्मों के संदर्भ में आप खासतौर पर देखिए तो फिल्म देखकर आते हैं, चार लाइन तुरंत एक जजमेंट पास कर देते हैं
1: जी,
0: कि मुझे ये फिल्म खराब लगी है, अच्छी लगी है। और तो ऐसे में मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा और जो लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि वैसी टिप्पणियों की चपेट में ना आए और खुद भी फिल्म देखें और तय करें कि यह फिल्म कैसी है। अगर कोई फिल्म बहुत प्रसिद्ध हो जाती है और चल जाती है तो इसका क्रेडिट डायरेक्टर और एक्टर एक्ट्रेसेस खुद ही अपने ऊपर रखते हैं, फिल्म समीक्षक को, फिल्म आलोचक को वो कभी नहीं देते
1: जी। जबकि व्यावहारिक तौर पर होता यही है कि बहुत सारे लोग वो रेटिंग देखकर फिल्म देखने के लिए जाते हैं, वो चुनते हैं, तो फिल्म समीक्षक भी एक भूमिका इसमें निभा रहा है।
0: फिल्म समीक्षकों की एक बड़ी भूमिका है, मैं अक्सर कहता हूँ कि फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल विधा है
1: जी।
0: एजुकेशनल इसलिए कि फिल्म समीक्षा पढ़ने के बाद ही हम कोई फिल्म देखने का विचार बनाते हैं। तो फिल्म में जो खूबियां हैं वो समीक्षक अगर नहीं बताएगा तो दर्शकों को मालूम कैसे होगा
1: जी।
0: तो समीक्षक तो एक जरिया है, समीक्षक को कोर्ट का फैसला नहीं सुनाना चाहिए, समीक्षा लिखनी चाहिए, फैसला न सुनाए, मैं अक्सर कहता हूँ। माधुरी ने समानांतर फिल्म आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया था
1: जी।
0: जो निशांत और ऐसी फिल्में आई थी, अंकुर वगैरह, श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकार सामने आए थे
1: जी।
0: तो माधुरी पत्रिका ने उसको काफी आगे बढ़ाया था। तो समानांतर सिनेमा से जुड़े हुए जितने भी डायरेक्टर्स थे, एक्टर थे, उन्होंने माधुरी पत्रिका को क्रेडिट दिया था कि हमारे आंदोलन को आगे काफी बढ़ाने में मदद की है। लेकिन एक कमर्शियल सिनेमा जो है, वहाँ कोई एक्टर एक्ट्रेसेस या डायरेक्टर इस तरह से आपको क्रेडिट नहीं देते
1: जी। तो चलते चलते ये सवाल आपसे कि आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी, अब आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है तो इसके बाद जिम्मेदारी का एहसास है या ऐसा लगता है कि जो मेहनत की थी बस सफल हो गई, अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है?
0: ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। फिल्मों से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म मैंने भी शुरू किया था और वह प्लेटफॉर्म था पिक्चर प्लस। पिक्चर प्लस नाम से हमने एक फिल्म पत्रिका शुरू की थी और यह पत्रिका कुछ वर्ष चली और यह मासिक पत्रिका थी। हमारी कोशिश थी कि हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए देश भर, हिंदी सिनेमा क्या बल्कि भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए देश भर में जितने भी प्रमुख लेखक हैं उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां वो अपनी बातें खुलकर लिख सकें
1: जी।
0: तो बहुत दिग्गज लेखकों ने उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अरविंद कुमार, शरद दत्त, अजय ब्रह्मात्र, मनमोहन चढ़ा, प्रहलाद अग्रवाल, जबरी मल्ल, पारक, विनोद अनुपम, ऐसे ऐसे दिग्गज हिंदी के या फिर अंग्रेजी के भी लोगों ने लिखा। और पिक्चर प्लस नाम से हमने यूट्यूब भी चलाया और सिनेमा के प्रति जो एक दीवानगी है उसके ये नजीर है। सिने शास्त्री नाम से सिनेमा लेखकों पर एक सीरीज मैंने शुरू की है और फिल्म की एक वेबसाइट भी चलाई। तो आगे का जो प्लान बता रहे हैं ना, ये जो मेरा अधूरा रह गया, ये जो मेरी अधूरी कहानी रह गई फिल्म पत्रकारिता की
1: जी,
0: कि हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म हो फिल्म का, फिल्म न्यूज व्यूज इंटरव्यूज और जो फिल्म पत्रकारिता के लिए एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म हो, जो मैं आम तौर पर बाजार में बिल्कुल सन्नाटा देखता हूँ, किसी के भी पास नहीं है जो फिल्मों पर एक हिंदी में एक मुकम्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म हो
1: जी।
0: तो हमारी ये ख्वाहिश है जो बीच बीच में मैंने रुक रुक कर किया उसको अब इसके आगे मुकम्मल तौर पर करना चाहता हूँ। इसमें हमें कोई खास सहयोगी मिले तो, या फिर मेरे पास संसाधन वैसा हो तो मैं उसको प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करके दिखा दूंगा
1: जी।
0: ये मेरा प्रण है, ये हमारी ख्वाहिश है
1: जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आपका ये अगला पड़ाव भी आप जल्दी इस तक पहुंचे, इसे अचीव करें और उसके बाद अपने लिए फिर एक नया सपना संजोए और आपकी जो अलग अलग उपलब्धियां होंगी उसमें हम इस तरह से शामिल होंगे संजीव जी कि फिर आपको हम कष्ट देंगे, अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और आपकी किसी नई उपलब्धि पर हम फिर से आपसे बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, और तमाम श्रोताओं को भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ सुना। बस ये पुरस्कार मुझे एक गेटवे की तरह लाइफ में आया है
1: जी।
0: देखते हैं हाईवे पर कब जाते हैं
1: जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्द हाईवे तक पहुंचे। तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता विवेक कुमार तोमर के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 8:35 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती।

और वाकई में जब पहली बार ऐसा दिल को महसूस होता है और ऐसा लगता है कि कुछ अलग सा समझ में आ रहा, कुछ अलग सा एहसास है, तब ये लग जाता है कि हाँ ये पहले प्यार का एहसास है। और जब पहला प्यार होता है तो कहीं भी दिल नहीं लगता। ऐसे में मोहब्बत करने वाले ये गीत ज़रूर गुनगुनाते होंगे।

जी हाँ, पहला नशा, पहला अखबार और मोहब्बत। मोहब्बत तो बहुत कम लोगों को ही नसीब में मिलता है, तो जिसकी नसीब में मोहब्बत है वो खुश नसीब है। तो मोहब्बत को संभाल कर रखिए, गीत गुनगुनाते रहिए। फिलहाल आज का ये कार्यक्रम गीत मालिका यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति, लेकिन आखिरी नगमा आपके गुनगुनाने के लिए ये रहा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब सुनिए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
3: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
4: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
3: And Department of Science and Technology, our DST.
1: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति,

0: नीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें क्वार्टाइल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में क्वार्टाइल आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि एआई ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा एआई अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
3: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
4: आज एमओयू में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का एमओयू में शामिल किया है।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को

0: स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
1: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
2: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
4: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
2: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
5: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह,
0: आकाशवाणी समाचार।

0: 122,556. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Switzerland signed 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defense cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says, India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers including US, Russia and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as center and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीयत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसत देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नज़र उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अल-अक़वामी तिजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरबी बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। और जर्मनी और अमरीकी साइंसदानों ने दिमाग की पुरअसरार पेचीदगियों का इंकशाफ करने वाली तकनीक तैयार करने पर अद्वियात के मैदान का नोबेल इनाम जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान आज नई दिल्ली में 5 माहदों पर दस्तखत किए गए। ये माहदे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गी पहमला के दरमियान 2 तरफा मुजाकरात के बाद तय पाए। इन माहदों में माइग्रेशन और मोबिलिटी, शराकतदारी, नौजवान पेशावर अफराद का बाहमी तबादला, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी निज़ाम और मखसूस शोबों में बुनियादी ढांचे के फरोग और ताउन जैसे उमूर शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का अमल कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: वजारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सी बी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा मीटिंग के बारे में आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मफाहमतनामे, समझौते और बाहमी तआवुन से मुतालिक इकरारनामों का भी तबादला किया।
3: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. 1. The MOU on migration and mobility partnership. 2. Agreement on exchange of young professionals. 3. MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. 4. Letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And 5. Implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our DST.
1: पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट।
4: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर के दरमियान वसी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत स्विट्जरलैंड ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लिया और तजारत और सरमायाकारी, इख्तिरा और AI, फौजी तबादले और दिफाई साजो

0: रेल खिदमत पहल के तौर पर नुमाया हुई हैं। फरवरी 2019 में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ने नई दिल्ली वाराणसी रूट से अपने सफ़र की शुरुआत की। गुज़िश्ता साल नवंबर में वाराणसी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए शुरू की गई 4 नई वंदे भारत ट्रेनों के इफ्तिताह के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवेज़ की अगली नस्ल की बुनियाद रख रही हैं।
1: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
0: नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल में फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के खातिर अगले 2 साल के दौरान 4 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इस बारे में मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान आज नाबन्ना में मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इस मनसूबे में हासीमरा और कलाईकुंडा में शहरी इनक्लेव, बालोरघाट हवाई अड्डे की तौसी और पुरोलिया में नए हवाई अड्डे की तामीर शामिल है। जनाब नायडू ने कहा कि कलाईकुंडा में वाक़ 2700 मीटर का रनवे बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे तैयारों की परवास के काबिल होगा। इस दौरान वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने कोलकाता और यूरोपीय शहरों के दरमियान सीधी परवाजों और अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर जैसे मकामात के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का मुतालबा किया। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका फौजी मश्क माउंटेन गार्डियन 2026 आज उत्तराखंड में शुरू हुई। ये फौजी मश्क पहाड़ी इलाकों में जंगी सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी मफाहमत और तालमेल में इजाफा करने के मकसद से की जा रही है। वज़ारत दिफा के मुताबिक दोनों मुल्कों की अफवाज की यकसां तादाद में नुमाइंदगी है और इस मश्क में कुल 92 फौजी अहलकार शिरकत कर रहे हैं। वज़ारत ने मजीद कहा कि मश्क के दौरान फौजी मुश्तरका मनसूबा साजी, फायरिंग प्रैक्टिस, निगरानी के ग्रिड्स कायम करने, ड्रोन कार्रवाइयों, जंगी हिकमत अमली की तरबियती मश्क, जिस्मानी कुव्वत बर्दाश्त की तरबियत, चट्टानों पर चढ़ना, रुकावटों को पार करना और मरबूत फील्ड मश्कें अंजाम दी जाएंगी। ये मश्क 5 से 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत ने 4G के मामले में दुनिया की पैरवी की, 5G में शाना बजाना चला और अब 6G के मामले में वो दुनिया की क्यादत करेगा। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिंपोजियम 2026 से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत टेली मवासलात के आला दरामद करने वाले मुल्क से निकलकर अब बरामदकार बन गया है। भारतीय इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर जनाब राहुल गांधी के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है कि आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR के फॉर्म 6 में गैरकानूनी और यकतरफा तौर पर तब्दीली की है। कमीशन ने वजाहत की कि SIR के लिए फॉर्म 6 के साथ मुंसलिक डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कमीशन ने यह भी कहा कि बिहार में SIR से मुतालिक हुक्म पिछले साल 24 जून को कमीशन के जरिए इत्तेफाक राय से मंजूरी के बाद जारी किया गया था। कमीशन ने इस बात को भी उजागर किया कि इस साल 27 मई के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को बरकरार रखा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के दौरान इंतखाबी कमीशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में कमीशन की जानिब से किसी तब्दीली की मंजूरी नहीं दी गई है। साल 2026 का फिजियोलॉजी या अद्वियात के शोबे के नोबेल इनाम अमरीकी शहरी कार्ल डाइसरोथ और जर्मन शहरियों पीटर हैगमैन और गेओर्ग नागेल को दिया गया। इन अफराद को दिमाग के अंदरूनी कामकाज के तरीक़ेकार का पता लगाने की तकनीक तैयार करने में काबिले ज़िक्र हुसूलियाबियों की बिना पर दिया गया है। ये तरीक़ेकार, जिसे ऑप्टोजेनेटिक्स कहा जाता है, रोशनी पर मबनी स्विच की तरह काम करता है, जिससे साइंसदान ये पता लगा सकते हैं कि दिमाग के कौन से खलियात कौन सा काम करते हैं। स्वीडन में स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली में आज इस बावक़ार इनाम का ऐलान किया गया। अपने बयान में कमेटी ने कहा कि हैगमैन और नागेल की जर्मन जोड़ी ने चैनल रोडोस्पिन नामी प्रोटीन का पता लगाया, जबकि अमरीकी साइंसदान डाइसरोथ ने प्रोटीन को आसाबी खलियात के लिए रोशनी से चलने वाले स्विच में तब्दील किया।

0: और अब खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में तआवुन को तकवीत देने, बुनियादी ढांचे और मोबिलिटी, दिफाई इश्तराक के मैदान में नए इम्कानात की तलाश और न्यूक्लियाई तवानाई में तआवुन को वसअत देने से मुतालिक 5 माहदों पर दस्तखत किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का कसीर जहती वाबस्तगी का नुक्ता नज़र उसे अमरीका, रूस और चीन समेत सभी अहम आलमी ताकतों से मसरूफ़ अमल रहने के काबिल बनाता है। बैन अल-अक़वामी तजारती रास्ते की बाजियाबी के तहत 80 साल के वक्फे के बाद आसाम से पहला कार्गो बहरी जहाज ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए बांग्लादेश पहुंचा। मरकज़ और मगरब बंगाल हुकूमत ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत अगले 2 साल के दौरान इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के मकसद से मगरब बंगाल को 4 नए हवाई अड्डे मिलेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या है वो एक चीज जो हमारे सबसे करीब रहती है? जाहिर है आप कहेंगे हमारा स्मार्टफोन, लेकिन इसके अलावा लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, हमारी जिंदगी इन गैजेट्स के बिना जैसे अधूरी सी हो गई है। साथ ही एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन वगैरह ने हमारी जिंदगी को आसान तो कर दिया है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि जब ये गैजेट्स पुराने हो जाते होंगे, खराब हो जाते हैं, तो आखिर कहाँ जाते हैं? हर साल दुनिया भर में करोड़ों टन ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो रहा है। आज हमारा देश और पूरी दुनिया इस डिजिटल कचरे के पहाड़ के नीचे जैसे दबती सी जा रही है, और रिसाइकलिंग की सही व्यवस्था न होना, जागरूकता की कमी और गैजेट्स को कचरे में फेंक देने की हमारी आदत, इसने एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके लिए खड़ी कर दी है। इस कचरे में मौजूद लेड, मर्करी और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं हमारी हवा, हमारी मिट्टी और पानी को जहरीला बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। अगर हम जागरूक हो जाएं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के मंत्र को अपनाएं और अपने ई कचरे को सिर्फ अधिकृत रिसाइकलर्स को ही सौंपें, तो शायद हम इस बड़े संकट को बहुत हद तक टाल सकते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से समझेंगे कि ई कचरे की ये चुनौती आखिर कितनी गंभीर है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारे पास इसके क्या समाधान है। और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मयंक जी।
1: धन्यवाद।
0: और दोस्तों, हमारा आज का विषय जो हमने पहले ही आपको बताया भी है, वो है डिजिटल युग में ई वेस्ट चुनौतियां, समाधान और आगे की राह। और हम आपको बता दें, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे नंबर हैं 2331071 2371717 और 2371716, और इसके अलावा 2331444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें, यदि आप लैंडलाइन से हम पर संपर्क कर रहे हैं तो। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044। तो इस पर आप लिख करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा का सिलसिला। और मैं देख रहा हूँ कि अभी हमने आपसे बात शुरू ही की कि हमसे जुड़ गए एक श्रोता रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। जी वाजपेयी जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: नमस्कार। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है रिसाइकलिंग कैसे किया जाएगा।

0: जी आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे।
1: मैं ये कहना चाहता था कि इलेक्ट्रिक कचरा जो है, वेस्टेड जो है, इसको रिसाइकलिंग कैसे करेंगे?
0: इलेक्ट्रिक कचरा जो है इसको रिसाइकल कैसे करेंगे, ये इनका प्रश्न है। जी
1: जी।
2: देखिए, आप अगर अपना एसी, फ्रिज, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो वो किस से बना है? वो मेटल से बना है, उसके अंदर चिप्स हैं। तो जैसे मैं अगर आपका फ्रिज देख लूँ तो फ्रिज में लोहा है, एल्युमिनियम है, कंप्रेसर है जिसमें कॉपर है, उसमें जो सर्किट है उसमें गोल्ड और सिल्वर भी है, तो ये सारे मेटल्स हैं। तो रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि क्या हम जो आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको साइंटिफिक तरीके से तोड़ें। उसके बाद अलग अलग किस्म के प्रोसेसेस हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में करते हैं कि मेटल्स जो हैं कुछ मैग्नेटिक होते हैं तो उनको मैग्नेट से अलग करें, कुछ मेटल्स हैं जो कुछ कुछ अलग अलग केमिकल में डिसॉल्व होते हैं हम उससे अलग करें। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट, फॉर्मल रिसाइकलिंग जो प्लांट हैं उसमें ये मेटल्स, जो आपके गैजेट जिस मेटल से बने हैं वही मेटल उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो मेटल्स वापस, वो लोहा, वो पदार्थ वापस जो मैन्युफैक्चरर हैं जो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको दिए जाते हैं। तो आप समझिए, रिसाइकलिंग बहुत टेक्नोलॉजी के साथ है, बहुत बड़े स्केल पे होता है, और आपके सारे जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर नए प्रोडक्ट में डाले जाते हैं।
0: जी, दरभंगा बिहार से हमसे जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता मोहन पासवान। जी पासवान जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
1: इकट्ठे प्रणाम सर। हेलो,
0: जी,
1: इकट्ठे प्रणाम सर।
0: नमस्कार नमस्कार, कहिए।
1: सर, ई कचरा प्रबंधन में होने वाले कमी से किस प्रकार से लोग बच सकते हैं सर? सर, गांव में ई कचरा से होने वाले हानि से बचने के लिए गांव के लोग जैसे कि डिजिटल सामान और कुछ सुई इस प्रकार के जो दिए जाते हैं उससे बचने के लिए क्या करें सर?
0: जी, तो इनका प्रश्न सिन्हा जी गांव को लेकर है, खास तौर पर कि जो गांव में जो हमारी आबादी रहती है वो कैसे ई कचरे की इस समस्या से निजात पा सकती है।
2: देखिए, गांव में, छोटे शहरों में, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कलेक्ट कैसे किया जाए। अब हम सबको पता है कि जब कोई अपना कोई भी टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल, मोबाइल को छोड़िए, एसी हो, जब हम नया खरीदने जाते हैं तो हमें उसके लिए दुकानदार कोई वैल्यू देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें से, जैसे मैंने पिछले सवाल के बारे में बताया, उसमें से मेटल जो है, लोहा, कॉपर निकलता है और उसकी एक मूल्य है। अब दिक्कत यह है कि गांव में जो, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो ई वेस्ट हो, वो इकट्ठा कैसे किया जाए और वो इकट्ठा हो के रिसाइकल इंडस्ट्री से तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसमें मुझे लगता है हमें लोकल जो म्यूनिसिपल है या जो ब्लॉक में है या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिलके, पंचायत है, मिलके एक हमें पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ये सारा अच्छे से इकट्ठा भी हो और फिर ये रिसाइकलर के पास पहुँचे। जब ये पूरा सिस्टम आएगा तब मेरे ख्याल से ये होगा। तो ये जुड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा, और सरकार की बहुत पॉलिसीज़ हैं पर शायद वो आप तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो पक्का ये होगा।
0: जी, हमारे एक और श्रोता सासाराम बिहार से हैं, अमित उपाध्याय। जी अमित जी, कहिए क्या है प्रश्न आपका।
3: जी नमस्कार मेरे सारे, आपको भी और आपके जितने भी विशेषज्ञ, मेरा दो सवाल था। ये सवाल था कि जैसे कि

भी कचरा फैलता है, इसको मतलब क्यों नहीं जैसे व्यापक तौर पर एक प्रचार प्रसार हो जाए ताकि जन जन तक लिए पहुंच जाए, पहुंच सके। जैसे कोई भी चुनाव होता है या कोई भी ऐसा कैंपेन होता है सरकारी कैंपेन, तो इसको हम लोग ऐसे टाइप के व्यापक तौर पर इसको प्रचार प्रसार करते ताकि गाँव गाँव तक पहुँच जाए। और दूसरा सवाल ये था कि जो हम लोग उपग्रह में जितना भी हम लोग छोड़ते हैं आकाश में, तो बहुत सारा वो एक समय 4 साल या 5 साल के

0: वो भी एक कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के लिए खतरा है। जी
1: जी, तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल बहुत वाजिब है, और हम तो अभी घरेलू ई वेस्ट की ही बात कर रहे थे, आप तो अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं बिल्कुल, तो ये तो हमारे विशेषज्ञ ही इस विषय में बताएंगे। जी
2: देखिए, अंतरिक्ष का जो मामला है, शायद ये मेरे भी नॉलेज से बाहर है, क्योंकि जो ये सैटेलाइट हैं, जो ये यंत्र आसमान में जा रहे हैं, स्पेस में हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इस पे सब देश कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, पर ये बहुत सही सवाल है। इस पे थोड़ा हमें भी स्टडी करना पड़ेगा, तब हम आपको इसका जवाब दे पाएंगे।
1: जी, तो दरअसल एक ऐसा सवाल है, हालांकि हमारे एक और श्रोता, पहले इनका सवाल ही ले लिया जाए फिर मैं अपना प्रश्न आपके सामने रखूंगा सेना जी। ये हमारे श्रोता हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से, योगेश जी। तो योगेश जी कृपया कहिए क्या प्रश्न है आपका।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: नमस्ते।
3: मेरा प्रश्न रहेगा कि ई वेस्ट को लेकर, जैसे कि हमारे गांव में भी इसके बारे में जागरूकता का अभाव रहता है, तो सबसे पहले जरूरत तो ये रहेगी कि लोगों को ई वेस्ट के बारे में जागरूक किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि ई वेस्ट को रिसाइकिल करके भी हम ई वेस्ट के खतरे से बच सकते हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि ई वेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, और हमारे पास जो ई वेस्ट, मतलब ये जनरल में वेस्ट को कलेक्ट करने आते हैं, वो इस तरह के वेस्ट को लेने से ही इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में ये ई वेस्ट एनवायरनमेंट में चला जाता है, पानी में चला जाता है, नदियों में जाता है, प्रदूषण फैलाता है। इसके भीतर की जो हानिकारक धातुएं हैं और केमिकल्स हैं, वो हमारे वातावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ऐसे संबंध में इसके डिस्पोजल के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग वेस्ट को अलग-अलग नहीं करते, चाहे वो केमिकल हो या ई वेस्ट हो, उसको इकट्ठा ही कर देते हैं। सेग्रीगेशन की कोई उनकी समझ नहीं होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी के बारे में भी बताएं जो इस तरह की जागरूकता का संदेश देती हो, ताकि हम ई वेस्ट के खतरे से बच सके।
1: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, क्योंकि नदियां हमारी तमाम जो हैं वो पर्वतों से आती हैं, और आप पर्वतीय प्रदेश से बोल रहे हैं, तो वहां से जब पानी आता है तो वो समझिए कि सारे में जो वो व्याप्त होता है, तो उसके साथ अगर उसमें कुछ विषैले तत्व होंगे तो वो सारे क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और सिन्हा जी, हाँ आपसे।
2: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि जो ई वेस्ट है, इसके तीन रूप में दिखा सोचता हूँ। एक है कि जो हमने बात की एनवायरनमेंट की, प्रकृति की, ये सबको पता है कि ये अगर पानी में, हमारे खेतों में, हमारे ग्राउंड में जाएंगे, इससे पोल्यूशन होता है। इसीलिए इसकी रिसाइकलिंग एक फॉर्मल, एक वैज्ञानिक प्लांट में होनी चाहिए, ताकि ये ना हो। दूसरी चीज़ है कि जो इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, क्योंकि ये हाथ से रिसाइकलिंग हो रही है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकलिंग हो रही है, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, महिला भी इन्वॉल्व है, तो एक हेल्थ एस्पेक्ट भी है जो इसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं। तो ना कि हमारी हेल्थ, पर इनकी हेल्थ। तीसरी बात ये है कि जो ये मेटल्स निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, स्टील है, बहुत सारी जो मेटल्स हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हम इम्पोर्ट करते हैं, ये हम बाहर से लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो फॉरेन करेंसी है जो इसमें जाती है, तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल हित के लिए भी हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं। आपने पूछा कि सरकार की क्या पॉलिसी, मुझे खुशी है कि लास्ट पिछले 4-5 साल में सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। अगर अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं, शायद हमारे बाकी श्रोताओं को भी इंटरेस्ट हो, बट सिंपल तरीके से जो एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने बहुत अच्छा एक पोर्टल बनाया है, जिसमें जितने रिसाइकलर हैं, जो साइंटिफिक, पूरी वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और जितने मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारे ब्रांड हैं, जो हमें मोबाइल बेचते हैं,

0: एसी बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, उन सबको जोड़ा है। और बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है कि अगर किसी ने मान लो 1 लाख वॉशिंग मशीन बेचे, तो उन्होंने बोला है भाई 7 साल में ये वॉशिंग मशीन रिसाइकल होने चाहिए। और उस पर उन्होंने एक कोटा बनाया, एक टारगेट बनाया है जो सारा डेटा ड्रिवन है। और वो अगर वो मैन्युफैक्चरर, वो ब्रांड अगर नहीं करेगा तो उस पर बहुत बड़ी पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी है, उस पर बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए अब जितने भी ब्रांड हैं वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो बेचें वो जब पुराना हो जाए, रिसाइकल हो जाए, कलेक्शन करें। और उन्होंने ये भी बोला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं जो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा मिले। तो उन्होंने बोला है अगर आपका कोटा है मान लीजिए 1 लाख टन, आप नहीं मीट कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई ज़रिया नहीं है वापस लाने का, आप बनाइए, तो वो कोटा आप रिसाइकलर से ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप जो रिसाइकलर हैं उनको भी आप इनकरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सारा अच्छे तरीके से वापस रिसाइकल हो, और इससे ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और लास्ट सवाल ये है कि कैसे आप तक पहुँचे, जैसे मैंने पिछले सवाल का भी जवाब दिया, हम सबको मिलके जुड़ना है, जो दूर दराज के इलाके हैं, कैसे हम सरकार के साथ, लोकल एनजीओज के साथ मिलें, और ये रिसाइकल इंडस्ट्री जो शायद बड़े शहरों में है या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है वहाँ तक पहुँचें। और आप भी इनोवेशन करिए, आप भी रिसाइकलर बनिए, तो अपने एरिया के लिए आप भी बहुत ज़रूरी काम करेंगे।
1: बिल्कुल, आप भी अपने मित्रों में इस विषय में चर्चा कीजिए। और जहाँ तक कि हमारे एक पहले श्रोता ने भी कहा था कि क्या इसके बारे में कोई प्रचार अभियान है, तो हम आज जो ये चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये भी तो उसी प्रचार अभियान का एक हिस्सा है जिससे लोगों में जागृति आए। और निसंदेह आपके जो ये सवाल हैं महत्वपूर्ण, वो भी जागृति लाने में सहायक हैं। और नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं जगदीश जोशी जी। कहिए जोशी जी, क्या प्रश्न है?
2: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: ये एंकर साहब, आपको भी नमस्कार, और जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनको भी नमस्कार।
1: जी, प्रणाम, नमस्कार।
2: तो एक तो क्वेश्चन तो मैं दो तीन छोटे छोटे पूछूंगा। आपके मंच के, जो आपका बड़ा मंच है, के माध्यम से अपने युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं मोबाइल के जो यूजर है, कि जब तक हम मोबाइल को चला रहे हैं वो तो खैर ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल हमें चलाने लगा है, तो ये एक मैसेज है। और दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट कई जगह कैंप लगाती है, चाहे वो अभी जीरो बैलेंस के खाते के लिए लगाए थे या मतदाता सूची के लिए लगा रखे हैं, तो आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट को ये ई कचरे के लोगों को अवेयर करने के लिए गांव गांव में कैंप लगाना चाहिए, या गवर्नमेंट
1: जी,
2: लगाती है आपकी जानकारी में हो पंचायत में? हाँ
1: आपका कहना महत्वपूर्ण है, लेकिन
2: जी, हाँ जी। और
1: इसीलिए
2: एक
1: मैंने
2: दूसरा है
1: कहा
2: कोई,
1: कि इसी जागृति अभियान के तहत तो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो हम तक पहुंच गई है, आपकी जिज्ञासा, और मैं समझता हूं कि उससे खास तौर पर जो सवाल हमें समझ में आता है वो ये है कि देखिए, जब हमारे सिन्हा जी जो आम नागरिक हैं शहरों के, गांवों के, वो चाहते हैं दिल से कि हम अपना ई कचरा जो है वो रिसाइकल के लिए दें, लेकिन क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐप मौजूद है जिस पर वो संपर्क करके ये कह सकें कि हमारे पास ये ई कचरा है और इसको आप ले जाइए, और क्या उन्हें उसके लिए कुछ भुगतान भी प्राप्त हो सकता है?
0: हाँ है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है और रिसाइकलर्स अब उन बढ़ रहे हैं, जो फॉर्मल रिसाइकलर हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो सीधा कस्टमर से, या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो आप हैं, उनसे डायरेक्टली उठाएं। और इसीलिए अब नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जिस तरीके से हम खाना अभी घर से कोई हमें डिलीवर कर देता है, हम कुछ ऑनलाइन ख़रीदते हैं हमारे घर तक आ जाता है, तो प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। उनका नाम मैं अगर लूँगा तो शायद मैं किसी को फेवर करूँगा, पर जैसे आप अगर ऑनलाइन जाएंगे, आप सर्च करेंगे मुझे अपना पुराना एसी बेचना है, फ्रिज बेचना है, तो शायद आपके पास कोई प्लेटफॉर्म आए, जैसे सेल स्मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म हैं, आप किसी बड़े रिटेलर के यहाँ दुकान में जाएंगे तो उनके पास बॉक्स होता है, तो प्लेटफॉर्म आ गए हैं। उसको अभी आपको ऑनलाइन जाना है, आपको ढूंढना है, और आपको मिलेंगे। और सरकार भी गवर्नमेंट बहुत

0: कोशिश कर रही हैं अपने अलग अलग मिनिस्ट्री से, अपने डिपार्टमेंट से, कि इसका प्रचार करें, कैंप्स रन करें। बहुत छोटा है जो अभी हम कर रहे हैं, बट पूरा फोकस है, तो ये पहुंचेगा आप तक।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमने गौर किया जब आपने कहा कि अक्सर जब हम मोबाइल फ़ोन के और ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनके स्टोर पर जाएं तो एक ऐसा कोना ज़रूर होता है जहां वो कहते हैं कि यहां आप अपना जो पुराना ई वेस्ट है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन निसंदेह इसको और बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ऐप्स मौजूद हैं और आप उन्हें सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। महाराष्ट्र, ठाणे महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी कहिए, क्या प्रश्न है आपका?
2: जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, ये कचरा समस्या तो है, लेकिन सर जैसे मतलब घर पे इसको डिस्पोज किया जाए, स्क्रैपिंग वाले तो बहुत मुश्किल से लेते हैं ये जो कुछ गैजेट होते हैं, तो क्या घर पे ही कुछ जो डिस्पोज कर सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, इसमें से जो जो खतरनाक किरणोत्सर्ग निकलते हैं, क्या आदमी के लिए मतलब कौन से डिजीज हो सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा मैं ये भी सुना है कि कुछ डिजीज इसके वजह से आदमी को हो सकते हैं। थैंक यू।
1: जी, आपके दो प्रश्न हैं। पहला तो आपने कहा कि घर से ही हम कैसे उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, तो वो जैसा कि बताया है अभी आपको कि इसके लिए ऐसे ऐप्स मौजूद हैं, आप उनको ऑनलाइन सर्च करें, उनसे संपर्क करें, या फिर जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ जब आप जाते हैं खरीदने के लिए तो वहाँ भी ऐसी सुविधा दी जाने लगी है जहाँ आप अपने ई वेस्ट से निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आपने जो पूछा कि नुकसान जो होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और कौन से ऐसी धातुएं हैं, ख़ास तौर पर ऐसे विषैले तत्व हैं, उनके विषय में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको सटीक जानकारी देंगे।
0: देखिए, ये तो आपको पता है कि आप खाने में अगर पेस्टिसाइड डालेंगे, केमिकल डालेंगे, कोई भी केमिकल हो, वो हानिकारक तो होगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में भी जो बैटरी हैं, जो उसमें कैडियम है, कैडमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, कोई भी मेटल केमिकल हो सकता है, कुछ बहुत हानिकारक है, कुछ कम है। और ये हमको पता है कि जब ये पानी में जाता है, ये हमारे फूड में आता है, तो बीमारियां कैंसर तक की भी होती हैं। इसीलिए ये मतलब ये मामूली बात नहीं है, बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें इसको सॉल्व करना है। और बिल्कुल घर पे आप मत रिसाइकलिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, और ये एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ये रिसाइकलर के पास जाना चाहिए। बट यस, ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं अगर ये रिसाइकल नहीं होगा, और हमारे अगर ये लैंड में, पानी में वापस जाएगा।
1: जी, तो अब ये जो अगला प्रश्न है हम ये ले रहे हैं, हमें मिला है व्हाट्सएप के जरिए, और मनोज पान से नागपुर महाराष्ट्र से पूछते हैं हमसे, कहते हैं कि ई वेस्ट में किस प्रकार की वस्तुएं आती हैं जो हम आपको बता ही चुके हैं, और ये कहते हैं कि इसे किस प्रकार से रिसाइकल किया जाए ये भी हमने आपको बताया। फिर इनका जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से अवेयर किया जाए, ई वेस्ट डिकम्पोज होता है क्या, और होता है तो कैसे? जी
0: नहीं, बच्चे तो आई थिंक आजकल बहुत जागरूक हैं, हमें पता है कि वो शायद माँ बाप से ज़्यादा जागरूक हैं। वो माँ बाप को बताते हैं, और अगले 50, 100, 80 साल तो उनको जीना है।
1: जी और ये बहुत अच्छी बात है कि अब ये पाठ्यक्रम का भी एक
0: हाँ,
1: अंग हो गया है कि उनको जागरूक किया जा रहा है। जी
0: और देखिए, जैसे मैंने कहा, ये है धातु जो आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, ये है केमिकल। तो ये तो आपको भी पता है कि धातु तो ज़मीन से ही आए हैं, ये वापस जाके ये डिज़ोल्व तो नहीं होंगे, ये केमिकल वापस डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर हम कोशिश करें कि 100% जो आया है वो रिसाइकल हो जाए, फिर वो नए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, तो ना तो हमें नए माइनिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा, ना हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो ये पूरा जो एक गोला है ये बनेगा। तो ये धातु, ये केमिकल्स तो आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए अगर ये हम कोशिश करें कि हम इसको उस तरीके

0: तरीके से सोचें। प्लास्टिक का जैसे हमें पता है कि अगर हम इसको रिसाइकल करेंगे, कांच का पता है रिसाइकल करेंगे, मेटल की भी वैल्यू है, मेटल मेटल का भी एक मूल्य होता है, और ये अगर रिसाइकल होगा तो वापस जो जो नए प्रोडक्ट हैं उसमें यूज़ होगा।
1: जी, शिमला हिमाचल प्रदेश से राकेश हैं हमारे साथ। जी राकेश जी, कहिए आपका प्रश्न क्या है।
2: जी, नमस्कार। मैं
1: नमस्कार
2: कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: जी।
2: और मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम कोई भी चीजें रिसाइकल करते हैं तो किस तरह से हमें प्रावधान सावधानी रखनी है? और दूसरी बात ये, मेरा जैसे कि प्लास्टिक की चीजें, जैसे जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, जैसे टूटी हुई कुर्सियां हैं, तो इसको जो है हिमाचल में जैसे तापमान कम रहता है या क्या बोलते हैं, जैसे हमारे बाग बगीचे में फर्क ना पड़े, तो इस चीजों को जो है जो है किस तरह से हमें करना चाहिए प्लास्टिक की चीजों को?
0: देखिए, जैसे मैंने बोला, आप खुद तो रिसाइकल नहीं कर सकते। उसके लिए मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये घर पे नहीं की जा सकती है, इसको आपको रिसाइकलर के पास भेजना है। चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कांच हो, चाहे मेटल हो, चाहे आपका मोबाइल हो, तो आपको ढूंढना है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपके लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, अगर उनके पास ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पर आप डालिए। अगर वो वैल्यू दे सकते हैं, मूल्य दे सकते हैं, दीजिए, नहीं तो नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि उनका भी एक खर्चा है उसको लेके किसी रिसाइकलर के यहाँ पहुँचाने का, और वही मेरे हिसाब से सही राह होगी। घर पे बिल्कुल कोशिश भी नहीं करें और आप कर भी नहीं पाएंगे।
1: जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की है, और आप भी इस बात को ख्याल रखिए कि खुद ई वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश न करें, क्योंकि उसमें निसंदेह कई ऐसे पदार्थ होते हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, और इसके लिए विशेषज्ञता की ज़रूरत है। सिन्हा साहब, ये बताइए कि रिपेयरिंग जो है, यानी मरम्मत है और दोबारा इस्तेमाल कर लेना चीज़ों को ठीक करके, जैसा कि विकसित देशों में ऐसा देखा जाता है कि रिसाइकलिंग शॉप्स हैं, तो ये यदि चलन में आए तो इससे कितनी मदद मिल सकती है इस ई वेस्ट पर काबू पाने में?
0: बिल्कुल, सरकार तो ये चाहती है, जैसे आपने बोला, रिसाइकल, रीयूज, रिपेयर, तो ये तो सरकार चाहती है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये करें। पर इसमें इसमें सिर्फ एक तरह से नहीं सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। अब हमको पता है कि शहरों में गर्मी हो रही है, समर्स में ये एसी और गर्म करते हैं। हमको पता है कि पुराना एसी फट भी सकता है, हमको पता है कि उसमें जो गैस होती है वो बहुत पुरानी होती है, बिजली की खपत ज़्यादा होती है जो देश के लिए ठीक नहीं है। तो आपको रिपेयर करना है, रीयूज़ करना है, पर ये भी समझना है कि हर इलेक्ट्रॉनिक की एक लाइफ होती है, एक कार्य होती है, उसके बाद वो रिसाइकल होके नया बने तो शायद सबके लिए अच्छा है, बट बिल्कुल रिपेयर करिए। ये तो हमारे देश में, हमारे अंदर में प्रथा भी है कि हम फेंकते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो रीयूज़ करते रहें। पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपको अपने जजमेंट से, अपने राय से सोचना है कि आप इसका क्या करें।
1: जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ऐसे कौन से 3 कदम आप सुझाना चाहेंगे जिनको उठाते हुए, अपनाते हुए आम नागरिक जो है इस समस्या के समाधान में बहुत ही सहायक हो सकते हैं?
0: देखिए, पहले तो आपको इसको कचड़े में नहीं डालना है, क्योंकि जब आप कचड़े में डालते हैं तो जो बाकी कचरा है वो भी रिसाइकल नहीं हो पाता, किसी को उसको अलग करना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक को और खाने को अलग करना पड़ता है। दूसरी बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे किसको दें कि ये रिसाइकल हो पाए। तीसरी बात यह है कि आपको जागरूक करना है अपने आप को और अपने बच्चों को और सबको, ताकि वो समझें और वो इस पे आगे ठीक डिसीजन ले पाएं।
1: जी, तो दोस्तों, समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फ़ोन लाइंस और डिजिटल जरिए से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ई वेस्ट रिसाइकलिंग विशेषज्ञ मयंक सिन्हा जी को स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हार्दिक धन्यवाद हमारी ओर से। और दोस्तों, इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक हो रहा है समाप्त। अगले सप्ताह सोमवार रात 9 बजे फिर मिलेंगे आपसे, मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की है। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी

स्वास्थ्य तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रो डिप्सन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: properly map which cells are responsible for which function in the brain. The Nobel Assembly of Sweden's Karolinska Institute made the announcement today. And IMD has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, South Interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. Weather agency has also predicted thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds over northern India. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गजल, कलाकार रहेंगे सुमित दत्ता। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज आपने सुश्री सुमिता दत्ता की आवाज़ में गज़लें सुनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे श्री सुनील कांत सक्सेना का राग जोग में सितार वादन। झपताल द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्री सुनील कांत सक्सेना का राग जोग में सितार वादन। झपताल द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

90 के दशक की ये फिल्म में नवोदित कलाकार और उन कलाकारों के साथ साथ गीतों की अगर बात की जाए तो वो गीत सभी के दिलों पर राज करने वाले। ऐसा ही था ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में जो आपने सुना फिल्म घर से निकलते ही का। और फिल्म की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी फिल्में होती थी जिसमें कि नवोदित कलाकार आते थे लेकिन वो फिल्में कई बार बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाती थी, उतनी चर्चित नहीं रहती थी, लेकिन उनके गीत सभी लोगों को पसंद आते थे। और कुछ फिल्में ऐसी थी जिसमें कलाकार भी बहुत पसंद आए लोगों को और साथ ही साथ वो फिल्म की कहानी, उसका संगीत, उसका डायरेक्शन, सब कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ ऐसी ही फिल्म है जिसका अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस का एक गीत सुनते हैं।

जी हाँ, 90 के दशक की एक और फिल्म जिसका बड़ा ही खूबसूरत सा गीत आपने कुमार सानू की आवाज़ में सुना है। और जब गीतों की बात आती है तो वाकई जो 90 का दशक है वो दशक ऐसा कहलाता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गीत सुनने को मिलते हैं जो दिल को हमेशा छू जाते हैं। इसी तरह की अगर एक फिल्म की बात की जाए तो फिल्म है जाबाज, और फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में और साथ में सपना अवस्थी, बहुत ही सुंदर सा ये गीत। और इस गीत के ज़रिए जो शब्द बयां किए गए हैं वो शायद आज भी लोगों को उतने ही उत्सुक और उतने ही प्यारे लगते हैं जितने वो जब लगते थे जब ये गीत आया था। तो जब बात हो रही है उसी गीत की तो चलिए हम भी सुन लेते हैं।

जेहा न तुम जानो ना हम। लकी अली का बहुत ही चर्चित ये गीत रहा, 90 के दशक का ही ये गीत भी है, जिसमें के दो नवोदित कलाकार थे, जिसमें से एक ऋतिक रोशन और दूसरी अमीषा पटेल, और इनकी जोड़ी भी बहुत हिट रही। और गीतों की अगर बात की जाए तो गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए इस फिल्म के, और ये गीत खासकर लकी अली की आवाज़ में आज भी लोगों को बेहद पसंद आता है। ये तो बात रही इस गीत की, तो अब साझा करते हैं आपके साथ कार्यक्रम का ये अगला गीत।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत सा गीत फिल्म दिल से हमने सुना। और बात करें अगर इस फिल्म की, तो इस फिल्म में हमें जोड़ी नज़र आई आमिर खान और उनके साथ रही माधुरी दीक्षित। ये उस समय की एक बड़ी हॉट जोड़ी मानी जाती थी, लोगों को इनकी जोड़ी पसंद भी आई। शायद उसके बाद कोई और ये इस जोड़ी को लेकर कोई और फिल्म नहीं बन पाई है, लेकिन फिर भी ये जोड़ी आज तक काफ़ी चर्चित रही है। अगर बात करें हम माधुरी दीक्षित की, तो माधुरी दीक्षित जिस भी अभिनेता के साथ काम करती थी उसके साथ उनका कंपैटिबिलिटी, उनकी जो ट्यूनिंग थी वो इतनी शार्प, इतनी अच्छी हुआ करती थी कि मानो लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कुछ ऐसी ही फिल्म थी साजन, जिसमें दो हीरो होने के बावजूद भी हीरोइन की केमिस्ट्री ऐसी थी कि दोनों हीरो के साथ लगता था कि जैसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो चलिए, जब बात हो रही है फिल्म साजन की, तो इसका गीत सुन लेते हैं।

0: फिल्म साजन का ये गीत आपने सुना और आवाज़ थी अलका याग्निक की, और बहुत ही सुंदर सा ये गीत। और अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत कहीं संपन्न करने की अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पाहमलान ने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुएल ओकुरजेटो अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के अंकरा रिसेट के दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरे रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। अगले 4 मैच 9, 11, 14 और 17 अक्टूबर को रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज सच में एक ऐसे दिग्गज संगीतकार हैं, हालांकि एक्टर भी रहे हैं और गीतकार भी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आकाशवाणी के सुरों का सफरनामा के लिए संगीतकार SN रेडियो प्रस्तुति होने जा रही है, तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी तैयार हो जाइए आज के सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम, जी हाँ, आधारित है संगीतकार SN त्रिपाठी पर। साथियों, आकाशवाणी कार्यक्रम सुरों का सफरनामा विशेष प्रस्तुति है महान संगीतकार SN त्रिपाठी की। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के सुरों के इस खूबसूरत सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कभी कभी कोई कलाकार सिर्फ संगीत नहीं बनाता, कभी कभी कोई कलाकार संगीत नहीं बनाता, बल्कि अपने संगीत में एक पूरा युग संजोता है। आज सुरों का सफरनामा में हम याद कर रहे हैं ऐसे ही बहुआयामी और विलक्षण संगीतकार को, जिनका नाम है SN त्रिपाठी। एक ऐसा नाम जिसने शास्त्रीय संगीत की गंभीरता को लोक धुनों की सहायता से जोड़ा, जिसने पौराणिक कथाओं को सुर दिए, ऐतिहासिक किरदारों को आवाज दी और विरह, प्रेम, भक्ति तथा देशभक्ति हर भावना को अपनी धुनों में जगह दी। वे संगीतकार थे, गायक थे, अभिनेता थे, लेखक थे और निर्देशक भी थे। आज की यह संगीत यात्रा हमें ले जाएगी वाराणसी की गलियों से लेकर मुंबई की दुनिया तक। तो आइए सुरों के इस सफर में दिल थाम कर शामिल हो जाइए और याद कीजिए SN त्रिपाठी को। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ा ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत है, तो आइए सुनते हैं एक बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत गीत, आओ वन वन डोले हम, सती सावित्री फिल्म से। ये शानदार रचना है प्रीति सागर और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ है। सती सावित्री फिल्म 1981 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत सुलक्षणा चित्रा और SN त्रिपाठी के संगीत से सजा शानदार बेहतरीन खूबसूरत गीत से शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, दोहराए देते हैं, आज मैं हूं आपके पास, आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम सुर के सफरनामा की पहली बेहतरीन खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर गीत से शुरुआत की है, वाकई बहुत ही शानदार। या दोस्तों, SN त्रिपाठी, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार SN त्रिपाठी की। या दोस्तों, और ये SN त्रिपाठी का पूरा नाम हम बता देते हैं, पूरा नाम था श्रीनाथ त्रिपाठी। साथियों, उनका जन्म 14 मार्च 1913 को वाराणसी में हुआ था। उनका पारिवारिक वातावरण संस्कृत धर्म और भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्हें शास्त्रों और संगीत का संस्कार मिला। वाराणसी की सांस्कृतिक मिट्टी ने उनको व्यक्तित्व को गहराई दी। एक और संस्कृत और धार्मिक साहित्य का संसार, दूसरी ओर भारतीय शास्त्रीय संगीत की साधना, और यही दो धाराएं आगे चलकर उनके संगीत में दिखाई दी। फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं। ये गीत भी अपने आप में बहुत ही अनमोल है, बेहद खूबसूरत है, और जैसे जैसे हम जानकारियां बताते रहेंगे और साथ साथ आप सभी साथियों के लिए गीत भी सुनवाते रहेंगे। साथियों, आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल में और AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल में सुन सकते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा, जिसमें आप सुन रहे हैं SN त्रिपाठी। जी हाँ, महान संगीतकार SN त्रिपाठी को सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है। साथियों, बहुत ही कम आप सभी साथियों ने एस एन त्रिपाठी का नाम सुना होगा, मैक्सिमम साथियों ने, लेकिन वाकई बहुत ही गजब की सोच, गजब की संगीत, गजब की एक्टिंग, या फिर गजब का गीत। जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना अभी आपने सुनी। साथियों बढ़ते हैं, उन्होंने इलाहाबाद से विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और बाद में लखनऊ के मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया। यहाँ से उनके जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगी। संगीत केवल शौक नहीं था उनका, संगीत उनका जीवन बनने वाला था। या दोस्तों, मुंबई की ओर पहला कदम 1930 के दशक में भारतीय सिनेमा अपने विकास के दौर में था। बोलती फिल्में आ चुकी थीं और फिल्म संगीत धीरे धीरे भारतीय जनजीवन का अभिन्न हिस्सा बन रहा था। इसी दौर में एस एन त्रिपाठी मुंबई पहुंचे। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में संगीत विभाग से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और शुरुआती वर्षों में सहायक रहे, संगीतकार के रूप में काम किया और जवानी की हवा, ममता, अछूत कन्या और वचन जैसी फिल्मों में जुड़े रहे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हम एक और गीत की ओर बढ़ रहे हैं और ये गीत बड़ा ही सुंदर है। आपसे हमको जिंगारो, एक फिल्म है जिंगारो जो 1963 प्रदर्शित फिल्म रही है, मोहम्मद, माफ़ कीजिएगा, महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में शानदार रचना है। संगीत ऑफ कोर्स एस एन त्रिपाठी का। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

जी हाँ, हो गई हो गई हो गई। जी हाँ, आपसे हमको मोहब्बत हो गई। वाकई मोहब्बत एक अलग विधा है इस दुनिया की, है ना। खुली सड़क पर एक बड़ा ही सुंदर गीत आ रहा है, और जिक्र चरणवा में लाग ले परनवा, एक अलग बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत है, और ये गीत वाकई बहुत ही शानदार है। लेकिन उससे पहले हम उनके बारे में कुछ जानकारियां बता देते हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति को आगे चलकर सैकड़ों गीतों की धुनों का सृजन करना था, उसने अपने करियर की शुरुआत पर्दे के पीछे एक सहायक के रूप में की। यही संघर्ष कलाकार को कलाकार बनाता है। बड़ी पहचान अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे वर्षों की साधना, इंतजार और छोटे छोटे अवसर छिपे होते हैं। गायक के रूप में भी पहचान एस एन त्रिपाठी केवल संगीतकार नहीं थे, उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल भी किया। जी हाँ दोस्तों, फिल्म जीवन नैया में उन्होंने पर्दे पर दिखाई देते हुए एक गीत भी गाया था। यानी जिस कलाकार को हम आज मुख्यतः संगीतकार के रूप में याद कर रहे हैं, वह आरंभिक दौर में अभिनेता और गायक के रूप में भी सक्रिय थे। सुनते हैं एक और शानदार रचना, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम की आवाज़ में बेहतरीन रचना, फिल्म खुली सड़क पर।

0: मरे ओ जरे मरे जरे मरे जरे मरे
1: जी हाँ दोस्तों, चमन चमन ये महंगा। जी हाँ, बहुत ही अलग तरीके के। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण परिपेक्ष में या फिर भोजपुरी अंदाज में शानदार बेहतरीन रचना। जी हाँ, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम की आवाज़ में अभी आपने ये सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत सुना। या दोस्तों, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, बड़े ही प्यारे साथी, जी हाँ, संगीत बनने का या फिर उनके व्यक्तित्व की यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें अपने समकालीन अनेक संगीतकारों से अलग करती है। स्वतंत्र संगीतकार बनने का सफर कुछ वर्षों तक सहायक के रूप में काम करने के बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से संगीत देने का अवसर मिला। चंदन उनके शुरुआती स्वतंत्र संगीत निर्देशन से जुड़ी महत्वपूर्ण फिल्मों में मानी जाती है। जी हाँ, चंदन फिल्म की बात कर रहे हैं। इसके बाद चूड़ियाँ, पनघट, रम्यानी, वीर कुणाल, पनिहारी और अन्य फिल्मों में उनका संगीत सुनाई दिया। यहीं से उनकी अपनी संगीत भाषा विकसित होने लगी। शास्त्रीय संगीत की पकड़, लोक धुनों की सहजता, धार्मिक संगीत का संस्कार और कहानी के अनुरूप वातावरण रचने की क्षमता, इन सब का अद्भुत मेल उनके संगीत में दिखाई देता है। तो साथियों, एक और खूबसूरत गीत आ रहा है। ये गीत भी अपने आप में बहुत ही प्यारा है। गोरी गोरी सिन्हलवा सिन्हल दीप की सुंदरी, एक फिल्म का नाम है सिन्हल दीप की सुंदरी। लता मंगेशकर की बहुत ही सुंदर आवाज़ में लाजवाब रचना है। ये फिल्म 1980 प्रदर्शित फिल्म रही और संगीत से सजाया है SN जी हाँ त्रिपाठी ने। आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

जी हाँ दोस्तों, एक से एक सुंदर, बेहतरीन, हर प्रकार के गीत, जी हाँ, संगीत से सजाया है हर प्रकार के गीतों को, बहुत ही शानदार।

आप सभी साथियों के लिए, और शायद बहुत ही कम साथी नहीं समझ पा रहे होंगे आखिरकार एसएन त्रिपाठी कौन है। जी हाँ दोस्तों, और वाकई साथियों, क्षमता उनके अंदर बहुत ज़्यादा रही। इन सब का अद्भुत मेल उनके संगीत में दिखाई देता है। एसएन त्रिपाठी की संगीत शैली, अगर एसएन त्रिपाठी के संगीत की एक विशेषता चुननी हो तो वह होगी भारतीयता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय भारतीयता उनकी धुनों में रागदारी का प्रभाव था। लेकिन वे धुनों के केवल शास्त्रीय प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखते थे। उनके संगीत में लोक संगीत की खुशबू भी मिलती थी, विशेषकर पौराणिक, ऐतिहासिक और कॉस्ट्यूम फिल्मों में उन्होंने शहनाई, लोक वाद्यों और भारतीय धुनों का सुंदर इस्तेमाल किया। उनका संगीत दृश्य को केवल सजाता नहीं था, बल्कि वह दृश्य का भाव बन जाता था। जहाँ विरह था वहाँ दर्द, जहाँ भक्ति थी वहाँ श्रद्धा, जहाँ प्रेम था वहाँ कोमलता, और जहाँ इतिहास था वहाँ शौर्य और गंभीरता। यह दोस्तों वाकई कितनी सारी विधाओं के साथ मल्टी टैलेंटेड एसएन त्रिपाठी संगीतकार। जी हाँ, वाकई बहुत ही शानदार। सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

सुंदर खूबसूरत ये भी अपने आप में बहुत ही अनमोल बेहतरीन रचना अभी आपने सुनी। जी हाँ दोस्तों, साथियों, जय हिंद। जी हाँ, जय हिंद और देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रसंग आया है। एस एन त्रिपाठी के संगीत सफर का एक उल्लेखनीय पहलू देशभक्ति से भी जुड़ा है। फिल्म मंसोवर, माफ कीजिएगा, मंसरोवर 1946 प्रदर्शित फिल्म रही है कि एक गीत में जय हिंद का प्रयोग किया गया था। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उपलब्ध जो हमारे पास जो स्रोत हैं, उन्हें फिल्मी गीत में जय हिंद नारे के शुरुआती प्रयोग से जोड़ते हैं। यह वह समय था जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था। सोचिए, सिनेमा का पर्दा संगीत की धुन और उसमें गूंजता हुआ देश का आत्मविश्वास। जी हाँ, जय हिंद, यह केवल शब्द नहीं थे, यह उस समय के भारत की धड़कन थी। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारी, सुंदर, खूबसूरत रचना आ रही है। आइए सुनते हैं ये लाजवाब खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, जानकारियाँ बहुत सारी हैं, गीत भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं देता है और अभी केवल 8 मिनट बाकी हैं और थोड़ी जानकारी और बता देते हैं। पौराणिक फिल्मों से गहरा रिश्ता, एसएन त्रिपाठी का नाम पौराणिक और धार्मिक फिल्मों के संगीत के साथ बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है। वे पुराणों और धार्मिक कथाओं से परिचित थे, यही कारण था कि जब उन्होंने पौराणिक फिल्मों के लिए काम किया तो उनके संगीत में केवल धुन नहीं, कथा की आत्मा भी सुनाई देती थी। श्री राम,

भक्त हनुमान में उन्होंने हनुमान की भूमिका भी निभाई है और फिल्म लेखन तथा संगीत से जुड़े फिल्म की सफलता ने उनके बहुआयामी करियर को नई पहचान दी। इसके बाद वे कई पौराणिक और कॉस्ट्यूम फिल्मों में हिस्सा बने। हनुमान पाताल, विजय, अलादीन और वंडरफुल लैम्प, अलीबाबा एंड 40 थीव्स यानी अलीबाबा और 40 चोर, हातिम ताई, लक्ष्मी नारायण, महाबली हनुमान, तमाम ऐसी रचनाएं हैं उनमें योगदान दिया। अभिनेता एस एन त्रिपाठी, यहाँ उनकी कहानी दिलचस्प हो जाती है। संगीतकार के साथ साथ अभिनेता थे, विशेषकर हनुमान के किरदार में उन्होंने दर्शकों ने खूब पहचाना। उनकी अभिनय यात्रा में पौराणिक और फिल्मों का बड़ा हिस्सा रहा। साथियों, रानी रूपमती एक फिल्म थी, बड़ी ही सुंदर खूबसूरत। जी हाँ, 1950 के दशक में एस एन त्रिपाठी ने निर्देशन की ओर कदम बढ़ाया और रानी रूपमती उनके निर्देशन करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। फिल्म के संगीत ने विशेष लोकप्रियता प्राप्त की और आज भी उनके संगीत एस एन त्रिपाठी की पहचान से जुड़े हुए हैं। आ लौट के आ जा मेरे मीत, जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत गीत है। साथियों, बस ये लास्ट गीत हम प्ले करेंगे क्योंकि समय हमें इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता है। और क्या कहें हम, सच में हमें भी थोड़ा सा लगता है कि आखिरकार क्या किया जाए। थोड़ा सा समय अगर बढ़ जाता तो वाकई और भी ज़्यादा हो जाता खूबसूरत, है ना, समा। तो साथियों, एक बड़ा ही प्यारा गीत आ रहा है, आइए सुनते हैं ये बेहतरीन खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, सुरों का सफ़रनामा में हमने जिस संगीत साधक को याद किया, वह केवल संगीतकार नहीं था, वह भारतीय संस्कृति की अनेक धाराओं को सुर देने वाला एक बहु या आयामी कलाकार था। वाराणसी की मिट्टी में से निकला कलाकार मुंबई फिल्मी दुनिया तक पहुंचा, संघर्ष किया, सीखा, संगीत दिया, गाया, अभिनय किया और निर्देशन भी किया, माफ़ कीजिएगा। उनकी धुनों में कभी प्रेम की आहट थी तो कभी विरह की टीस, कभी भक्ति की रोशनी तो कभी इतिहास की पीड़ा। एस एन त्रिपाठी

शायद आज उतने चर्चित ना हों, लेकिन उनकी धुनें आज भी कहती हैं। जी हाँ, सच्चा संगीत कभी पुराना नहीं होता, बस इंतज़ार कहता करता है किसी एक संवेदनशील दिल का जो उसे फिर से सुने और फिर महसूस करे, फिर कहे वाह क्या धुन थी। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का सुरों का सफरनामा में फिर मिलेंगे किसी और सुर साधक की कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24x7। जी हाँ, चैनल सुनवा रहे हैं एक शानदार खूबसूरत आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना।

0: जी दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ आज का सुरों का सफर नामा अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति, एक बजने को है, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहरमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहरमलान ने कहा कि यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी

कदमों ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटे अबलाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज एमवी रोयाद ममादोव पर हुए हमले में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल तीन भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas, including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said, during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की. न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी. वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है. इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है.
0: Our correspondent reported that the discussions between PM Modi and the Swiss president were very wide-ranging. They reviewed the entire

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, काहे को गुमान करे गोरी। जी हाँ, केएल सहगल की आवाज़ में शानदार रचना। एक और बेहतरीन रचना आ रही है, ये रचना है जी हाँ बहुत ही प्यारी फिल्म किस्मत से, जो 1943 प्रदर्शित फिल्म रही है किस्मत। धीरे धीरे आ रे बादल धीरे धीरे आ, जी हाँ अरुण कुमार और आमिर बाई की आवाज़ में शानदार रचना, संगीत से सजाया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

0: सफर है हो
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।

0: राजकुमार जी, महाराज रणजीत सिंह घोड़े पर सवार अकेले पश्चिम की तरफ जा रहे हैं।
1: शुभ अवसर जी, राजा बापू महाशंकर के मंदिर जाया करते हैं, ये हमारा पुराना रिवाज है।

0: यार कभी न हंसने देगी सदा रुलाएगी ये दुनिया हाय हमारी ये दुनिया बदहालों पे हंसती
1: पति गीप हमलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहामलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुजेटे

0: अबलाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के अकरा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज एमवी रोयाद ममादोव पर हुए हमले में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल तीन भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरेथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाइना ओपन टेनिस में सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान डेनिल मेदवेदेव के अयोग्य घोषित होने के बाद नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला पांचवी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर से होगा। महिला टेनिस में अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन के खिलाड़ी सुन शिन रान को 7-5, 6-1 से हराकर अंतिम 16।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said, during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan yesterday and hosted a banquet in his honor. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. The two leaders agreed that close cooperation between India and Switzerland can bring immense benefits to the people of both countries. They expressed confidence that this visit will contribute to further strengthening relations between the two countries. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with one Lok Sabha constituency.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामुलान के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहामुलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामुलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामुलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटे अब्लाक्वा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। घाना के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के अक्रा रीसेट दृष्टिकोण के अंतर्गत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और कई क्रू मेंबर घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन

0: आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली ने इसकी घोषणा की। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैनल रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। India and Switzerland yesterday signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between PM Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas, including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, PM Modi said, during their meeting, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan yesterday and hosted a banquet in his honor. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held today, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Tattanchavadi in Puducherry and Reginagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. Defence Minister Rajnath Singh will launch Fleet Support Ship 1 FSS-1 and lay the keel of Fleet Support Ship 5 FSS-5 at Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam today. He will also inaugurate the upgraded Slipway 4 and 300-ton Goliath crane. Ministry of Defence said that the upgraded Slipway 4, with its extended length and enhanced load-bearing capability, supported by the 300-ton Goliath crane, will enable the shipyard to build and launch vessels of up to 45,000 deadweight tonnage, significantly expanding its capacity to undertake large

जब कहीं भी दिल ना लगे और ज़बां शांत हो, किसी को दिल लगातार याद कर रहा हो, इसे ही तो बेकरारी कहते हैं।

कभी कभार कितनी भी भीड़ में आप क्यों ना रहें, दिल हमेशा अकेला महसूस करता है। और ये भीड़ तब किसी काम का नहीं होता जब तन्हाइयों से जज्बात खेलता है।

वाकई में भरे दुनिया में आकर दिल को समझाने कहाँ जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल अकेला होता है, महसूस कोई होता है, लगता है कि कोई आने वाला है, लेकिन ये तन्हाई साथ नहीं छोड़ता है। वक्त की यही रीत है, कभी कोई पास, कोई दूर और कोई खास है।

एक ऐसी धुन, एक ऐसी लगन, एक ऐसा कशिश जो दिलों को दिलों से जोड़ता हो, जिंदगी को जिंदगी से जोड़ता हो। और जब दिल में वो लगन हो तो मोहब्बत को कोई दूर नहीं कर सकता। ये तन्हाई कब कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता।

कभी कभार दिल के जज्बात कहते हैं कि ठहरो, रुको, करो या कहो। दिल के जज्बात हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। वक्त चाहे कितना भी रोक ले, लेकिन जीवन के साथ जज्बात भी चलते रहते हैं और सीने में कई ऐसे अरमां सुलगने लगते हैं।

जी हाँ, जब दिल की बात आती है तब दिल की आवाज़ को, जिसे हम सुनाना चाहते हैं, वो उसे अनसुनी कर देता है और यूं ही गुजरते हुए चला जाता है। तब दिल कहता है, ऐ दिल के दर्द देने वाले, तू मुसाफिर है तो क्या, यहाँ घर तेरा भी है।

अरे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूं।

कोई दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर आया और चला गया, लेकिन वो वक्त वहीं थम गया, बहते गए उस वक्त के रेत में, लेकिन बढ़ते हुए वक्त ने मुझे वहीं रोक दिया और मुझे फिर वही याद आया, तेरा वही चेहरा, तेरी वही बातें, मोहब्बत करने से हुई थी जो मुलाकातें।

0: गजलों का सिलसिला चलता रहे तो लगता है यूं ही चलता रहे, क्योंकि कहते हैं ना, जीवन में मोहब्बत तन्हाई और रुसवाई के साथ साथ एक अलग सा एहसास यूं ही चलता रहता है, और कभी कभी यही भाने लग जाता है। ठीक उसी तरह गजलों का सिलसिला इन्हीं के साथ चलता रहता है, लेकिन वक्त कह रहा है गजल का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हो जाए। तो मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज़ 24x7। अगले कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुनेंगे ठीक 4 बजे, भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारसाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आप जुड़े हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 से। आइए श्रोताओं, आगे चलते हैं। 4:20 होने को है। अब सुनिए कार्यक्रम नाद ब्रह्मा, कर्नाटक संगीत का ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना ताल वाद्य कचरी येला। वेंकटेश्वर राव के साथ आपने सुना तालम आदि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 14वीं तिथि। तदनुसार 6 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:53 मिनट और 55 सेकेंड हो चुके हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह के 5:10 का वक्त रहेगा। आओ योग करें। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे और सीखेंगे अश्वत्थासन और तितली क्रिया। 5:20 का वक्त रहेगा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम। 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गायन कलाकार नदीम अहमद खान। सुबह के 6:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी भाषा पर महान साहित्यकारों के विचार। 6:45 का वक्त रहेगा कार्यक्रम रामचरित मानस। इसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड भाग 70। 7:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भजन। 7:30 का वक्त रहेगा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। सुबह के 8:45 का वक्त रहेगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम स्वर गंगा, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे उदय कुमार मलिक और नमर का गायन, राग ललित आप सुनेंगे।

सुबह के 9:15 का वक्त रहेगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10:10 का वक्त रहेगा फिल्म संगीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। 11:30 का समय रहेगा कार्यक्रम सुर मंजरी।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सितार वादन, कलाकार सलीम अहमद। आप सुनेंगे राग गुर्जरी। ये आज प्रसारित होने वाले दोपहर के कार्यक्रमों की रूपरेखा थी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: पांच बजने को है। कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद मम्मा 2 पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और चालक दल के कई सदस्य घायल हुए हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चालक दल में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने बताया कि एक भारतीय घायल है और उसका इलाज चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मदुरांतकम और

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं, ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आपने सुना अश्वत्थासन और तितली क्रिया। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर, माफ़ कीजिएगा। श्रोताओं, वक्त हो चला है देशभक्ति गीत का, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर 5:30 होने को है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगला कार्यक्रम, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे गायन, कलाकार नदीम अहमद खान। आप सुनेंगे राग अलहया विलावल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी।